पापलकर को बुरी तरह आहत कर दिया। उनके मन में बाल सदन खोलने की योजना का बीज उसी वक्त पड़ गया। मगर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और पापलकर सिर्फ भावुकता में फौरन कोई कदम नहीं उठा सकते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 1990 में घटी दो घटनाओं ने उन्हें फिर से हिलाकर रख दिया। इन दोनों मामलों में जैविक माता पिता ने अपनी दिव्यांग संतानों को लावारिस छोड़ दिया था। पापलकर ने उसी साल ऐसे ठुकराए हुए बच्चों के लिए एक बाल गृह की शुरुआत कर दी। शुरुआत में मुंबई और नासिक की पुलिस ने दो विकलांग बच्चियों को उनके हवाले किया, पर अगले 5 सालों में ही इन नवजातों की तादाद 123 तक पहुंच गई। 98 बच्चियां और 25 लड़के। पापलकर ने उसके बाद हाथ जोड़ दिए, क्योंकि 18 साल के बाद भी ये विकलांग बच्चे उनके आश्रम में ही तो रहने वाले थे। ये कुछ अजीब सी बात है दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। देश का कानून कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद आश्रितों को अनाथालय छोड़ना होगा, मगर पापलकर उन्हें कैसे छोड़ देते, सोचिए तो। उन्होंने तो उन सबको अपनी संतान माना है। वो अच्छी तरीके से जानते थे कि एक बार जिस बच्चे को उसके घर वालों ने छोड़ दिया, वो पूरी उम्र लावारिस ही रहेगा। ऐसे में 18 साल के बाद अनाथालयों से निकलने की मजबूरी लड़कियों को दोजख में ही पहुंचा देती है और लड़के सड़कों पर भीख मांगते हुए दुनिया के अंधेरों में खो जाते हैं। इसलिए पापलकर ने 20 लाख रुपए की सरकारी अनुदान को भी ठुकरा दिया, क्योंकि अगर वो उस अनुदान को ले लेते तो उन्हें सरकारी नियम मानना पड़ जाता। करीब करीब 25 एकड़ भूमि के बीचों बीच बने इस बाल गृह के मुखिया के तौर पर पापलकर के ऊपर 123 बच्चों के सुख सुविधा की जिम्मेदारी आ गई। ये सभी नवजात के रूप में यहां आए थे और अब सब करीब करीब 18 साल के ऊपर हो चले थे। सोचिए कितना कठिन होता होगा इन्हें संभालना। मगर पापलकर ने जिम्मेदारी उठाई तो एक उदार पिता की तरह इसे निभाया भी। हुआ यूं कि जो दृष्टि बाधित थे या गूंगे थे, उनमें से तो कई आज कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और जो मानसिक रूप से अक्षम थे, उनको कुछ इस तरीके से प्रशिक्षित किया गया कि वो उस बाल गृह के ही पेड़ पौधों की सिंचाई कर लेते हैं। उनके परिश्रम की बदौलत वहां 200 से ज्यादा किस्म की वनस्पतियां लहलहा रही हैं। बाल गृह की एक बच्ची माला ने तो पिछले साल महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ग्रुप बी और सी परीक्षा पास की। जन्म से ही अंधी इस बच्ची को उसके मां बाप ने जलगांव रेलवे स्टेशन पर कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। तब पापलकर ने उसे अपनाया और अनाथालय लाए। अमरावती के वीएमवी कॉलेज से कला स्नातक इस बच्ची माला ने 2019 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू की। उसकी प्रतिभा और प्रतिबद्धता को देखते हुए कॉलेज के कई शिक्षकों ने उसकी आर्थिक मदद भी की। नतीजन आज वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकी है। पापलकर के बाल गृह के अब तक 30 बच्चे बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं। कई जोड़े तो माता पिता भी बन चुके हैं और उनकी संतानें बिल्कुल स्वस्थ हैं। दिसंबर 2020 में इस बाल गृह के एक जोड़े की शादी काफी चर्चा में आई। सूबे के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यहां की एक दिव्यांग बच्ची को गोद लिया और बड़े धूमधाम से उसका कन्यादान किया। जिला कलेक्टर ने पिता की भूमिका निभाई। इस विवाह का कर्मकांड तो एक पंडित ने पूरा कराया, लेकिन इस जोड़े को आशीष देने के लिए मौलवी, पादरी, ग्रंथी, जैन गुरु और बौद्ध भिक्षु भी उपस्थित थे। यही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर नितिन गडकरी समेत महाराष्ट्र के कई मंत्री उस समारोह में आए। अंबादा संपत बेवारिस बाल गृह का खर्च दान दाताओं के चंदे और पापलकर के व्याख्यानों से मिलने वाली रकम से चल जाता है। यहां रहने वाले सभी विकलांगों की नियमित मेडिकल जांच कराई जाती है। सभी एक दूसरे के खाने पीने और दवा की खुराक

पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो सब एक दर्द के रिश्ते से बंधे हैं। पापलकर कहते हैं कि शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम कर्मचारी इन विकलांगों की देखभाल ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनकी भावनाओं से जुड़ ही नहीं सकते जैसे कोई एक विकलांग से जुड़ सकता है। इसलिए इनके संरक्षण केंद्रों में हमें तरह तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। इसलिए ये सारे विकलांग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वयोवृद्ध पापलकर की अब ये इच्छा है कि सरकार अपने कायदे कानूनों में संशोधन करे और अपनी अंतिम सांस तक ऐसे बच्चों को आश्रय गृहों में ही रहने की सुविधा दे। वरना सोचिए ना दोस्तों, हम उनके पुनर्वास का दावा कैसे कर सकते हैं? क्या होगा जब 18 साल के बाद ये बच्चे समाज में वापस जाएंगे?

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के ये प्यारे प्यारे भजन। हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कोई खतरा ना आए, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर आए।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

रात होने को थी। एक बस चलती हुई अचानक गहरी खाई की तरफ गिरने लगी। गनीमत थी कुछ ही दूरी पर एक पेड़ ने उन्हें बचा लिया, लेकिन कब तक? बस में बैठे सभी यात्रियों को अपनी मौत नजर आ रही थी। लगता नहीं था कि पेड़ उस बस को अधिक समय तक रोक पाएगा। सबके पास ईश्वर को याद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सब जान गए थे कि उनकी जीवन लीला जल्द ही समाप्त होने वाली है। गहरी खाई में कोई उनके मृत शरीर तक को उठाने वाला नहीं आ पाएगा। रह रहकर बच्चों की रोने की आवाजें भी बस में गूंज रही थीं। तभी उन्हें वही धोती वाले पंडित जी दिखाई दिए, जिनको मनहूस समझकर उन्होंने कुछ देर पहले बस से उतार दिया था। उनके साथ कुछ लोग भी थे। वे सब अपना अपना अलग अलग जत्था बनाकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। रास्ते में बस में

बार बार होने वाली खराबी के लिए लोगों ने उन्हें जिम्मेदार मानकर बस से उतार दिया था। बस की यह हालत देखकर पंडित जी अपने साथियों के साथ तुरंत हरकत में आ गए। उनके साथ जो भी रस्सियां और सामान था, उनकी सहायता से वो एक एक करके यात्रियों को ऊपर लाने में जुट गए। जैसे तैसे भगवान की कृपा से उन्होंने जोड़ तोड़ करके बस में से सबको निकाल लिया। ये वही पंडित जी थे जो एक दिन पहले अचानक बस के सामने आकर बस यात्रियों से तीर्थ यात्रा पर खुद को ले जाने के लिए अनुनय विनय करके बस में बैठ गए थे। पर बस जब कई बार खराब होने लगी और रास्ता भी भटक गई तो लोगों को लगा इन सब मुसीबतों

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, और आप हैं झाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

सुबह है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। और आज हम कोई सीरियस बात नहीं करेंगे, ना कोई लेक्चर देंगे, ना किसी जीवन की फिलोसफी को डिस्कस करेंगे, ना कोई किताबों की बात करेंगे, ना कोई भारी भरकम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। बट आज हम खोलेंगे एक मिठाई का डब्बा। जी हाँ, मिठाई का डब्बा। लेकिन जरा रुक जाइए, इस डब्बे में रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन रैंडमली नहीं मिलेंगे कि जहां हाथ मारा उठा लिया। जी, आज की मिठाई की एक राशि होगी, और आपको तो पता ही है मुझे राशियों के बारे में बात करना कितना पसंद है। हर सीजन में एक ना एक स्टोरी जरूर जोडियक्स के ऊपर होती है, और जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए आज का सवाल, अगर आपकी जोडियक साइन कोई एक इंडियन मिठाई होती तो वो कौन सी होती? और सबसे मजेदार बात, हो सकता है आपको अपनी राशि की मिठाई पसंद आए, और हो सकता है आप बोलें, तनुषा जी ये मिठाई तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये मेरी कैसे हो सकती है? तो चलिए पहले डब्बा तो खोलते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि को बनाते हैं हम जलेबी। सीधी लाइन? बिल्कुल नहीं। जलेबी की तरह मेष राशि भी सीधे रास्ते से ज्यादा अपना शॉर्टकट ढूंढने में यकीन रखती है। गोल गोल घुमाती है, घूमती है, गरम गरम हमेशा निकलती है, और सबका अटेंशन खींच लेती है। मेष वाले जितनी जल्दी गर्म होते हैं जलेबी की तरह, उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, एकदम जलेबी टाइप्स। मेष वाले लोगों में आमतौर पर इनिशिएटिव और एनर्जी की बात की जाती है, बस दिक्कत एक है, जलेबी गर्म हो तो जबान पर संभालनी पड़ती है, और मेष वाले गुस्से में हो तो बात संभालनी पड़ती है। आप मेष हैं तो सच सच बताइए, आप जलेबी हैं या जलेबी खाने वाले हैं? अब आते हैं वृषभ राशि की, यानी टॉरस, और इनके लिए है हमारे जयपुर की शान, घेवर। जी हाँ, हमारा घेवर। और क्यों? क्योंकि घेवर को देखकर लगता है भाई इसको जल्दी में तो नहीं बनाया होगा। टॉरस यानी वृषभ को स्टेबिलिटी, कंफर्ट और अच्छी चीजों का रसिक माना जाता है, और घेवर बिना जलेबी की तरह भागे, बिना रसगुल्ले की तरह इधर उधर घूमे, अपनी जगह शांत खड़ा होता है। ऊपर मलाई, रबड़ी या केसर लगा दो, और जनाब वीआईपी मिठाई तैयार है, उसी लग्जरी के साथ जो लग्जरी वृषभ वालों को बहुत पसंद है। वृषभ वालों, एक सवाल आपके लिए भी, लाइफ का सिंपल फॉर्मूला पहले कंफर्ट, फिर सारे काम, है ना? अब आते हैं मिथुन यानी जेमिनाई पर। मिथुन के लिए हम चूज करते हैं रस मलाई,
क्योंकि एक ही प्लेट में दो टेक्सचर्स एक साथ होते हैं, सॉफ्ट छेना और क्रीमी रबड़ी। मिथुन को अक्सर क्यूरियस, बातचीत पसंद और वर्सटाइल कहा जाता है, मतलब एक मिनट तो

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पति ने पत्नी को बोला, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी बोली, थैंक यू सो मच, और बताओ क्या कर रहे हो। पति ने बोला, खाली बैठा था तो सोचा थोड़ा मजाक कर लूं।

0: और अब बात इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।
1: नमस्कार परिषद, आपको और हमारे रेडियो SN के सारे श्रोतागण को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी ने बचपन में हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, चाचा चाची या फिर मामा मामी से बच्चों को सुनाने वाली कुछ मजेदार और प्यारी कहानियां यानी बेडटाइम स्टोरीज सुनी होगी। ये कहानियां ना सिर्फ मनोरंजन करती है बल्कि बच्चों को कोई अच्छी सीख भी देती है। आप में से कितनों को वो छोटी छोटी कहानियां याद है। चलिए आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा जो मेरी मामी जी हमें स्कूल के गर्मियों की छुट्टियों में सुनाया करती थी जब हम उनसे मिलने मुंबई जाया करते थे चेन्नई से। एक छोटा लड़का था, असल में किसी को उसका असली नाम पता नहीं था। वो थोड़ा भोला भाला, ना समझ या जाहिल था, इसलिए लोग प्यार से उसे बाड़कोबा कहते हैं। मराठी में बाड़कोबा में बाड़कोबा का मतलब होता है प्यारा सा, ना समझ, नादान बच्चा। बाड़कोबा दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी भी स्थिति में अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करता था। कोई भी उसे कुछ जो भी कहता था वो आंख बंद करके उसे मान लेता था। इसलिए उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसके नाम के साथ एक और उपनाम सांग कामी जोड़ दिया। सांग का मतलब है बोलना और कामी का मतलब है काम करने वाला। तो सांग कामी का मतलब है वो व्यक्ति जो उसे दिया गया कोई भी काम पूरा कर। इस तरह सब उसे बाड़कोबा सांग कामी के नाम से जानते। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा कि उसे ये उपनाम क्यों मिला। अब मैं बाड़कोबा की कहानी से थोड़ा हटकर आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरी दो बहनें हैं, मेरे मामा मामी की भी दो बेटियां हैं। हम पांचों बच्चों की उम्र में कुल 6 साल की फर्क था, यानी फर्क है सबसे बड़ी बहन से लेकर सबसे छोटी बहन तक, और मैं ठीक बीच में यानी तीसरा नंबर पे था। जाहिर है कि मामी जी का फेवरेट तो मैं ही था, तो मामी जी जब भी कहानियां सुनाती थी मेरा एक किरदार उसमें जरूर होता था और उस किरदार का फेवरेट उसकी मामी हुआ करती थी। तो बाड़कोबा का फेवरेट भी इस कहानी में उसकी मामी है। लंबी वीकेंड पर वो अपनी फेवरेट मामी जी के घर जाया करता था। वे ज्यादा दूर नहीं रहते थे इसलिए वो लड़का अकेला ही पैदल चलकर वहां आया जाया करता था। बाड़कोबा के जाने से पहले उसकी माँ उसे बताया करती थी, बाड़ा यानी बेटा, मामा मामी की बात मानना और उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करना। मामी जी तुम्हें जो कुछ भी दे बिना कोई शिकायत किए उसे सावधानी से बरोबर घर लेने का है, ठीक है। तो फिर हमारे प्यारे बाड़कोबा मामा मामी के घर गए और छुट्टियों का मजा लिया। जब उसके लौटने का समय हुआ तो मामी जी ने बाड़कोबा को रास्ते में खाने के लिए उनके बहुत ही पसंदीदा केक का एक बड़ा टुकड़ा दिया और एक अच्छे से डिब्बे में डालकर दे दिया बाड़कोबा। बारकों बार रास्ते भर केक का थोड़ा थोड़ा करके केक को खाता रहा, और जब उसका पेट भर गया तो उसने बचा हुआ टुकड़ा कस कर अपने हाथ में पकड़ लिया। और आप समझ सकते हैं कि जब तक वो घर पहुंचा तब तक वो केक का टुकड़ा पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। तब मामी जी या मम्मी जी चिढ़ गई। उन्होंने कहा, बालकोबा जब भी कोई तुम्हें ऐसी चीज देते तो प्लीज उसे केले के पत्ते में या फिर केले के पत्ते के एक टुकड़े में लपेट कर अपनी टोपी के नीचे रख के आना, ताकि ये नहीं बिखरे और रास्ते में, ताकि ये नहीं बिखरे और रास्ते में अगर बंदर हो भी तो वे इसे चुरा भी नहीं सकते। बरोबर? तो बेचारे बालकोबा ने कहा, बरोबर आई। कुछ हफ्ते बाद बालकोबा फिर से लंबे वीकेंड के लिए मामी जी के घर गया। इस बार मामी जी ने उसे एक डिब्बे में घर का बना मक्खन दिया। बालकोबा को अपनी मां की सलाह याद आई। मामी जी के घर से निकलते ही बालकोबा ने केले का एक पौधा देखा, उसकी पत्ती का एक टुकड़ा काटा, मक्खन को सावधानी से उसमें लपेटा और उस पैकेट को अपनी टोपी के नीचे रख दिया, यानी सिर के ऊपर टोपी के नीचे। तत्ती जल्दी गर्मी, मक्खन धीरे धीरे पिघलने लगा और उसके चेहरे से बहता हुआ उसकी शर्ट तक आ गया। जब उसकी मां ने उसकी हालत देखी तो वो और भी चिढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्या कोई मक्खन इस तरह लाता है? अगली बार प्लीज इसे ठंडे पानी के डिब्बे में रखें, ताकि ये पिघले नहीं। बरोबर? तो बेचारे बालकोबा ने कहा, बरोबर आई। कुछ हफ्ते बाद फिर से बालकोबा मामी जी के घर गया। इस बार जब वो लौटने की तैयारी कर रहा था तो मामी जी ने उसे एक प्यारा गोल मटोल छोटा सा एक कुत्ते का पिल्ला दिया। बालकोबा बहुत खुश हो गया, लेकिन उसको फिर से अपनी मां की बात याद आई। मामी जी के घर से निकलते ही बालकोबा ने केले का एक पत्ता देखा, उसकी पत्ती का एक टुकड़ा काटा, कुत्ते को के पिल्ले को उसमें लपेटा, सड़क के किनारे पड़ा एक डिब्बा उठाया, उसमें थोड़ा पानी डाला और उस पिल्ले को के साथ पैकेट पर पानी वाले डिब्बे में डाल दिया। आप सोचे जब तक वो घर पहुंचा पिल्ले का हालत क्या रही होगी। बेचारा सांस लेने के लिए तड़प रहा था। इस बार उसकी मां को और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा, नालायक, पप्पी को रास्ते से बांध रस्सी से बांधकर अपने साथ नहीं चला सकता, कितने बेवकूफ हो। बालकों पर रोने लगा, लेकिन वो और क्या कर सकता था। कुछ हफ्ते बाद बालकोबा के एग्जाम खत्म हो गए और वो फिर से अपनी मामी जी के घर गया। इस बार जब वो उनके घर से निकल रहा था तो मामी जी ने उसे बड़ी सी जलेबी दे दी। बालकोबा ने कहा, जलेबी? अरे वाह! लेकिन उसका पेट पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए उसने जलेबी घर ले जाने का फैसला कर लिया था। और वो उसने क्या किया आप समझ सकते हो। अब तक उसने सोचा कि बाद में फुर्सत से खाएगा, तो अपनी मां की आखिरी सलाह याद करते हुए उसने जलेबी को एक रस्सी के सिरे से बांध दिया और दूसरा सिरा पकड़ा और निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने खुशी खुशी अपने मां को बताया, आई आई देखो इस बार मामी जी

उस पर अच्छी तरह सोच विचार करें और फिर वही करें जो सही हो। अब बताइए आपको कैसी लगी बालको विवाह संकामी की ये कहानी।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पत्नी ने पूछा, सुनो जी, लड़का बहुत पैसे उड़ाने लगा है, जहाँ भी छुपाती हूँ खोज लेता है। पति ने कहा, नालायक की किताब में रख दे, एग्जाम तक नहीं ढूंढ पाएगा।

0: हम सियासी मुजरिम हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। हमें किताबें मिलनी चाहिए लिखने के लिए, पेन, पेपर और कम से कम रोज का एक अखबार।
1: और तब तक हम नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी।

0: fasting and the torture.
1: उनकी भूख हड़ताल पूरे 114 दिन तक चली. 114 दिन.
0: Never before in the history of any.
1: दुनिया के इतिहास में कोई भी क्रांतिकारी इतने दिन तक ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सका.
0: We could crush.
1: हमने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन हम उनके जज्बे को तोड़ नहीं सके.

हेलो हेलो, मिठाई की इस दुकान पर फिर से आपका स्वागत है। मिठाई की दुकान पर आपने कभी नोटिस किया है, कोई तो सीधे रसगुल्ले पे जाता है, कोई जलेबी देखता रहता है, कोई बोलता है भैया कुछ ज्यादा मीठा मत देना, और फिर आधा किलो काजू कतली ले जाता है। और आज हमने सोचा इंसान की पसंद और पर्सनालिटी को मिठाई से जोड़कर देखा जाए तो, और यहीं से निकला हमारा आज का सवाल। अगर जोडियाक साइंस मिठाई होते तो कौन सी मिठाई होते? पहले 6 साइंस हम देख चुके हैं, अब मिठाई का दूसरा डब्बा खोलते हैं। क्या क्या निकलेगा उसमें से? यमी। आगे चलते हैं। तुला राशि, तुला यानी लिब्रा, ये है हमारी काजू कतली, पतली सुंदर और नीटली कट। और मिठाई की दुकान में इसका प्रेजेंटेशन भी एकदम क्लासी। तुला को बैलेंस, हार्मनी और एस्थेटिक्स से जोड़ा जाता है। और काजू कतली ना बहुत हैवी है ना बहुत लाइट, बिल्कुल बैलेंस्ड और बिल्कुल सिंपल, बीच का वो परफेक्ट बैलेंस। बस एक प्रॉब्लम है, तुला वाले रेस्टोरेंट में भी डिसाइड करते हुए कह सकते हैं, तुम बताओ ना, अच्छा जो तुम मंगाओगे वही खा लूंगी। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं तुला वाले। आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड जो बिल्कुल यही करती है, सो फ्रॉम एक्सपीरियंस देर इज नेवर एनी बैलेंस इन अ तुला। अगर आप तुला हैं तो डिसीजन लेने में आपको कितना समय लगता है ये सच सच बताइएगा। बताइए मत, सोच ही लीजिए, खुद से सच कहिए। जी आगे चलते हैं। अगली राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, ये है हमारे काला जामुन। बाहर से गहरा रंग, अंदर से एक अलग ही स्वाद। वृश्चिक को ट्रेडिशनली बहुत ही इंटेंस, प्राइवेट और एक डिटर्मिंड नेचर से जोड़ा जाता है। काला जामुन भी बिल्कुल ऐसी ही मिठाई है, दूर से देखो तो लगता है बस गुलाब जामुन का ही तो कजन है, क्यूट सा, गोल मटोल सा, लेकिन एक बाइट और कहानी ही बदल जाती है। वृश्चिक वाले भी शायद वैसे ही हैं। आपके सर्कल में कौन है ऐसा दोस्त? नाम मत बताना, बस उन्हें मिठाई बता देना। फिर आते हैं धनु यानी सैजिटेरियस, ये है हमारे अमेजिंग से जालीदार से मालपुए, चाशनी में तरे हुए और फिर सीधा प्लेट में एंट्री। धनु राशि को अक्सर एडवेंचर, फ्रीडम और एक्सप्लोरेशन से जोड़ा जाता है। और मालपुआ, ये मिठाई भी बोलती है, रूटीन छोड़ो यार, थोड़ी कैलोरीज बढ़ाओ। धनुष वाले दोस्तों, आपको एक ही जगह बैठना पसंद है या हर कुछ दिन में मन करता है चलो कहीं निकल चलते हैं? फिर आते हैं मकर यानी हमारे सेज कैप्रिकॉर्न्स, और हाँ मैं जानबूझकर ये मिठाई चुन रही हूं, सोन पापड़ी, क्योंकि सोन पापड़ी को अंडर एस्टिमेट करना बहुत आसान है। पतली पतली लेज है लेकिन इसको बनाने में बहुत मेहनत है दोस्तों। मकर को डिसिप्लिन, पेशेंस और मेहनत से जोड़ा जाता है। सोन पापड़ी भी लेयर बाय लेयर, कोई जल्दी नहीं। और इसका एक और टैलेंट, एक डब्बा खरीदो तो वो कब तक घर में रहेगा, ये सवाल पूरी कॉलोनी का सवाल बन सकता है। और मकर वाले दोस्तों, आप भी काम को लेयर बाय लेयर कंप्लीट करते हैं, है ना? या फिर डेडलाइन आने पर टर्बो मोड ऑन, बताइए। फिर आते हैं कुंभ राशि वाले, जी हाँ ये है हमारे जलेबा। कुंभ के लिए हम जलेबी का बड़ा वर्जन चुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुंभ को अक्सर अनकन्वेंशनल, इंडिपेंडेंट और थोड़ा हटके सोचने वाला माना जाता है, तो नॉर्मल जलेबी क्यों, जलेबा लाओ जहां सब कहेंगे एक जलेबी देना, और कुंभ बोलेंगे भैया कुछ बड़ा सा सोचो, बड़ा लाओ।
कुंभ वाले लोगों के आइडियाज भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं, सब एक तरफ। और ये मेरे पास एक आइडिया है, और फिर सबकी मीटिंग 2 घंटे और चलती है। आपके ग्रुप में ऐसा कोई है, एक चलता फिरता आइडिया मशीन? और फिर आते हैं हमारे प्यारे से मीन राशि वाले, यानी हमारे ड्रीमी पाइसिस। ये हैं रसमलाई कुल्फी, थोड़ी रसमलाई, थोड़ी कुल्फी, थोड़े नरम, थोड़े ठंडे, और पूरे ड्रीमी कॉम्बिनेशन। मीन को ट्रेडिशनली इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी से जोड़ा जाता है, और रसमलाई कुल्फी इसको खाते हुए भी लगता है एक और ले लूं, और दूसरी खत्म करते ही बस अब नहीं, फिर सामने वाला पूछे एक लास्ट, और जवाब होता है अच्छा एक लास्ट प्रॉमिस। मीन वाले दोस्तों, आप भी इमेजिनेशन में कभी कभी रियलिटी से पहले पहुंच जाते हैं, है ना? तो दोस्तों, आज की मिठाई के डब्बे में थे काजू कतली, काला जामुन, मालपुआ, सोन पापड़ी, जलेबा और रसमलाई कुल्फी। अब असली टेस्ट आपका है, अपनी जोडियक साइन देखिए और उसकी मिठाई पढ़िए, फिर घर में किसी और की राशि देखिए और बताइए, तुम बिल्कुल अपनी मिठाई जैसे हो यार। और अगर आपको अपनी जोडियक मिठाई पसंद नहीं आई तो कोई टेंशन नहीं है, मिठाई का डब्बा एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है, आप अपनी मिठाई खुद चूज कर सकते हैं। मैं हूँ आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर खोलेंगे एक नया टॉपिक, एक नया डिब्बा, कोई नई बात, और शायद कोई एक और नई मिठाई। तब तक मीठा बोलते रहिए, हंसते रहिए, और बातें इधर की उधर की करते रहिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: चिंटू लड़की देखने गया शादी के लिए। वहां पर चिंटू ने पूछा, कितने तक पढ़ी हो? लड़की ने बोला, बीए तक। चिंटू ने साफ मना कर दिया और बोला, दो अक्षर पढ़ी है और वो भी उल्टी।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो, आपरी बातें।
2: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। उम्र, आयु असल में सिर्फ एक नंबर है। सफल लोग अपनी उम्र को कभी अपने सफलता के आड़े नहीं आने देते। वो कौन है और क्या करने की क्षमता रखता है, इसकी पहचान उनकी उम्र से कभी नहीं होती। हो सकता है कि लोग आपकी उम्र की वजह से आपको ये बताएं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बेहतर यही है कि आप उनकी कुछ ना सुने। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप किसी भी उम्र में सफलता पा सकते हैं। बस अपने दिल की बात सुनें और अपनी मंजिल की तरफ विश्वास से बढ़ें। उम्र का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। लोग बहुत कम उम्र या बहुत ज्यादा उम्र में भी कामयाब होते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।

जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं दोस्तों। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो एक बार पति और पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ। पत्नी अपना घर छोड़कर मायके चल पड़ी। वो इतने गुस्से में थी कि पति को रास्ते में से ही मैसेज कर डाला, अब आप अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। पति ने रिप्लाई किया, आप हैं कौन? तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कभी

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, आज के जमाने में बिजली विभाग ही इकलौता ऐसा विभाग है जो 100% शुद्ध माल सप्लाई कर रहा है। यकीन नहीं आता तो बिजली के तार पर हाथ लगाकर देख लीजिए।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोचने दो जमाने को जो भी सोचना है, अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर खुद पर।

0: तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: मंगल पांडे।
4: सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सन 57 की जे कहानी, कहानी जे है बड़ी पुरानी। मंगल पांडे वीर बड़ा था, अंग्रेजों से खूब लड़ा था, देशभक्त था वह बलिदानी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सन 57 की जे कहानी।
5: दादी जी।
6: अरे आशीष, दीपिका आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
5: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
6: हाँ पूछो।
5: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
6: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
5: अच्छा।
6: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
5: अच्छा।
6: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
7: अच्छा।
6: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
5: मंगल पांडे।
6: हाँ मंगल पांडे। 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
7: अच्छा।
6: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा

0: বড় বড় মহাপুরুষেরা এখানে জন্ম নিয়েছে। আজকে এই দেশ গোলাম। আমরা প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি এই ভারতবর্ষকে আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে আজাদ করে
1: দেব।
2: दादीजी, लड़ाई में कौन कौन थे?
3: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
4: बड़े बहादुर थे ये।
3: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
2: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
4: वो कहाँ के रहने वाले थे?
3: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
4: अच्छा।

0: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
1: अच्छा।
0: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
0: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
0: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
1: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
0: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
1: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
3: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी, फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
3: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
2: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
5: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
7: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
8: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
1: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
6: अरेस्ट करो,
8: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
1: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: हम पांडे को ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए और उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली मार दी, स्वाधीनता का बिगुल बजाया और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्रांति के पुजारी की चिता की राख से निकली चिंगारी आग का शोला बनकर निकली और चारों ओर फैल गई। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।

लालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बहादुर कशिका।
2: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
3: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
2: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
3: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
2: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
3: अच्छा माँ।
4: माँ, माँ।
3: लो, देवेंद्र भी आ गया।
5: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
2: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
3: ठीक है माँ।
5: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
3: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
6: ये बातचीत दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले भाटिया परिवार के बीच की है। पिताजी की किताबों की दुकान है, माँ घर में ही रहती हैं। पुत्री कशिका 8वीं कक्षा में और पुत्र देवेंद्र 6वीं कक्षा में पढ़ता है। 12 अप्रैल 1997 को इस घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे कशिका भाटिया को हम हमेशा याद करेंगे। आइए सुनते हैं।
5: ये देखो दीदी, ये मारा।
3: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
5: अरे ये मारा।
3: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
5: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
3: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
5: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
2: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
3: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
7: हमें अंदर आने दो।
3: अरे क्यों?
8: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
3: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
7: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
8: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
3: अरे
8: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
3: क्या हुआ? ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
7: ए चोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
3: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
7: ये चाकू देख रही है ना?
3: मुझे मत मारो, कुछ मत करो।
2: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
7: जल्दी।
2: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
8: बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
2: अरे मेरे बात छोड़ो,
3: मेरी माँ को छोड़ो।
7: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
8: सुना, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
2: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
3: देवेंद्र।
5: हाँ दीदी।
3: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
5: अच्छा, हाँ।

0: पापा को फोन करती हूँ। देविंदर तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
1: अच्छा।
0: हेलो।
2: हाँ बेटा बोलो।
0: पापा पापा
2: हाँ बोलो बेटा।
0: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
3: कौन घुसाए?
0: माँ को बहुत मार रहे हैं।
3: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
0: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
1: अच्छा।
0: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ
4: बचाओ।
5: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
6: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
7: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था, मैं तो डरी गई थी।
8: ऐसे बच्चे होने चाहिए,
6: देखो ना सबकी जान
7: बहादुर है मेरी बच्ची।
5: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।

حسرة.

0: लालू को ये डर था कि प्याज उसे रुलाएगा, आंखों में आंसू लाएगा। आलू कचालू को ये डर था।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: हड़प्पा संस्कृति, ये एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक सूत्रों और संदर्भों के आधार पर नाटक प्रारूप में निर्मित की गई है।
3: तो आनंद लीजिए इस हड़प्पा संस्कृति का।
2: जी हाँ,

आज से कोई 4000 साल पहले हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ बड़े बड़े नगर बसे हुए थे। इन्हीं में से एक प्रमुख नगर था मोइनजोदड़ो। मोइनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला।

जाहिर है कि जिस समय ये नगर फल फूल रहा था तब इसका नाम मोइनजोदड़ो नहीं रहा होगा, कुछ और ही रहा होगा। पर यहाँ की चौड़ी सड़कें, विशाल अन्न भंडार और सरोवर ऐसे ही रहे होंगे। यहाँ के रहने वालों का व्यापार दूर विदेशों तक फैला था। वे शांति प्रिय और कलात्मक रुचि के लोग थे। उनकी लिपि अभी तक सर्वमान्य ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उनके अनेक नगरों की विस्तृत खुदाई की गई है, जिससे वहाँ के जनजीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है। उसी आधार पर प्रस्तुत है एक काल्पनिक कथा का।

0: क्या यही प्रसिद्ध व्यापारी शिमुख की दुकान है?
1: जी हाँ, यही है और मैं ही हूँ शिमुख।
0: जी
1: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: जी मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूँ, उदंग। रुई बेचने यहाँ आया था। मैंने सुना था आपके पास धातु की बनी एक से एक सुंदर वस्तुएं हैं, बस देखने के लोभ से चलाया।
1: आज्ञा कीजिए, क्या दिखाऊं? धातु के हथियार, औजार या फिर मूर्तियां, आभूषण?
0: कोई सुंदर सी मूर्ति दिखाइए।
1: हाँ, ये देखिए।
0: हाँ,
1: कांसे की बनी हुई नर्तकी, कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानो नाचते नाचते पल भर के लिए रुक गई हो।
0: हाँ, अच्छी तो है मगर।
1: अच्छा, इसे छोड़िए, ये हार देखिए।
0: हाँ,
1: अभी दो दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ है। सोने की पत्तियों के बीच कीमती पत्थर के कितने सुंदर फूल गढ़े हैं कारीगर ने।
0: वाकई बहुत सुंदर है।
1: तो ठीक है, इसे ले जाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से दिलमन तक ऐसा सुंदर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा।
0: वो तो ठीक है, पर ये तो काफी महंगा होगा। दरअसल मैंने अपनी रुई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाज खरीद लिया है। अब मेरे पास इस हार को खरीदने लायक रकम नहीं है।
1: तो क्या हुआ, आप तो इधर आते रहते होंगे।
0: जी हाँ।
1: तो फिर आप ये हार ले जाइए, इसकी कीमत अगली बार दे दीजिएगा।
0: मगर।
1: अब इसमें अगर मगर की क्या बात है, आपके पास आपकी मोहर तो होगी ही।
0: जी हाँ, वो तो मैं हमेशा अपने कमरबंद में रखता हूँ।
1: तो फिर ठीक है, अपने इस सौदे की बाबत मिट्टी की पाटी पर लिखवा कर अपनी अपनी मोहर लगा देते हैं। जब आप अगली बार यहाँ आए तो रकम चुका दीजिएगा।
0: ठीक है, मुझे मंजूर है।
1: चुप्पन, अरे ओ चुप्पन।
2: आया माले।
3: जी माले।
1: देखो चुप्पन, ये लोथल नगर के बड़े व्यापारी हैं उदंग, इन्होंने ये सोने का हार खरीदा है, पर इसकी कीमत ये अगली बार देंगे। अब तुम झटपट मिट्टी की पाटी तैयार कर, उस पर इस सौदे की बाबत लिखो और उस पर ये मेरी मोहर और ये इनकी मोहर लगा कर ले आ।
3: अच्छा वाले।
1: आइए उदंग
0: जी,
1: आप जब तक यहाँ आराम से बैठिए।
0: क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी?
1: हाँ, कुछ देर तो लगेगी। क्या आप जल्दी में हैं?
0: नहीं, कोई विशेष जल्दी तो नहीं है। मेरा जहाज अन्न भंडार के पास रुका हुआ है, अनाज की लदाई चल रही है। मैं इस बीच नगर घूमने निकला था, सोचा था सरोवर तक जाऊंगा, देश विदेश के समाचार मिल जाएंगे। पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया। हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान की सुंदर वस्तुओं की बड़ी ख्याति है।
1: अच्छा, तो सरोवर देखने के लिए जा रहे हैं?
0: देखा तो पहले भी है, पर हर बार देखना अच्छा लगता है ना।
1: हाँ भाई, हमारे नगर की धड़कन है ये सरोवर। युवक युवतियों के मिलने जुलने की जगह। आज पूरे चंद्रमा की रात है, विशेष पर्व है। आज तो वहाँ न जाने कितने विवाह तय होंगे, कितने व्यापारिक सौदे तय होंगे। मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई हैं।
0: जी
1: चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
0: हाँ चलिए।

0: What in the
1: माँ आज पानी बड़ा ठंडा था माँ।
2: हाँ, जाकर कपड़े बदल लो बोधा,
1: जाती
2: नहीं तो ठंड लग जाएगी।
1: जाती हूँ माँ, कोई कोठरी भी तो खाली हो।
2: माँ माँ
1: वो देखो पिताजी आ रहे हैं।
2: अरे उनके साथ वो सुंदर युवक कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा।
3: हेलो, कोठरी खाली हो गई, अब तुम पहले कपड़े बदलाओ, सुंदर युवक को बाद में देख लेना।
1: माँ जाती हूँ।
4: इधर से आइए जी।
5: जी
4: आइए आइए
5: जी,
4: इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी है और ये है उदंग, लोथल के एक बड़े व्यापारी।
6: नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: बोधा नहीं दिखाई दे रही, क्या अब तक नहा रही है?
2: नहीं, कपड़े बदलने गई है, आ रही होगी।
4: ओ, और सुनाओ यहाँ के क्या समाचार है?

0: बड़े जहाज चल सकते, लेकिन हमारे यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है।
1: अच्छा?
0: हमारे कारीगर मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं। फिर उत्तर पूर्व में खेतड़ी से अच्छा तांबा भी निकलता है, इसलिए लोथल के लोगों ने मिलजुल कर ये गोदी बनवाई, जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सकें।
1: और क्या क्या है आपके लोथल में?
2: मेरी बेटी को दूर शहरों के बारे में जानने की बड़ी लालसा रहती है।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
3: जरा सुनिए।
2: क्या बात है?
3: आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़के की बात कही थी, वो भी आज यहाँ आया हुआ है, उसे मिलेंगे? नहीं।
2: हाँ हाँ, लेकिन उदंक?
3: वो तो बोधा से बात कर रहे हैं। चलिए, इतने हम लोग उसे देख आते हैं।
2: अच्छा, बोधा।
1: जी पिताजी।
2: मेरे मेहमान का ध्यान रखना, मैं और तुम्हारी माँ अभी आते हैं। हाँ
1: ठीक है पिताजी, आइए हम उधर चलकर बैठते हैं।
0: हाँ चलिए।
1: अच्छा, लोथल में तो
0: साफ सुथरा रखते हैं।
1: अच्छा, तो आपका लोथल भी साफ सुथरा शहर है?
0: हाँ, आपके शहर जैसा भव्य तो नहीं है, लेकिन चौड़ी सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं, और नालियों के बीच बीच में कूड़ा जमा करने के लिए गहरे गड्ढे भी हैं।
1: अच्छा।
0: इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है।
1: क्या आप दिलमन भी गए हैं?
0: हाँ, व्यापार के सिलसिले में गया था। वहाँ के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते।
1: काश मैं भी दूर दूर देशों की यात्रा कर सकती, व्यापार के तौर तरीके सीख सकती, लेकिन माँ कहती है ये सब तेरे काम नहीं है।
0: क्यों? अगर आपकी व्यापार में रुचि है तो इसमें बुराई क्या है? आपके पिता तो स्वयं एक बड़े व्यापारी हैं, आपको सब सिखा सकते हैं।
1: लेकिन वो तो बस ऐसी कोशिश में है कि कोई उपयुक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दे।
0: ओह, हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अवसर मिल जाए।
1: क्या मालूम।
2: बोधा, अरे बोधा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें सरोवर के निकट ढूंढ रहे थे।
0: वो हम लोग बात करते करते इधर निकल आए।
2: अच्छा अच्छा, आप मातृ देवी के दर्शन करना चाहती हो तो चले।
0: आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़ी रुचि है, फिर आप?
2: अरे छोड़िए भी, व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है।
0: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने दूर देशों की यात्रा की है, कई देशों में स्त्रियां इस तरह के काम करती हैं।
2: क्यों आप इस चिलफिली लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं?
1: पिताजी,
2: ये सब करेगी तो फिर इसका विवाह कैसे होगा?
0: आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें ये सब करने की स्वतंत्रता दे।
2: फिर तो हो चुका विवाह। अरे ऐसा वर कहाँ मिलेगा?
0: अब ये इतना कठिन भी नहीं है। देखिए, मुझे ही लीजिए। मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी की तलाश में हूँ जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी कुछ सोचती समझती हो।
2: यानी आप विवाहित नहीं है?
0: नहीं।
2: तो फिर वो हार आपने किसके लिए लिया है?
0: वो अपनी भावी पत्नी के लिए।
2: अच्छा अच्छा
0: जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी बेटी से।
2: आप ये निर्णय कुछ जल्दी में नहीं ले रहे हैं?
0: जी नहीं, जल्दी नहीं करूंगा तो शायद देर हो जाएगी।
2: क्यों बेटी, तुम्हारा क्या विचार है?
1: पिताजी।
2: अरे बोधा की माँ, इधर सुनो तो।
1: क्या बात है?
2: उदंक लोथल के बड़े व्यापारी हैं और अविवाहित हैं।
1: हाँ हाँ, ये सब आप मुझे बता चुके हैं।
2: ये अपनी बोधा से विवाह करना चाहते हैं।
1: क्या सच? क्यों बोधा?
2: लगता है बोधा को अपना मन पसंद साथी मिल गया है।
1: मातृ देवी की कृपा है। चलिए हम सब चलकर उनके दर्शन करें। आओ बोधा। चलो माँ। आओ बेटा, आइए।

दिल मन, ये दोनों स्थान कल्पित नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा और भी बहुत से नगर प्रकाश में आए हैं, जिनमें रूपड़, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, भगतराव आदि प्रमुख हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से ये पता चलता है कि यहाँ गोदी थी, जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते थे। यहाँ एक ऐसे जलमार्ग का प्रबंध किया गया था जहाँ ज्वार के समय समुद्र का पानी भर जाता था। उसके बाद फाटक बंद करके उस पानी को वहीं रोक लिया जाता था, जिससे बड़े जहाज भी इस गोदी में लंगर डाले खड़े रह सके। इस तरह लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। जिन दिनों भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विस्तार हो रहा था, उन्हीं दिनों मेसोपोटामिया में सुमेर सभ्यता पनप रही थी। खुदाई में ऐसी व्यापारिक मोहरें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया में एक राजा था जिसकी राजधानी अक्काद थी। वहां दिलमन नामक शहर से जहाज आया जाया करते थे। दिलमन को आज का बाहरेन

चालू ने

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: ये विज्ञान गीत।

0: मुझे परेशान करने की सजा।
1: माँ के आते ही गया दोनों का ध्यान भटक।

0: टक।
1: तभी तपाक से बोली पहेली।
2: हाँ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो है मुझे पता, बाकी के नाते मुझे आप ही दो हमें बता। माँ बोलती, इससे पहले बूझो ने पहेली पर तंज कसा
1: और हंसते हुए बोला, भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है वसा।
2: दोनों की तनातनी देख माँ ने प्यार से दोनों को समझाया,
1: चलो सभी साथ में समझते हैं जो तुम दोनों ने अभी नहीं बतलाया।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंटिया भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
3: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
4: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
3: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं। और जैसा कि आपने बताया, इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
4: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
3: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
4: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
3: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
4: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
3: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
4: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
3: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
4: जी ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
5: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
3: जी बताइए डॉक्टर।
4: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है?
4: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
3: तो दोनों को ही खानी।
4: हाँ, और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
3: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
4: जी
3: और डॉक्टर साहब एक
6: क्या फाइलेरिया की दवा एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
3: बताइए
4: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
3: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
4: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
3: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण मौसम या उम्र में ही होता है?
4: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
3: अच्छा, जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
4: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
6: जी, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
3: जी बताइए।
4: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
3: जी
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: હું છે આરજે રાકેશ
7: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર
2: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ પર। नमस्कार, किसान भाइयों, स्वागत है तुम्हारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM छाबवानी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश अने रोजनी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तीना समाधान नी वातियों लीने रोज इना समय पर हाजिर थातो रहूं छे। अने किसान भाइयों, आज ना कार्यक्रम मा आपु वातियों हामलवाना से पशुपालन नी। जेवी रीते किसान भाइयों, आपड़ा किसान भाई हारू खेती जेत्री जरूरी से, एत्री जरूरी आपुन पशुपालन भी से। क्योंकि आज ना जमाना मा पशुपालन घणु कम थाई गयु से अने लोग हा विना पर धीरा धीरा कम ध्यान देवा मंडी गया से। पण जो दूध अने घी नी जो मांग से इने हमजी नी रहा। किसान भाइयों, आज ना समय पर अगर आपु तरीका देखी पशुपालन करी तो आपुन पलायन पर बाहर जाऊं नहीं पड़े अने असल अने मोटो मुनाफो आपु आ घेर बैठा आपड़ा सोरा साबर अने आपड़ी खेती हमालता जाइन घेर करी सकी। तो किसान भाइयों, आज निकड़ी मा आपु पशुपालन ना बारा मा विस्तार पूर्वक जानकारी हमलवाना से अने बदी वातियों आपुन हमलावे तकनीकी तरीका देखी अने कृषि विज्ञान केंद्र छाबवाना सहयोग देखी मारा सहयोगी भाई कमता डामोर जी अने हाथे हाथ एक एवा किसान भाई रमेश वासकेल त्या पाराना रहेवा वाला से अने त्या पशुपालन करीने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रह्या से, तीनुनी वात पण आज आपु इना कार्यक्रम मा हामलवाना से। तो किसान भाइयों, जाजो मती कहता हामलता रहेजो कार्यक्रम खेतीवाड़ी।
8: तो किसान साथियों, दूध मानव जीवन मा अमृत ने समान मान्यगी से अने दूध उत्पादन मा सिर्फ मानव जीवन मा खुदो प्रयोग थाय से अने आध्यात्मिक कार्यकलापों में भी जेत्रो ही महत्वपूर्ण इहनो एक योगदान से। अने एक अनुमान ना अनुसार सन 2020-21 में भारत में दूध नो कुल उत्पादन 209.96 मिलियन टन अने यो विश्व ना कुल उत्पादन ना 23% से। श्वेत क्रांति जब लावेला तीना टाइम पर तकनीकी प्रयासों थी भारत मा आज इना क्षेत्र मा वैश्विक अगुआ बनी ने एकदम भारत उभरो से अने पूरा भारत ना लगभग 12 मिलियन परिवार पशुपालन अने दूध उत्पादन था जुड़ेला से। हरित क्रांति अने पशुपालन मा आवेली तकनीकी उन्नति ने कारण पशुओं नो दूध उत्पादन सारो अने तेनी उपलब्धता मा भी बदलाव आवी गयो से। अने इना हगला बदलावनी वसमा एक हानिकारक कृत्रिम दवाईयो जी केमिकल्स वाली दवाईयो रसायनना थी जो सारा थी जो आपो छिड़काव करी अने दूधना मूल संवर्धन थी जुड़ेला गतिविधियों थी दूधनो उत्पादन अने बजार मा इहोनो बढ़ी गयो से। पुन गुणवत्ता अने हवाद संबंधी प्रश्न उठवा लाग्या से अने तीने हारू गोपालकोने कई एवी वातियोने पर गौर करवो पड़े नीते इनथी जैविक सिद्धांतों ने अपनावीने पशुपालन अने दूध उत्पादन मा मौलिकता अने समग्रता ने में बनाई राखवो जोई। यो घणो जरूरी से केमकि जैविक विधि ने द्वारा पशुपालन करवानो अर्थ यो होय थाय से कि पशुओं ने जैविक सारो खवड़ो जोई अने तीनी जगह पर जो सारा नी जो व्यवस्था करवी जोई तीना मा दवा छाटवानो कीटनाशक नो उपयोग कदी भी नहीं करवो जोई। तो किसान साथियों, यो खुदो दूध पशु पर असर पड़े से अने पशु ने द्वारा आलेलु दूध खुदो मनक खाय से तो तीने हारू क्यों जैविक नी कहवाय तीने हारू आपन जैविक राखवा हारू इनी चीजों ने किसान भाई ने काफी ज्यादा ध्यान राखो पड़े। पशु चारागाह तक भी पहुंच अने बाहर भी तीना फरवानो इनी हाथे एंटीबायोटिक अने हार्मोन ना नियंत्रण ना उपयोग भी इनमा करवा शामिल से। इनी विधि ने द्वारा कृत्रिम रूप थी बनेला पदार्थ जेवा रूपे दवाई पूरक ना रूप में उपयोग में करवा वाला सारा ने पशु सारा ने अनुवांशिक रूप थी संशोधित या परिवर्तित घटकों थी परहेज करी गयो से। एवा प्रकार थी पशुपालन में कृत्रिम हानिकारक पदार्थों ने भी पूरा तंत्र ने सेटी अने साफ सुथरा शुद्ध अने विनी व्यवस्था पर ध्यान राखवो पड़े से। जैविक विधि ने द्वारा पशुपालन हारू ध्यान देवा वाली कुछ वातियों। तो किसान साथियों, पशुधन नी उत्पत्ति अने विधि ने द्वारा प्रयोग में लावा वाला घटको अने उत्पादनों एनो प्रचार प्रसार विज्ञप्ति आदि पर अवयवों पर प्रबंधन करीने पशुओं થી એનાને જાળવીને રાખવું પડે છે. તો કિસાન સાથીઓ, જ્યાં સારો મેલી તેની જગારે સારા ગા બોલે છે, અને સારા ગામના સર્વા પશુઓને સર્વાની જગા બી રહેવી જોઈએ, અને ચક્રિય પ્રબંધન પશુઓને દ્વારા સર્વો જોઈએ, અને એનામાં અસલ માન્ય કહે છે ગોળ ગોળ ઘૂમીને અને તીનથી સરાઈને કાળખંડને બળાવી અને તીહને લાગતમાં કમ કરવામાં બી મદદ મળે છે. અને જૈવિક વિધિને દ્વારા પશુપાલન વિધિમાં આવાસ અવધિને દોરાન પશુઓનો સારો મુખ્યતઃ સારાના સાયલેજ બનાવી લેવો જોઈએ. દૂધવાળા પશુઓને કુછ માત્રામાં અલગથી પૂરક અને ખાદ અને ખનિજ તત્વોના એવું સીજો આવ્યો જોઈએ, તાકી દૂધ ઉત્પાદન કરવા સારું અનુવાંશિક ક્ષમતાને પૂર્યો કર્યો જઈ શકે. ભલે તેઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તા વાળો સાયલેજ ખવાડવો પડે. તો કિસાન સાથીઓ, પશુઓનો સારો જૈવિક વિધિને દ્વારા પશુપાલન પ્રબંધનમાં પશુઓનો જો સંપૂર્ણ આકાર, સંપૂર્ણ આહાર, કૃષિ ઉત્પાદો, પત્તો, ઘાસ, ભૂસોના વ્યવસ્થિત રૂપથી સમાવેશ કરીને ઉત્પાદિત અને સંચાલિત કર્યો જાય છે, ને અલાવા કુછ કૃત્રિમ અને પ્રાકૃતિક પદાર્થોનો ઉપયોગ અતિરિક્ત પૂરક સારાના રૂપમાં ભી કર્યો જઈ શકે છે. સાધારણતઃ દૂધવાળા પશુઓના બચડા તેની ઉંમર 9 મહિનાથી કમ હોય અને તેના સારામાં 20% જ્યાદા ગેરજૈવિક સ્રોતોનો ઉપયોગ કર્યો જઈ શકે છે, અને પ્લાસ્ટિકના છરા, યુરિયા, રાસાયણિક ખાતર, સ્તનધારી યા મુરગી પાલન વધથી ઉત્સર્જિત સહ ઉત્પાદનોની અનુમતિ નહીં મળશે. એમાં કિસાન સાથીઓ, સ્વચ્છ દેખભાળ જીવન વિધિને દ્વારા પશુપાલન પ્રબંધમાં નિયમોના અનુસાર પશુપાલકોને સ્વચ્છ દેખભાળ પ્રથાઓને ભલી ભાંતિને સ્થાપિત કરવાની જરૂરત રહેશે. સ્વચ્છ દેખભાળ પ્રથાઓમાં કઈની બી એની વાતને ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જેવી રીતે ઉપયુક્ત પ્રજાતિઓ અને પશુધનનો ચયન કરવો જોઈએ અને પર્યાપ્ત માત્રામાં સારાનો પ્રબંધન કરવો જોઈએ અને એક ઉચિત વાતાવરણ બનાવવો જોઈએ. તેમાં તણાવ, બીમારી, પરજીવી આધારિત બીમારીનો રોગનામ, ટીકાનો ઉપાય, પશુ અને તીહુના જીવ વિજ્ઞાનનો બૃહદ જ્ઞાન, પશુ કલ્યાણ આદિથી બળાયો આવવો જોઈએ. કિસાન સાથીઓ, એની વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પશુ એના હારું એક ઉચિત વાતાવરણ બનાવવામાં મદદ મળે છે. તેથી દર્દ અને તણાવ નિવારણમાં સહુલિયત થઈ જાય છે અને પશુપાલક રોગ રોગધામ અને એન્ટીબાયોટિક્સનો પ્રયોગ નહીં કરી શકે. તેમાં એની વાત હારું પ્રેરિત અને પ્રોત્સાહિત કરી જાય છે કે એમાં આપણા પશુઓનો ઉપયુક્ત ઇલાજ પરંપરાગત તરીકાથી કરવો જોઈએ. પણ એન્ટીબાયોટિકનો રાસાયણિક દવાઓના ઇસ્તેમાલની બાદમાં પશુઓને જૈવિકની તરફ સંબોધિત યા ક્રય વિક્રય નહીં કરી શકી. પશુપાલક અને પશુઓના શારીરિક વિકાસ સારું હાર્મોન્સ અને અન્ય દવાઓનો પ્રયોગ નહીં કરી શકી. તો કિસાન સાથીઓ, કૃત્રિમ ગર્ભાધાનનો પ્રયોગ કેવલ જો ચિકિત્સીય આવશ્યકતા અગર ઓહે તેને દ્વારા હી કરવો જોઈએ. હાર્મોન્સને દ્વારા શરીરનો તાપ ઉપચાર અને પ્રેરિત બચડાનો જન્મ સાધારણતઃ વર્જિત રહેશે અને એ કેવળ ચિકિત્સા કારણો અને ચિકિત્સીય સલાહના જો અવસ્થામાં હી કર્યો જાય છે. તો કિસાન સાથીઓ, અપવિષ્ટ પ્રબંધન, અપવિષ્ટ પ્રબંધન કિસાન ભાઈઓ, પશુપાલકોને અપવિષ્ટ પ્રબંધનની તરફ ખાસ ધ્યાન દેવું જોઈએ. પશુઓના જો અપવિષ્ટના જો બનેલા ખાદોનો પ્રબંધન એના પ્રકાર તો કર્યો જાય છે કે ફસલીઓ મીઠી યા પાણીમાં પ્રદૂષણ નહીં ફેલી શકે અને એની હાથે હાથે પોષક તત્વોને બી પુનર્ચક્રણ બી થઈ જાય છે અને થતો રહેશે. કિસાન સાથીઓ, એની બાદમાં અગર દેખી જાય તો જૈવિક ડેરી ફાર્મમાં પશુ આવાસની જો આવશ્યક નિર્દેશ અગર દેખ્યા જાય તો એક જૈવિક ડેરી ફાર્મમાં જાનવરોને સહી તરીકાથી રખ રખાવમાં બી પ્રબંધનના તરીકા બી કઈ પ્રકારનો સમાયોજનની જરૂરત પડે છે અને એમાં आवाज भी एक महत्वपूर्ण घटक से जैविक कृषि प्रणाली में पशुधन इनमा विशेष रूप थी दूध वाला पशु अक्सर केंद्रित इनमा बिंदु रहे अने इना आसपास में इन्होंने सफलता ना कारक भी इन्होंने घूमता रहे से। तो किसान साथियों डेरी पशुओं ना जैविक कृषि प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रहे से क्योंकि या कृषि परिस्थिति तंत्र ने भी स्थिर करे से इन्हीं हाथे हाथे इनकी ज्यादा उपजाऊ भी बनावे से। जैविक विधि ने द्वारा पशुपालन में आवास नो निर्माण व्यवस्था जानवरों ना व्यवहार ना तरीका ना अनुसार रहो जोइए। किसान भाइयों इन्हीं बात नो ध्यान रखो जोइए कि जानवरों ने ज्यादातर धूप अने बारिश थी वसाड़वा हारू इन्हें अलावा ताजी हवा अने प्राकृतिक रोशनी तक पहुंचवानी पूरी व्यवस्था लेवी जोइए। इन्हीं हाथे हाथे इनमें स्वच्छंद विचरण हारू भी पर्याप्त खाली जगह रहेवी जोइए। पशुओं की आवश्यकता ने अनुसार पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी की भी व्यवस्था रहेवी जोइए अने पशुओं ने बांधी करीने नी राखवा जोइए। इना खुल्लू घूमवानू अने इना हारू इना ने फरवा हारू जगह भी रहेवी जोइए अने भारतीय मवेशी हारू इना हिंगड़ा हिंगड़ा की विशेषताओं ने कारण आक्रमक भी थाई जाए एनी कारण कई प्रकार नी एवी लड़ाई भी थाई जैसे ती इहनी टेदरिंग भी करी जाए से अने या जानवरों ने पर्याप्त जगह मिली जाए से ताकि इना ने स्वच्छ रूप थी पर्याप्त जगह पर विचरण करी सके। कई एवा अनुसंधानों थी यो पतो लागे से कि दूध वाला पशुओं ने 3-5 नी संख्या ना समूह में राखवा जोइए जबकि इन्होंने बांधीने वाड़ा ने अंदर एक सीमित समय तक राखे जाई सके से अने इन्होंने वाड़ा ने अंदर आराम थी घूमवा हारू पर्याप्त जगह लेवी जोइए। इना ज्यादातर भीड़ या वाड़ा ना समूह में निबड़वी जोइए ताकि तिहोना वश में संघर्ष अने संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पैदा करवाथी रोके जाई सके से। तो किसान साथियों जैविक पशुधन थी लाभ जैव विविधता अने एकीकृत उत्पादन प्रणाली नो परिस्थिति कालिक तंत्र ने हाथे सद्भाव जैविक पशुपालन अने जगहों पर ज्यादा सफल मानी गयु से। जहाँ पशुधन अने फसलियों आपड़ा कई प्रकार ना स्वरूप में पाई जाए से अने इहुनो प्रमुख कारण पशुओं ना स्वास्थ्य अने कृषि विज्ञान अने पर्यावरणना कारकोनो आपसमां संबंधित रहेवुं भी मानी जाय छे। प्रमुख कृषि अवयव घटक इनी प्रणाली अने तंत्रमां सामान्यतः घरमां उगाड्या जावावाळा अने पुनः प्रयोगनी जेडीओवाळा जैविक पोषक तत्वों पर ध्यान दियो जाय अने इना प्रकारथी कोई भी संसाधन व्यर्थ नहीं जाय छे। पुनर्चक्रण अने परस्पर संबंधित चक्र पौधा पशु अने मिट्टी नी वसमा पोषक तत्वों ना परस्पर संबंधित चक्र पर विशेष ध्यान देवो जोइए। तिनथी वातावरण ने हाथे हाथे संसाधनों नो भी सबथी असल प्रयोग थाई सके। सुरक्षित अने शुद्ध उत्पाद लेवो जोइए अने विदेशों में कई एवा उत्पाद अस्वीकार कर नाख्या जाय छे तिन केमकी तिहुना हानिकारक अवयव ना कुछ अंग प्रयोगशाला में परीक्षण में पाया जाए से। सुरक्षित अने पर्यावरण अनुकूल जैविक उत्पादना रसायनों अने कीटनाशकों एंटी बायोटिक्स हार्मोन्स आदि ना अवशेष

0: इन्होंने या फिर वेटनरी डॉक्टर ने सलाह ना आधार पर किसान भाई इना मा आपो काम करी सकी अने जीवे आपण कदी भी पशु ना जन्मवाना टाइम पर रिस्क नहीं लेवी जोई अने बछड़ा ना जन्म ना 4-8 घंटा मा और अगर नहीं पड़े तो अगर एवं वो है कि 10-12 घंटा ने बाद मा नहीं पड़ती वो है और तो इन्होंने असली प्रशिक्षित पशु चिकित्सा ना डॉक्टर ना या प्रशिक्षित आदमी ना माध्यम थी इन्होंने निकालवू जोई। वावानी बाद मा पशुओं ने कुनकुना पानी थी उंगलाई देवो जोई अने दिन थी तीहुनी पाचन क्रिया भी सही थाई जाए। वावानी बाद मा पशुओं ने गोल ने हाथे चोकर मिलावीन खवाड़वू जोई तीन थी पशुओं ने ऊर्जा मळे छे अने एवा टाइम थी शरीर पर काफी गंदगी रहेशे अने इनी हारू पशुओं ने जीवाणु नाशक दवाई मेळवीने साफ कुनकुना पानी थी असली तरह थी उंगलावीने साफ सीतरा थी तीना नोसी देवू जोई। उंगलावानी बाद मा पशुओं ना शरीर पर मखोड़ा मारवानी दवानो छिड़काव भी कर देवो जोई तीन थी मखोड़ा अने कीट तीहु पर नहीं बही सके अने संक्रमण अने कई एवी बीमारियों ने कारण तीहु पर रोक लागी जाए। किसान साथियों पहलो 4-5 दिनों तक रोज 3 वारी पशुओं ने दूध दोहवू जोई जब वाय तीना टाइम पर अने बाद मा वाती इनी वात नो ध्यान राखवो जोई कि दूध ज्यादा पूर्ण हालत में पूरन नहीं निकलवानो रोकवो पड़े से अने दूध इना कारण पूरु दूध खींचवाती दूध ज्वर मिल्क फीवर थावानी संभावना पशुओं में बढ़ी जाए से। तो किसान साथियों घना भाई किसान भाई दूध ने लालच में आवी अने ज्यादा से ज्यादा दूध लोही नाखे से तो हम लोग किसान भाईओ इन ध्यान राखजो कि थोड़ू बहुत दूध बोबा में छोड़ी देव जोई अने पहला थी साल तो आवी रहा मिनरल मिक्सर ने भी लगातार आलतो रहेवो जोई वट्टो आलतो रहेवो जोई इना हिसाब थी रोजाना पशुओं ने आलवो जोई। मिनरल मिक्सर प्रकारना पोषक तत्वों ने शरीर में थायरी कमी ने पूरो करवामां घणी सहायता करे से अने वावानी बाद में भिन्न कई एवा कारणों ने कारण पशुनी पहचान क्षमता अने तीव पर भी एवो असर पड़े से अने इहुनो एक मुख्य कारण रूमेन में थाव वाला बदलाव तीनथी ठीक करवानो एक सरल उपाय रूमीसेल बोलस नो प्रयोग करी सकी। तो किसान साथियों ये बात थाई वावानी बाद में पशुओनी देखभाल करवानी अने हाव पशुना पेट में जो कृमि पाया जाए से त्या तीना पशुओं ने कई नी रीते नुकसान करे से तीना बारा में आपू जानकारी देखी। तो किसान साथियों भारतीय डेरी फार्म में पेट नी कृमि अने ये एक आम समस्या से पेट में तीन प्रकार ना कृमि पाया जाए से पहला है गोल कृमि अने बीजो से फीता कृमि अने तीसरो यकृत अने रूमेल कृमि फ्लूक। तो किसान साथियों कृमि ना सिर्फ गाय नो आहार खाई जाए से पेट में पाया जाए से अने तीहुनो जो गाय नो आहार या कृमि खाई जाए से अने कुछ तो पशु या अपना पशुओं खून भी पी जाए से तीन थी पशुओं में पोषण नी समस्या अने पशु कमजोर थाई जाए से तीन थी वसाड़वा हारू 3 महीना पर साल में 4 वारी पशु ने कीड़ा मारवानी दवा पीवाड़वी जोई। तो किसान साथियों गोल कर्मी फीता कर्मी ऑन फ्लोक तो गोल कर्मी थी वसाड़वानो अने गोल कर्मी थी वसाड़वा हारू किसान भाईओ गाय 300-350 किलो वजन वाली ओहे अने संकर गाय भैंस 300-350 किलो वजन वाली ओहे तो अगर 300-350 किलो ने ओहे तो इन्होंने साल में 2 वारी फेनबेंडाजोल गोली अने एक गोली सुमाहार ना टाइम पर अने एक गोली ताड़ ना टाइम पर हियाला ना टाइम पर अने संकर गायो अने भैंसियो है तीना हारू साल में 2 वारी फेनबेंडाजोल नी गोली अने एक गोली सुमाहामा अने एक गोली ताड़ना दनुमा हियाळामा अने फीता कृमि अने फ्लूकथी वसाड़वा हारू संकर गाय जीनो वजन 300-350 किलो वजन है तीना हारू एक गोली फ्लूकिसिल नी आइवर मेक्टिल साल में 2 वारी पहली सुमाहामा અને બીજી હિયાળામાં, અને ફ્લુકથી વસાડ વાળું શંકર ગાય અને ડોબિયા હારું જેનો વજન 300 થી 350 કિલો તક હોય તેના હારું 18 થી 20 મિલી ફ્લુકિસિલ આઈવર મેક્ટિલ સાલમાં બે વારી, પહેલી સુમાહના ટાઈમ પર અને બીજી હિયાળાના ટાઈમ પર. તો કિસાન સાથીઓ, એ વાત થઈ અમારા પશુઓના પેટમાં કૃમિ પાયા જાય છે તેનો, કૃમિના નામો અને તીહોનો ઈલાજ હારું વાત બતાડી. તો કિસાન સાથીઓ, હાઉ પશુના આહારના બારામાં વાત કરીએ. અગર પશુના આહારના બારામાં વાત કરી જાય તો પશુના દૂધવાળા પશુઓના ઉચિત અને સંતુલિત આહાર આલવો ઘણો જરૂરી છે, અને એના આધારથી ચાર પ્રમુખ ભાગ છે. પાણી પર્યાપ્ત રહેવું જોઈએ અને સારો સારો વરેભરના સારા ઉત્પાદનની પૂરી કોશિશ કરવી જોઈએ, અને લીલો સારો અને લીલી મક્કી, સરી, જુવાર, બરસીમ, રસકો, સાયલેજ આદિ ફૂકેલો સારો અને ભૂ અને પરાળ એવું બધું હાગળું આવેરવું જોઈએ. સુદાણા સાંદ્ર મિશ્રણ દૂધની માત્રાના અનુસાર આલવી જોઈએ. નેપિયર, હાઇબ્રિડ નેપિયર સાયલેજ બનાવવાનું કામ બી ઇનથુ થઈ જાય છે. તો કિસાન સાથીઓ, આપ જાણીએ છે કે પાણીના વગર જીવનની કલ્પના બી નહીં કરી જઈ શકે છે. તો પાણી એક પશુ વાળું એક મહત્વપૂર્ણ ચીજ છે, અને પર્યાપ્ત જ્ઞાનના અભાવમાં અક્ષર પાણી પ્રબંધનનો સહી મૂલ્ય અને આપણી સમજી પાયા છે. તેને હારું ફાર્મમાં આપણે કઈ ની વાતને ધ્યાન રાખીએ. તો કિસાન ભાઈઓ, પાણી પાણી કેમ રાખવાનું, કે પાણી સ્વચ્છ રહેવું જોઈએ અને સાફ રહેવું જોઈએ, અને પાણી હારું 24 ઘંટા પાણી પશુ હારું ઉપલબ્ધ રહેવું જોઈએ. અગર એ સંભવ નહીં હોય તો પશુઓને 24 ઘંટામાં 7 થી 8 વારી પાણી પીવાડવું જોઈએ, અને પાણીને જ્યાદા ટાઢો અને જ્યાદા ગરમ નહીં રહેવું જોઈએ. પશુઓને સૌથી જ્યાદા તરે લાગે છે દૂધ દોહાની બાદમાં. તો કિસાન સાથીઓ, એના હારું દૂધ દોહવા તો આધા ઘંટાના અંદરમાં હર હાલતમાં કિસાન ભાઈ પશુઓને પાણી પીવાડ દેવું જોઈએ, અને નિયમિત અંતરાળ પર પાણીની જાંચ બી કરવી જોઈએ, અને કઈની બી માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રયોગશાળામાં એની જાંચ કરાવી લેવી જોઈએ. તેનાથી તેના નિર્દેશના અનુસાર ઉચિત ઉપાય બી કરવા ઘણા જરૂરી છે. તો કિસાન સાથીઓ, સારામાં અગર વાત દેખી જાય તો ડેરીના પશુ હારો મુખ્યત્વે સારો ખાવા વાળા જાનવર છે, અને યા બંધો ક્રિયા ખાય છે, અને સારો સહી પ્રબંધન કરવો ઘણો જરૂરી છે. અને તેમાં એવી કઈ વાતની ધ્યાન રાખવી પડે છે, સારાને 1 થી 2 ઇંચની લંબાઈમાં કપેલો રહેવો જોઈએ, અને જ્યાદા મોટો અને જ્યાદા બારીક બી નહીં રહેવો જોઈએ, ત્યાં પાચન સંબંધી કઈ એવી સમસ્યાઓને પેદા કરે છે. દાણાથી પહેલું સારો આલવો ઘણો જરૂરી છે, એનથી દાણાની પાચન અસલી કૃતિ થઈ જાય છે, અને હરેક 3 થી 4 દિનમાં પશુઓને 2 રૂમેલ રૂમિપ્રો બોલસ આલવું જોઈએ, જેનથી સારાનો બહેતર પાચન થાય. દાણાનો મિશ્રણ, તો કિસાન સાથીઓ, દાણાનો સંતુલિત આલવું ઘણું જરૂરી છે. એનથી એવા પ્રકારથી આલવું જોઈએ કે તેમાં પ્રોટીન, ઉર્જા અને વસા, ખનિજ, વિટામિન આદિ સહી માત્રામાં તેનાને મળી શકે. એના હારું જાણવું ઘણું જરૂરી છે કે કઈની ચીજને કઈના પોષક તત્વને આમતોર પર એમાં શું મળેલા છે, અને ઉર્જા ખાદ્ય પદાર્થ હારું સરસો, ખળ, બદામ, સોયા ખળ, ગવાર સુરી અને કોરમા, સૂરજમુખી ખળ અને નારિયેળ ખળ અને તીસી ખળ, દાળોની સુરી અને એવા કઈ કૃષિ ઉત્પાદ, ચૂની, ચોકર આદિ કિસાન ભાઈઓને આરવજી.
1: તો કિસાન ભાઈઓ, યો હતો આજનો કાર્યક્રમ ખેતીવાડી. આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપણી વાત સાંભળી પશુપાલનની બારીકી દેખી વાતો વિસ્તારપૂર્વક વાતો વતાડીઓ મારા સહયોગી ભાઈ કમતા ડામોરે, અને એક એવા કિસાન ભાઈ પણ આપણું વાતો વતાડીઓ જેનું નામ છે રમેશ વાસ્કેલ, પારાના રહેવાવાળા છે અને ત્યાં ઘેર રીને પશુપાલન કરી રહ્યા છે અને અસલ મુનાફો કમાઈ રહ્યા છે. રમેશભાઈનું કહેવાનું છે કે અગર આપણા કિસાન ભાઈ ખુદનો એવો નાનો મોટો વ્યવસાય ખોલે તો બહાર પલાયન પર જવું નહીં પડે અને ઘેર ઋણ પણ આપું અસલ આમદની કમાઈ શકી. તો કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી હારું એવા અસલથી અસલ ખેતીવાડીના કાર્યક્રમ લાવી છે અને આશા પણ કરી છે કે અમારા ઝાબવા જિલ્લાના કિસાન ભાઈ એ બધી વાતો સાંભળે અને આપણી ખેતીવાડીમાં સુધાર કરે અને અસલ મોટો મુનાફો કમાઈ શકે. તો કિસાન ભાઈઓ, આ સારું બસ એટલી વાત, કેમ કે હાવ સમય થઈ ગયો છે બીજા કાર્યક્રમોનો. હું આરજે રાકેશ લું છે તમારી દેખી ઇજાજત, પણ તમે જાજો મતી કહેતા હામલતા રહેજો ઝાબવાની આવાસ પર સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM, તમારા જ રેડિયો હતવાર આરજે રાકેશની હાથે.
2: આપ સુન રહે ઝાબવા કા પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી બાતેં.
3: નમસ્કાર દોસ્તો, મેં હું આરજે તનુષા, આપકી તરાનો કી હમ સફર, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पे. दोस्तों, कुछ जिंदगियां एक सीधी लकीर की तरह नहीं चलती, उनमें कभी मुश्किलें होती हैं, कभी बड़े इम्तिहान आते हैं, कभी नए मोड़ और कभी मौके जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं. आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही शख्स जिनकी कहानी हिम्मत, संघर्ष, रेजिलियंस और नए सपने देखने की उम्मीद और हिम्मत की कहानी है. आरजे नितिन सर जो केरला की जड़ों से जुड़े हैं, लेकिन बड़ौदा में पले बड़े. जिंदगी ने उन्हें बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियां सिखा दी. सिर्फ 16 साल की उम्र में परिवार की आर्थिक मुश्किलों के बीच काम शुरू करना और फिर 35 साल का एक लंबा सफर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में तय करना, उनकी कहानी एक किस्सा है, एक हिस्सा है. लेकिन नितिन सर की कहानी शायद उन इम्तिहानों में ही लिखी गई जहां उन्होंने बार बार जिंदगी को करीब से देखा. गॉल ब्लैडर सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी और कई बार हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टीज, इन जैसे बड़े बड़े हेल्थ चैलेंजेस के बाद भी उनका हौसला कभी नहीं टूटा. दोस्तों, 2018 में प्राणिक हीलिंग से जुड़ना उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ था, जहां उन्होंने सिर्फ खुद को हील नहीं किया बल्कि दूसरों की मदद करने का भी एक नया मकसद पाया. और फिर 2024 में शुरू हुआ रेडियो SN का सफर, जहां म्यूजिक, दोस्ती और टैलेंट को एक मंच मिला. आज SN रेडियो दुनिया भर के सिंगर्स को जोड़ने वाला एक ऐसा परिवार है जिसका मिशन है मेकिंग पीपल हैप्पी, और वो सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली है. जी हाँ, एक ग्लोबल म्यूजिकल स्टेज है. तो आज हम जानेंगे उस इंसान को जो कहते हैं सक्सेस सिर्फ डिग्रीज या पैसों से नहीं, किताबों से नहीं, बल्कि उन जिंदगियों से मापी जाती है जिन्हें हम छू सकें और उन चेहरों से जहां हम खुशी ला सकें. तो बहुत ही गर्म जोशी के साथ हम आज स्वागत करते हैं नितिन राज सर का. तो मैं बहुत दिल से स्वागत करना चाहती हूँ नितिन राज सर का आज के हमारे जिंदगी अनप्लग्ड के एक बहुत ही खास प्रोग्राम में. आज हम बात करेंगे नितिन सर से, जो हमारे रेडियो SN के फाउंडर हैं. तो नितिन सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज अपने ही एक बेबी चैनल पे, एक प्लेटफॉर्म पे आने का जो अब धीरे धीरे अडोलेसेंस की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप जिंदगी अनप्लग्ड पे आके?
4: रेडियो SN जब स्टार्ट किया था तो तभी इतना नहीं सोचा था, और अभी यहां बैठकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है.
2: मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सर आज आपको इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि आपकी जो जिंदगी है, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया हमारे दोस्तों को,
3: बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरी जिंदगी, बट फिर भी बहुत रेजिलियंस से जी हुई जिंदगी, बहुत हिम्मत से जी हुई जिंदगी। और वो हिम्मत सिर्फ आपके खुद के जीवन के लिए नहीं रही, बल्कि इंस्पायर करने के लिए रही है लोगों को, जो आई थिंक इज द पर्पस ऑफ एनी गुड ह्यूमन बीइंग। सो आई कंसिडर यू एज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट आई हैव मेट, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए सर।
4: मैं भी यहाँ बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हर बार मैं लोगों से सवाल करता हूँ और आज उल्टा हो रहा है, आप मुझे सवाल कर रही है। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोग्राम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस।
3: यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स अ प्रिविलेज सर। तो आपकी आरजे दोस्त, आपकी तनुषा, आपके तरानों की हम सफर शुरू करती है सवालों का सफर। मेरा पहला सवाल सर आपसे बहुत ही सादा है, बहुत सिंपल है, बहुत ग्राउंडेड है और बहुत ही गहरा सवाल है। 16 साल की उम्र से आपने हमें बताया कि आपके परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो आप पे आ गई और आपने बहुत सारी चीजें परिवार में संभालना शुरू कर दी। आज अगर आप 16 साल के उस नितिन से मिलें तो आप उसे क्या कहेंगे और कैसा था ये सफर, क्यों आपको 16 साल की उम्र से काम करना पड़ा, अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ साझा करें।
4: जी देखो, आज मैं अगर वो 16 साल के नितिन से बात करूं तो मैं ये कहूंगा प्राउड ऑफ यू। क्योंकि क्या है ना, 16 साल की उम्र तो ऐसे होता है खेलने कूदने की उम्र होती है। 10th grade से तब से शुरू किया था मैंने,
3: राइट,
4: क्योंकि मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। मैं साफ बता, आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। तो मैं 10th में वैसे फेल भी हुआ,
3: ओके,
4: बिकॉज आई वाज वेरी वेरी पुअर इन मैथमेटिक्स।
3: ओ सेम हियर, हैंड्स हाई फाइव।
4: तो
3: हाई फाइव।
4: ऐसे मैं फेल होके बैठा था घर पे, तो मेरे डैड जो थे वो रिटायर हो चुके थे बाय दैट टाइम, तो ही वाज आल्सो वर्किंग विद सम प्राइवेट कंपनी। तो वो प्राइवेट कंपनी का जो ओनर है वो मेरे डैड के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो उन्होंने बोला देवराज क्या कर रहा है, रिटायरमेंट तो हो गया। मेरे डैड भी एमईएस में थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो वहां से रिटायर होने के बाद बैठे थे, तो घर पे बैठे थे, तो उनको एक बार उनका फ्रेंड ने बुला लिया, क्या आ जाओ यार मेरे कंपनी में काम कर लेते हैं, आपका टाइम भी निकल जाएगा। तो वैसे मेरे डैड वहां पे जॉब कर रहे थे, तो वो बोला कि लड़का तो अभी घर पे खाली बैठा है। तो उन्होंने उनके वो मालिक से बात की, जो ओनर से, तो उन्होंने बोला ठीक है देवराज भाई ले आओ आपके लड़के को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे मैं डैड का असिस्टेंट होकर मैं ऐसा बिलिंग क्लर्क मैंने वहां पे 1988 में स्टार्ट किया वर्क करने का। तो दिस वॉज एन एक्सपीरियंस। और वैसे क्या फाइनेंशियल स्टेटस भी इतना स्टेबल नहीं था, क्योंकि वो टाइम पे जो गवर्नमेंट में सैलरीज इतनी नहीं, हाई सैलरीज नहीं थी। तो एक सपोर्ट हो जाता था फैमिली को, तो चलो ठीक है। मगर मेरा जब मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, तो मैंने डैड को बोल दिया अगर मैं जॉब करूंगा तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, सिंपल एज दैट। क्योंकि प्राइवेट पढ़ना और ये सब करना, और वैसे बेसिकली क्या था, मेरा जो घर था वो करीबन 16 किलोमीटर दूर था जो जहां डैड जॉब पे जाते थे। तो आप मानोगे नहीं कि मेरा ब्रदर, तब वो टाइम पे लूना मोपेड होता था, लूना,
3: राइट,
4: तो मेरे डैड को पीछे बैठा के मेरा ब्रदर बाइक ये लूना चलाता था, और मैं साइकिल पे मेरा भाई का शोल्डर पकड़ के जाता था।
3: बताइए
4: और ये 16 किलोमीटर
3: तक,
4: यस, दिस वाज द लाइफ विच आई, इट वाज अ स्टार्ट फॉर मी, बट आई वाज प्रीटी एक्साइटेड कि चलो ठीक है जॉब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा 375 रुपीस मिलता था मुझे पर मंथ।
3: करेक्ट।
4: तो ये 16 किलोमीटर जो लूना में मेरे डैड को मेरा ब्रदर बिठा के जाता था, तो मैं मेरा ब्रदर का शोल्डर पकड़ता था कि मुझे साइकिलिंग करना ना पड़े। तो 16 किलोमीटर सुबह और 16 किलोमीटर शाम को, यानी 32 किलोमीटर का मेरा राइड होता था। तो
3: क्या बात है।
4: हाँ, और वैसे बेसिकली क्या हुआ, तो ये मेरा एक शुरुआत था। और फिर मेरे को कई काफी सारे दूसरे कंपनीज में, उसके बाद जब 1993 में मेरे डैड एक्सपायर कर गए, उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ी। हाँ, इट्स ओके, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो दूसरे एक कंपनी में PA2 मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद अकाउंट्स, दूसरी कंपनी में अकाउंट सीखा, एक कंपनी में बाद में उसके बाद परचेज सीखा, फिर बाद में एक्सपोर्ट फील्ड में मैं वहां से मैंने पिकअप किया मार्केटिंग का जो है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में था, एंड फाइनली अब मैं कंट्री हेड होके नौकरी करता हूँ, अब जॉब करता हूँ मैं एज अ कंट्री हेड सेल्स, या सो आई गॉट एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग और अभी सब साथ में चल रहा है, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एस एच.
3: अमेजिंग सर, अमेजिंग. किस तरह से जीवन आपको यू नो आपको चैलेंजेस थ्रो करती है जब आप अनअवेयर होते हैं, अनप्रिपेयर्ड होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं उन चैलेंजेस को लेके अपने जीवन को एक अलग ही दिशा दे जाते हैं, और उनमें से आप एक हैं जिनसे मैं मिली हूँ, बहुत पर्सनली जानती हूँ और बहुत इंस्पायर होती हूँ आपकी रेजिलियंस से, आपकी यू नो एक स्ट्रेंथ से जो हर मुश्किल से लड़ने को तैयार रहती है विद अ स्माइल, नॉट जस्ट लड़ने के लिए कि हाँ ठीक है लड़ रहे हैं, बट विद अ स्माइल. और इसी के साथ मेरा अगला सवाल यही है कि आपने बहुत सारे हेल्थ के भी चैलेंजेस देखे, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ ने आपको बार बार धोखा दिया और कई सर्जरीज हुई, कई एंजियोप्लास्टीज हुई, मल्टीपल एंजियोप्लास्टीज हुई आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस होने की वजह से. तो जब इतनी बार आप जिंदगी खो और एक तरह से डेथ को भी बहुत करीब से देख लेते हैं, तो जिंदगी की क्या डेफिनेशन इसीलिए बदल जाती है, इसीलिए मुस्कान आ जाती है और सब चीजें फिर बहुत इजी लगती हैं, क्या ये रीजन रहा?
4: नहीं, मेरे लिए क्या ना ऐसा कह सकते हैं, जिंदगी का डेफिनेशन बदलता नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं जो बदलते रहते हैं, ठीक है, और समय के साथ साथ हैबिट और मूड चेंज करने वाले लोगों को मैं मिला हूं, मगर मैं वैसा इंसान नहीं हूं. मेरा जो मूड है ना वो एक जैसा ही रहता है हमेशा, भले मुझे कोई तरह का प्रॉब्लम हो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा एवर स्माइलिंग रहता हूं. अभी मैं रिसेंटली मैं जो जहां जॉब करता हूं वो डायरेक्टर मेरे को बोलते नितिन यार आई फील अमेस्ड, क्यों क्या हो गया, वो भी हंसते हंसते पूछ रहा हूँ, तो बोले यार तू कैसे हमेशा स्माइल की, इतना सब प्रॉब्लम होने के बावजूद तू इतना आराम से रहता है, स्माइलिंग रहता है. बोले अब ये मैं सोच के क्या करूं, मुझे मुझे क्या मिलने वाला है. जैसे मेरा 2001 में मेरा सबसे पहला ऑपरेशन हुआ था, गॉल स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, गॉल ब्लैडर निकाला गया था 2001 में, ठीक है. 2012 में मुझे स्पाइन में सर्जरी हुआ था, डिस्क प्रोलैप्स की वजह से, दो बार बाथरूम में गिरने की वजह से मेरा डिस्क में प्रोलैप्स हो गया था, तो वो जो एंड जो स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व होता है वो आके फंस गया मेरे कमर में, जो स्पाइनल कॉर्ड के जॉइंट, उसको फ्री करने के लिए वो लोगों ने दोनों साइड से ऑपरेट सेंटर में ऑपरेट करके दोनों साइड से स्क्रू किया, करीब मेरे ख्याल से दो या तीन दो इंच का स्क्रू है शायद, दो से तीन इंच, वो एक्सरे में दिखता है बहुत क्लियरली दोनों साइड से, ताकि वो क्या मेरा जो नर्व वो फ्री हो जाए और फिर ये स्पाइन वापस जाके वो नर्व से ना टकराए, उसकी वजह से उस लोगों ने स्क्रू करके रखा हुआ है. अब ये हो जाने के बाद 2015 में रात को एकदम से 1:30 बजे हार्ट अटैक आया मुझे, और मैंने बाइक ले फर्स्ट हार्ट अटैक, और मैं बाइक लेके निकल गया हॉस्पिटल, 90% ब्लॉक, यस, 1:30 बजे अगर मैं किसी को बुलाने,
3: दिस इज लाइक यू शुड राइट अ बुक ऑन दिस, मतलब
4: 1:30 बजे के रात को सुबह किसी को उठाने जैसा है नहीं, तो मैं चला गया, निकल गया बाइक लेके, और मैं कैसे भी करके वहां पहुंच गया हॉस्पिटल, एंड देन 3 बजे मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ, तो वो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेंटिंग डन. फिर 2017 में हार्ट अटैक नहीं था, इट वाज अ ब्लॉक, फिर एक और स्टेंट लगाया. 2023 में मैंने डॉक्टर को बोला सर मुझे ब्लॉक हुआ है, तो बोला डॉक्टर, बोले कार्डियक सर्जन, बोला तू सर्जन है कि मैं सर्जन हूं, मैं कार्डियक डॉक्टर तो मैं हूं कार्डियोलॉजिस्ट, तो तू कैसे बोल रहा है, मतलब सर है मुझे ब्लॉक, मुझे पता है. तो उन्होंने पहले मेरा एक बार क्या बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम किया, तो उसमें जो ब्लड फ्लो हार्ट में जो जा रहा है वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने बोला नहीं सर है, तो बोले इतना सब क्या जिद्दी बनता है, चलो ठीक है एक बार टीएमटी करा देते हैं. ट्रेडमिल किया, तो मैं 12 मिनट का जो वॉक है वो मैं 8 मिनट में, मेरे को सांसें फूलने लगी और मेरे को चेस्ट पेन होने लगा, तो लोगों ने इनकम्प्लीट लिख के रहे, तब जाके उन्होंने एंजियोग्राम किया, तो 3 ब्लॉक, फिर से तीन स्टैंड लगाए तो पांच स्टैंड हो गए। अब ये होने के बाद अभी उसके बाद हर्पीस आ गया 2025 में, इतना खतरनाक हर्पीस के लेफ्ट लेग मेरे पैरों के ऊपर इतना बड़े बड़े बॉइल्स हुए थे, इतना पेनफुल। वो दो महीना मैं सोया नहीं, मगर वो दो महीना न सोने के बावजूद यार मेरा जो वर्किंग का जो स्केड्यूल है ना, मैं कभी चूकता नहीं था, भले वो रेडियो हो या कुछ भी हो।
3: जी जी,
4: आरजे का काम भी करता था, सब करता था, मैं गाने भी गाता था, तो चलता रहता, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको ज्यादा इतना मैं उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा।
3: ओह गॉड सर, मतलब सुन के ही मुझे दर्द होने लग गया सब बॉडी पार्ट्स में। आप इसको झेल रहे हैं, आपके अंदर ये स्टेंट्स हैं, ये स्पाइन में ये रॉड है, बाप रे, आई कांट इमेजिन। एंड यू स्टिल सच अ हार्टी पर्सन, जिससे बात करके इतना मतलब एक इंसान एकदम अपलिफ्ट हो जाए जिसकी स्पिरिट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग सर। चलिए, वैसे ये बहुत खूबसूरत मोड तो नहीं है जिसमें मैं गाना बजाना चाहूंगी, पर फिर भी क्योंकि हमारा फॉर्मेट है कि दो गानों दो क्वेश्चंस के बाद हम गाने सुनते हैं, तो आप ही की फरमाइश का आप ही का गाया हुआ बहुत खूबसूरत एक गीत, कलियों ने घूंघट खोले, फिल्म दिल ने फिर याद किया।

0: लगता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था आपके लिए।
1: देखो, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राणिक हीलिंग ऐसे लोग ही सीखते हैं जिसको मास्टर का बुलाव आता है। ग्रैंड मास्टर चोकुक्सुई है, जो जो एक फिलिपिनो था, वो ही वाज सो पावरफुल। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये उनका बुलावा था थ्रू एंड सम अदर पर्सन, जो जिसको मैं जानता हूँ बहुत, नॉट दैट करीब से। उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसा प्राणिक हीलिंग है, कोर्स है, आपको इतना सारा प्रॉब्लम्स हुआ है लाइफ में, हेल्थ प्रॉब्लम्स हुआ, तो व्हाई डोंट यू डू दैट दैट यू कैन स्टार्ट हीलिंग पीपल एंड यू कैन हील योर सेल्फ। तो ये मुझे एक अच्छी चीज लगी मुझे, तो मैं सोचा कि चलो व्हाई नॉट, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में, मेरे को देखो तनुषा, मुझे आज तक किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया है कोई चीज में भी। मेरे फादर, तो मैं जब 20-21 साल का था, मेरे फादर गुजर गए, ठीक है, और फिर जो वहां से जो मैंने अपने आप को जो ढाला है लाइफ में, वो अपने
0: संभाला
1: बलबूते,
0: है।
1: हाँ अपने बलबूते पे, ना मुझे किसी ने कोई कंप्यूटर सिखाया, ना मुझे कोई किसी ने गाइड किया कि भाई ऐसे चलो तो ऐसा होगा, ऐसा चलो तो ऐसा हो, कोई मार्गदर्शक नहीं था मेरे लिए। मगर जो कुछ किया मैंने, मैं मेरे सोचने पे किया, ठीक है। मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता बुक्स में, बुक्स में बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारी जिंदगी ही एक बुक है हमारे
0: सबसे
1: पास।
0: खूबसूरत बुक।
1: यस, सबसे खूबसूरत, उसके ऊपर भगवान ने हमको सब कोरा कागज दिया हुआ है, उसमें आप जो लिखना चाहते हो लिखो, आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो ही सब कुछ काम आता है। क्योंकि
0: बिल्कुल
1: क्या होता है ना, मैंने पहले एक प्रोग्राम में समीर जी से बात हुई, तो समीर जी भी मेरे को पूछे थे, तो समीर जी को मैंने एक चीज बताया था कि सर बात यह है कि मुझे किसी से मोटिवेशन नहीं चाहिए, मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड हूं, क्योंकि मैं कोई भी टास्क लेता हूं तो उसको मैं बिल्कुल ही अप टू डेट करना चाहता हूं।
0: परफेक्शन से करते हो।
1: यस, आधा अधूरा काम मैं आधे मन से नहीं करता, आज किया कल नहीं किया, कंसिस्टेंसी है वो जरूरी है। तो मैंने प्राणिक हीलिंग में मैंने ये सोचा, मेरे को एक इंटरेस्ट था कि ये है क्या चीज। मैंने रेखी के बारे में सुना था, मगर ये रेखी प्राइमरी लेवल होता है और प्राणिक हीलिंग वो क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होता है, बहुत हाई लो होता है, बहुत हाई। यस,
0: मैं
1: उसके
0: सोची थी उल्टा होता है। आई थॉट
1: ना
0: प्राणिक हीलिंग इज बिगिनिंग।
1: ना ना ना रेखी में थोड़े लिमिटेशंस हो जाते हैं, मगर प्राणिक में कोई लिमिटेशंस नहीं है। और उसके 5 लेवल्स होते हैं, वो 5ों लेवल्स मैंने क्रॉस किए। जो लास्ट जो लेवल होते हैं उसको कहा जाता है अरहेटिक योगी योगा। उसमें देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस आर टॉट, और वो मेडिटेशंस मैं रोज करता हूँ। जैसे मैंने मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, अपने 7 दिन वीक होता है, उसमें टोटल मेरे को सिखाया गया 4 मेडिटेशंस है। तो ये दिन को ये मेडिटेशंस करने का होता है, और वो मैं विदाउट फेल, खाना भूल सकता हूँ, पानी पीना भूल सकता हूँ, मेडिटेशन नहीं भूल सकता।
0: क्या बात है सर,
1: हाँ, क्योंकि यू नीड टू
0: वेरी
1: हैव,
0: इंस्पायरिंग।
1: यस, यू नीड टू हैव डिसिप्लिन इन यू इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग करेक्ट, वेदर इट इज एनी फील्ड। तो प्राणिक हीलिंग वॉज द गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि मैं एक चीज, जैसे मैं लोगों का दर्द बहुत ज्यादा समझता हूं, और लोगों को जब मैं किसी को देखता हूं, पहले से ऐसा था, ऐसा नहीं कि प्राणिक हीलिंग के बाद, मैं पहले से ऐसा था और पहले से लोगों को हेल्प करता था। जब किसी को कोई तकलीफ होती, कि कोई तरह को, कोई तकलीफ मुझे लेकर आकर मेरे को बोलता है कि मुझे ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो पहला चीज मैं देखता हूं कि मैं अपने आप को वहां पे खड़े रख के देखता हूं कि मैं उसकी जगह हो तो मुझे क्या लगता है।
0: एम्पथी।
1: एम्पैथी, वो एम्पैथी जब तुम डेवलप करते हो अपने अंदर, ऐसे सुन लोग आज की तारीख में लोग ऐसे होते ही नहीं है, सब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं,
0: करेक्ट
1: सब अपना
0: करेक्ट
1: अपना ले,
0: करेक्ट
1: अरे ठीक
0: बिल्कुल
1: है जाके, तो
0: बिल्कुल
1: वैसा ही मेरा
0: बिल्कुल।
1: काम नहीं है। मैं बहुत
0: गहराई में
1: गहराई
0: उतरते
1: में
0: हैं।
1: जाता हूं, इसलिए मैंने प्राणिक हीलिंग मेड मी चेंज लाइक एनीथिंग। 2018 से,
0: राइट
1: 10 साल से
0: राइट
1: मेडिटेशन करता हूं, करेक्ट।
0: बताए
1: और
0: बताए जी।
1: दूसरे को आप एहसास करोगे, उनकी तकलीफों को आप एहसास करोगे, तभी जाके उसको आप एक करेक्ट
0: ही करोगे करेक्ट।
1: हीलिंग कर सकते हो। अब जैसे फॉर इंस्टेंस, एक इंसान का सर बहुत दर्द हो रहा है, उसने मेरे को कॉल किया कि सर मेरा

0: मेरा मेरे को आई हैव गॉट अ वेरी टेरिफिक हेडेक, तो मुझे जरा हील कर दो. तो मैं उनको ये हीलिंग उसको सीधे हेडेक के लिए नहीं देता हूँ. मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपको कोई इसके अलावा आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो बोलता है जैसे वगैरह, तो बोलता है कॉन्स्टिपेशन है आपको, तो बोलता है सर. तो मैं सिर्फ अगर हेड को ही उसका हेडेक को हील करूंगा तो वो हेडेक प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका रूट जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है. कॉन्स्टिपेशन से हेडेक आता है. तो पहले मैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा तो ऑटोमेटिकली हेडेक कम हो जाएगा उसका.
1: बिल्कुल.
0: तो ये सब चीजें होती है, टेक्निक्स होता है आप रहने के लिए में. तो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी टू लर्न दिस थिंग, दिस आर्ट.
1: राइट,
0: मजा आता है. और आज की तारीख में काफी पेशेंट्स है मेरे पास, और मैं काफी सारे रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं जिन्होंने मेरे मेरे जो हीलिंग से काफी उनको प्रभाव हुआ उनके लाइफ में.
1: राइट,
0: हैपेंस. अच्छा है, चल रहा है.
1: अमेजिंग सर, ऐसे ही चलते चलते सब बहुत और अच्छा हो जाए और आपकी हेल्थ, आपका जो ये हीलिंग का प्रोसेस है ये और इवॉल्व होता जाए, और आई एम श्योर यू विल टेक इट टू नेक्स्ट लेवल्स. क्योंकि आई थिंक आप जो भी करते हैं, जैसे मैंने बताया, टू द टी करते हैं, टू द परफेक्शन करते हैं, विच इज अ वेरी इंस्पायरिंग क्वालिटी. और मुझे लगता है वो बहुत मिसिंग है क्वालिटी आजकल के जमाने में. तो आई रियली लाइक द क्लैरिटी विथ विच यू डू थिंग्स, द परफेक्शन विथ विच यू डू थिंग्स. एंड हीलिंग से आगे चलते हैं सर, जैसे आपने बताया कि आप लोगों से आपकी हीलिंग की जर्नी में भी, रेडियो की जर्नी में भी, मार्केटिंग में भी, आपने जो एक्सपोर्ट मैनेजर जैसे 35 इयर्स का एक सफर तय किया, लंबा सफर है ये, और अब आप कंट्री हेड जैसे काम कर रहे हैं, ग्लोबली काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा लोगों से बहुत क्लोजली जुड़े रहे कहीं ना कहीं. तो आप क्या मानते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी ताकत ए क्या है, उनसे जुड़ के आपको किस तरह का स्ट्रेंथ महसूस होता है, और बी कि आपने रिश्तों के बारे में लोगों से क्या सीखा है, आपकी सबसे बड़ी लेसन लर्निंग क्या है, क्योंकि नेचुरली उसमें भी आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, गुड बैड अगली, तो वो किस तरह की एक सीख आपको दे के गया वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और वो लोगों से जुड़ाव.
0: अब देखो, मार्केटिंग इज ऐसे कहा जाता है कि पीपल मीन्स बिजनेस, ठीक है,
1: राइट,
0: सिंपल लॉजिक है. इसमें कोई बड़ा मार्केटिंग के टेक्निक्स जानने की जरूरत नहीं है. अगर आप लोगों को देखो, लोगों के दर्द को समझो, लोगों के प्लेट में बैठकर उनसे बात करो, तो काम अच्छा हो जाता है. ठीक है, मैं एक मैनेजर हूं, मैं एक कंट्री हेड हूं, मैं कहीं गया किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिला, मैं अपने टाई और वो लेके, मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं तो ये है कंपनी का, ये है वो है, कोई नहीं पूछता आपको. ठीक है, आपके जैसे काफी लोग पड़े हैं इस दुनिया में जो ये कर रहे हैं चीज, क्या आप क्या अलग कर सकते हैं वो देखना जरूरी है.
1: राइट,
0: ठीक है ना. जैसे कि मैं गया कहीं पे, गया तो मैं कहीं पे भी जाता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आता है. वो क्यों आता है? हालांकि पर्सनल रिलेशन उसका स्वार्थ तो है, मगर उससे कुछ ज्यादा है नितिन के अंदर.
1: यस,
0: ठीक है ना. तो दैट इज व्हाट makes you something exceptional from the rest.
1: An extra.
0: So, it is important to first understand the mindset of that particular person before entering into a business with this person. कि वो क्या है. तो मैं जाके पहले जाके ये नहीं पूछता कि भाई आप कौन सा माल बेच रहे हो, मुझे ब्रांड दिखाओ, ये सब नहीं बात नहीं करता मैं. मैं कहीं पे भी जाता हूं तो सबसे पहला चीज उनसे बात करता हूं, कैसे, क्या, कितने साल से यहां रहते हो, कितने साल से दुकान आपने शुरू किया, आपके घर में कौन कौन है, बच्चे क्या करते हैं. तो ये सब जनरल क्वेश्चन है जिससे वो इंसान को हम ज्यादा से ज्यादा हम उसको स्टडी कर सकते हैं.
1: राइट,
0: ठीक है ना. तभी जाके एक तरह से पर्सनल रेपो डेवलप होता है दोनों के बीच में. वो अपने आप को खोलेगा नहीं तो फिर हम कैसे उससे इसका बिजनेस करेंगे, उसका हम क्लोज करेंगे उसको, है कि नहीं.
1: बिल्कुल. और उसको उसको सैटिस्फाई कैसे कर पाएंगे.
0: इसके लिए मैंने और एक चीज मैंने मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट कर रखा है कि मैंने हर इंसान को तीन कलर्स में मैंने बांटा हुआ है.
1: वाओ,
0: यस,
1: इंटरेस्टिंग.
0: यस, ये ऐसा है. एक तो पहला ऐसे आपको मिलेंगे जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत कैलकुलेट, जब भी कोई बात आप उसको करो ना तो एकदम से उसके ऊपर रिजल्ट नहीं लाएगा कि हाँ चलो करते हैं। वो बोलेगा पहले अच्छा कितना टाइम हो गया, क्या कर सकते हैं, मुझे क्या मिलेगा, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो वो क्या करता है, अपने से टाइम लेता है कि मैं सोच के बताता हूं आपको। जब ऐसे बोले तो समझ लो कि ये इंसान कैलकुलेटिव है, ये जल्दी से आएगा नहीं, क्योंकि खुद वो कॉन्फिडेंट नहीं है वो चीज के बारे में करने के लिए, ठीक है। मगर वो जब मेरा फैक्ट एंड फिगर्स को चेक करेगा, ये क्या कर रहा है, मेरा प्रोफाइल चेक करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट कितना मार्केट में जा सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, कितना मैंने सेल किया, ये सब मेरे को पहले वो स्टडी करेगा, तभी जाके फिर वो बोलेगा कि चलो यह बंदा सही लग रहा है यार, तो चलो जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी कहने का मतलब है, वो मेरे कंधे पर रखकर बंदूक से वो अपने गोलियां छोड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, खुद रिस्क नहीं लेगा। हाँ ठीक है, वो पैसे का रिस्क तो ले ही रहा है, मगर उसका पैसा का सिक्योरिटी क्या है वो भी सामने देखेगा ना,
1: देखेगा गारंटी। यस करेक्ट, यस।
0: तो वो करता क्या, तो वैसे लोगों को मैंने येलो कलर रखा है।
1: ओके,
0: तो ऐसे लोगों को, हाँ या ये मैं येलो कलर वाले लोग हैं। दूसरा आता है मेरा, दूसरा वो है रेड वाला। ये लोग बहुत आर्टिफिशियल होते हैं, यानी आप उसको देखो तो पता चल जाएगा ये बहुत आर्टिफिशियल आदमी है।
1: एब्सोल्युटली रेड फ्लैग
0: एकदम। क्यों मालूम है, अगर आप उसको पहचानते भी होगे ना, तो इतना ऐसा ऐसा एक झूठ मूठ का स्माइल, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक है, आपको कोई कभी ऐसा नहीं पूछेगा, आपको कोई तकलीफ है, कुछ है, कभी नहीं पूछेंगे।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: ऐसे लोगों से दूर ही रहो।
1: एब्सोल्युटली रेड फ्लैग्स।
0: लोगों, हाँ रेड फ्लैग्स, यानी इन लोग को इमोशनली आपके साथ टच होना नहीं चाहते,
1: अवेलेबल ही नहीं है। यस,
0: वो फॉर्मेलिटी दिखा रहे हैं आपको,
1: करेक्ट,
0: कि भाई क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस बोल दिया फॉर्मेलिटी के लिए, बता दिया है, हम तो बहुत डिसिप्लिन्ड है। हाँ, मगर ये लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं।
1: यस,
0: अपना रेडियो की बात कर लेते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मेरा पल्ला पड़ता है। गाना गाते ही फिर उसके बाद गायब
1: गायब
0: ये सब रेड फ्लैग वाले, कोई मतलब नहीं है, मेरे जैसा सिंगर इस दुनिया में नहीं है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं तेरे जैसा, मैंने कभी गाया ही नहीं, मेरे जैसा कोई गा ही नहीं सकता, मैंने उसके साथ प्रोग्राम किया था, मैंने सोनू निगम के साथ प्रोग्राम किया, मैंने लता मंगेशकर के साथ किया था, मैंने ये किया था वो किया था, बस काम खत्म। मगर इतना याद रखना, ऐसे लोग कभी जिंदगी में ऊपर नहीं आ सकते, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ।
1: राइट, बिकॉज वो कभी लोगों से जुड़ ही नहीं सकते, जुड़ी नहीं, अपने बाहर आ ही नहीं सकते,
0: जब तुम दूसरे,
1: मी माइंड माई सेल्फ,
0: एग्जैक्टली। तो ऐसे लोग को मैंने रेड फ्लैग देके साइड में कर दिया है। हाँ, हम भी उसके साथ रेडी रहे ना, हम क्यों इन्वॉल्व हो जाए,
1: हम क्यों बेवकूफ बने, करेक्ट,
0: जरूरत ही नहीं है इसकी करने की,
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
0: फिर तीसरा जो आता है वो मेरा जैसा ग्रीन है,
1: ग्रीन फ्लैग
0: एकदम बिंदास,
1: जी,
0: सबसे
1: जी,
0: गुल मिल जाओ, चिंता की बात ही नहीं, बस चिंता की कोई बात नहीं,
1: यस,
0: जो भी होगा अच्छा ही होगा, किसी को मैनिपुलेट मत करो,
1: यस,
0: करते रहो काम। हाँ, मुझे एक बात पर गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मुझे भी आता है कि देखो अपॉर्चुनिटी मैं सबको देता हूँ, ठीक है, हमारा काम है अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, मगर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा बहुत ही आगे निकल रहा है, तो उसको धीरे से नीचे लाना भी जरूरी है। भाई, नीचे आओ, नीचे आओ, बहुत ऊपर मत जाओ, रहो हमारे साथ, रहो, उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब, हम देखो ऐसे लोग जो ग्रीन वाले फ्लैग्स होते हैं ना, वो 2-3% मिलेंगे दुनिया में,
1: बहुत कम, अब तो लुप्त होते जा रहे हैं।
0: देखो एक बॉस और लीडर के बीच में यही फर्क है, जो बॉस होता है वो रेड वाला होता है, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, जो क्वेश्चंस पूछता है, और मुझे क्वेश्चंस पूछने वालों से बड़ा गुस्सा आता है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मेरे को क्वेश्चन मत करो,
1: राइट,
0: तुम मुझे पूछो यार, सुन, मैं बोला यार ऐसा रह गया, क्या हो गया, ऐसा क्या काम हो गया, व्हाट हैपेंड, ऐसा बोल सकते हो ना, या तुम क्वेश्चन पूछो क्यों नहीं हुआ, तो मैं मेरा वर्क प्लेस पे ऐसे ही हूँ, कोई मुझे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि मुझे मेरा मैं सामने वाले को स्टडी करता है इसके मुंह से भी क्या निकलने वाला है। वो जैसे कि मुझे कोई काम असाइन किया हो तो मैं पहले से एडवांस में खत्म करके बैठ ही जाता हूँ चुपचाप। तो जब भी आता है, नितिन सर वो हो गया क्या था क्या? हाँ वो मैंने दिया था, मतलब आपका मेल पे चेक कर लो। अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा हो गया क्या?
1: करेक्ट
0: तो कहने का मतलब हमें वो
1: करेक्ट
0: अपॉर्चुनिटी क्यों दे?
1: दें क्यों? करेक्ट, आई लाई इन द सेम कैटेगरी। मेरे को पहले काम करना पसंद है, लेट तो मतलब
0: और आई एम वेरी पंचुअल इन माई टाइमिंग्स, मुझे टाइमिंग में से इधर उधर
1: राइट।
0: करना अच्छा नहीं लगता।
1: लाइकवाइज
0: लाइक
1: लाइकवाइज
0: बिकॉज
1: यस
0: अगर आप
1: यस
0: टाइम के पंचुअल नहीं हो तो जिंदगी आपका गया, यू आर गॉन।
1: गया गया यू गॉन, यू गॉन।
0: बिकॉज
1: बिल्कुल
0: समय किसी के लिए रुकता नहीं है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल, और समय सबसे बलवान है। बेहतरीन
0: सबसे बलवान है। तो ये बात, ये इस तरह से मैं कैटेगराइज करके लोगों से मैं डील करता हूं।
1: ऑसम।
0: हालांकि हालांकि मैं सबको, मैं किसी को इल ट्रीट नहीं करता अनटिल एंड अनलेस मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ऊपर जा रहा है, तो उसको
1: बाउंड्री
0: नीचे
1: क्रॉस कर
0: लाना
1: रहे हैं।
0: जरूरी है, तब जाके मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता
1: करेक्ट
0: हूं। और मेरी
1: करेक्ट
0: थोड़ी
1: करेक्ट।
0: पर्सनैलिटी ऐसी कि लोगों को ऐसा लगता है बहुत खड़ूस इंसान है ये,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: उसका
1: कई
0: ऐसा,
1: बार
0: क्योंकि
1: शुरुआत में मुझे भी लगा था,
0: क्या होता है ना,
1: बट देन धीरे धीरे
0: लोगों को ऐसा लगे
1: यस
0: ये पुलिस इंस्पेक्टर का रोल में अच्छा लगेगा।
1: यस यस यस, इवन योर पर्सनालिटी इज लाइक दैट,
0: हाँ
1: डाउन
0: यस वेरी। तो उन लोगों को ऐसा लगता है अगर मैं किसी से कुछ बोलूँ ना तो उनको ऐसा लगता है कि
1: डोंटिंग।
0: मैं उनको डांट रहा हूँ, ऐसा होता है। बट मेरे को ये एक्सपीरियंस हो चुका है, बट देन जो मुझे बहुत नजदीक से जानते हैं ना उनको पता है ये बंदा बहुत ही सॉफ्ट है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है
1: राइट,
0: इसका।
1: कोकोनट कोकोनट काइंड्स।
0: एग्जैक्टली
1: यस
0: एग्जैक्टली
1: यस यस बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग था सर ये। अब मैं भी अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को इन कैटेगरीज में जरूर डालने की कोशिश करूंगी और समझने की कोशिश करूंगी कौन क्या सोच रहा है, क्या स्कीम कर रहा है, क्योंकि कई बार मैं बहुत इन द फ्लो चली जाती हूँ और नहीं रियलाइज करती कि कहाँ कितना देना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पंक्चुएशंस एंड कर देने हैं,
0: दूसरा एक
1: तो
0: चीज
1: बहुत
0: आपको
1: सी
0: ऐड करना
1: खूबसूरत
0: चाहता हूँ इसमें, जैसे रेड वाले होते हैं ना वो लोग
1: जी।
0: मैनिपुलेशन बहुत अच्छा करते हैं,
1: भयंकर भयंकर
0: यानी कहने का उनकी एक कोई जरूरत हो ना वो आपको
1: यस,
0: 2 साल में कभी कभी आपने कभी पूछा नहीं हो, 2 साल
1: याद
0: के
1: भी
0: बाद
1: नहीं
0: उठे,
1: करेंगे।
0: 2 साल के बाद उसको काम पड़ेगा तो अपने आप आएगा, अरे कैसे हैं
1: क्लासिक
0: आप, अरे कहाँ हो,
1: यस
0: अरे यार
1: यस
0: बहुत
1: यस,
0: टाइम हो गया यार मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, सॉरी फॉर दैट। फिर धीरे लेके 2 दिन के
1: क्लासिक
0: बाद फिर से फोन करेगा तो समझ जाना कोई काम आ रहा है उसको।
1: काम है। यस
0: तो ये रेड
1: यस
0: वालों से
1: यस
0: ध्यान रखिएगा।
1: यस सर, डन डन है। आई लर्न दीज कलर स्कीमिंग्स एंड ब्यूटिफुली पुट सर। इसी बात पे हम सुनेंगे आपका अगला गीत, आप ही की खूबसूरत आवाज में, जिस रात के ख्वाब आए, फिल्म हब्बा खातून।
0: ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, रफी
1: जी
0: साहब का
1: जी
0: सबसे मेरा फेवरेट सॉन्ग।
1: सबसे फेवरेट।
0: यस
1: आई कांट लिस वेट टू लिसन टू इट इन योर वॉइस सर।
0: थैंक यू।

0: बहुत ही खूबसूरत सर, कितना
1: यू।
0: ही कह दो खूबसूरत, कितना ही एडजेक्टिव्स लगा लो, आपकी गायकी इज सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो प्योर, इट हैज सो मच इमोशन, सो मच सोल इन इट। तो हर एक नोट में ऐसा लगता है कि आपकी आवाज में आपका जहन उतर के आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत।
1: बस ऊपर वाले की मेरे पे कुछ स्पेशल ब्लेसिंग है, मैं ऐसे मानता हूं। मैंने कुछ नहीं किया है,
0: जी
1: जो कर रहा है ऊपर वाला
0: जी
1: कर रहा है, मैं सिर्फ वो कर्म करते रह रहा हूं, बस दैट्स इट।
0: चोजन वन, यस
1: यस
0: यस। आगे चलते हैं सर। हमने जाना आपके बारे में कि आप बचपन में बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, सिंगिंग करते थे, तो आज आप जब SN रेडियो के इस इम्पोर्टेंट सफर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, 2024 में जब आपने और समीर सर ने SN रेडियो का ये ब्यूटीफुल सपना देखा, इस सीड को बोया, तब आपका विजन एग्जैक्टली क्या था? और ये जो मेकिंग पीपल हैप्पी का जो मिशन है हमारा, ये क्या आपने सोचा कि ये आपका एक, आपने कभी सोचा था कि जब आपने इसको सीड किया तो ये इस तरह से ग्रो होगा और इस तरह से ब्लॉसम करेगा इनटू अ ग्लोबल म्यूजिकल फैमिली?
1: देखो, ये रेडियो SN तो हमने स्टार्ट किया था जून 2025 में। मिशन था कि 10 रेडियो स्टेशंस अक्रॉस इंडिया बाय 2030। पर उसके लिए क्या बोलते हैं, दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो पब्लिसिटी होना जरूरी है, ठीक है ना, देश के कोने कोने में रेडियो SN को लोग जानना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए हमने प्रोग्राम बनाए और बढ़ाए भी, ठीक है ना। तो विजन तो पहले से ऐसा था कि कॉमन पीपल को टारगेट करें, ठीक है। कॉमन पीपल इज आवर मेन गोल, नॉट सेलिब्रिटीज, क्योंकि कॉमन पीपल का दर्द जो भी है वो कॉमन पीपल कहां पे जाके बोलेगा,
0: करेक्ट
1: ठीक है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे हमने जितने लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं करें, सो दैट पीपल गेट इन्वॉल्व। सब लोगों को अपनी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि सब लोग सेल्फ सेंटर्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग, हम लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं, सब लोग सेल्फ सेंटर्ड है, कहने का मतलब,
0: एब्सोल्युटली
1: ठीक है ना। बट कोई लोग जरूरत से ज्यादा है, कुछ लोग ठीक है, हाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे रेडियो में ज्यादा से ज्यादा लोग आके प्रोग्राम दें, ठीक है। हमारा जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ है, ठीक है ना। 140 करोड़ का 1% कितना हुआ, करीबन 14 से 15 लाख, ठीक है ना। अगर 14 से 15 लाख तक हम पहुंच गए तो वी आर हैप्पी विद दैट। उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, हमको और ज्यादा लोभ नहीं है। ऐसा कि लोभ, यानी कहने का मतलब हमारे पब्लिसिटी का लोभ, ठीक है। हम ये कोई कमर्शियली करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम लोग कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स नहीं करते हैं हमारे प्रोग्राम में ताकि हमको पैसा मिले इसके लिए, नहीं, वो नहीं। आवर इंटेंशन इज टू सर्व पीपल, उनके उनका जो भी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उनसे बाहर लाएं,

0: पब्लिकली, और जो गाना गाते हैं जो आर्टिस्ट है वो अपना अपना जो पेशकश करे, ठीक है, कलाकारी का, ये मेन शुरुआत ऐसी हुई थी, ठीक है। अब वो धीरे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता गया, अभी लोग बहुत ज्यादा ज्यादा जानने लगे रेडियो एसएन को, काफी नए नए प्रोग्राम्स आने लगे, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग दिस वन,
1: राइट।
0: और मेरा एक और सपना है, ये तो शुरुआत हो चुका है और ये अभी पीछे मुड़ने वाला नहीं है, वो चलने वाला है, ठीक है। अब मेरा इसमें एक और सपना है कि रेडियो एसएन का एक खुद का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हो जाए, जिसमें हमारे ग्रुप के फैमिली मेंबर्स में जो हमारे से जुड़े रहने वाले फैमिली मेंबर्स में से अच्छे अच्छे सिंगर्स को मोल्ड करके, उनको ट्रेन करके हमारे ये ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में अपॉर्चुनिटी लेना, और हम देश में घूमेंगे और विदेश भी जाएंगे। दैट इज व्हाट मेरा अगला 3 साल का प्लान है, ये
1: Amazing.
0: जर्नी है, वो जर्नी को उसी का एक उदाहरण अभी शुरुआत हमने किया बेंगलुरु में कैरियोके का एक इवेंट जो बहुत सक्सेसफुल हुआ, और वी वर बोथ अमेज दैट लोगों का इतना क्या क्रेज थे म्यूजिक के लिए, और इट वॉज लाइक यू नो ऐसे लग रहे थे कि हम हमारे घर में बैठे हैं।
1: बिल्कुल, इतनी वॉर्म्थ थी।
0: Yes. तो कहने
1: हम ना होते हुए भी वो वार्मथ फील कर पा रहे थे यहाँ से, जयपुर से।
0: बिल्कुल, तो कहने का मतलब जब हम वहां थे तो वी वर लाइक एनीथिंग, हमको कुछ वी वर आउट ऑफ माइंड कम्प्लीटली, हम क्या हो रहा है आसपास में, हम लोग भी इतना इन्वॉल्व थे म्यूजिक के अंदर। तो कहने का ये शुरुआत है, तो मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट हमारा इवेंट बड़ौदा में हो जाए, एक इवेंट पुणे में हो जाए, एक इवेंट चेन्नई में हो जाए, धीरे धीरे हम हर जगह पर इसको पब्लिसाइज करते जाएं। म्यूजिकल कम्युनिटी विल ग्रो लाइक एनीथिंग, यू नो।
1: एब्सोल्युटली सर।
0: और ये हमेशा याद रखिएगा तनुषा, जब भी कोई चीज हम कर रहे हो वहाँ कम्युनिटी होना जरूरी है।
1: एब्सोल्युटली।
0: और तो आप किसी को इल ट्रीट मत करो, सब अपने अपने जगह सही है, ऐसा समझिए, किसी के ऊपर हमको वो करने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी वेरी, वी हैव टू टेक आवर प्रिकॉशनरी मेजर्स आल्सो फ्रॉम आवर साइड, कि हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से लोग आना जरूरी है, और वैसे लोग ही हमें चाहिए जो हम हमारे भी दो बात सुन सकते हैं, उनके भी अच्छी अच्छी बातें हम भी ले लेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे हमने एक ग्रुप हमने दूसरा अलग से खड़ा किया था, थिंक टैंक ग्रुप, उसमें काफी अच्छे अच्छे सिंगर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, जो सिंगर्स ला रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास से सजेशन लेना, और ये लोग ही हमारे साथ ग्रो करने वाले लोग हैं, इनको हम छोड़ नहीं देंगे
1: लॉन्ग टर्म के लिए। यस यस।
0: हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को सुने, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो ग्रुप में है वो भी ये प्रोग्राम को सुने, कम से कम 10 मिनट तो सभी लोग निकाल सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई भी, ठीक है। जब वो प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम में 5 मिनट का वीडियो डाल सकता है, तो आप तो प्राइम मिनिस्टर तो हो नहीं, कुछ तो कर सकते हो, 9 से 10 के बीच में कोई किसी को तो एंकरेज कर सकते। कल जो लड़की ने, जो बच्ची ने कितना अच्छा प्रोग्राम दिया,
1: ब्यूटीफुल प्रोग्राम, ब्यूटीफुल।
0: सो दिस इज हाउ वी गो।
1: एब्सोल्युटली सर, अमेजिंग। आई विश आपके सारे ड्रीम्स जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हों, ताकि हम एक्चुअली फ्लाई करें एज एसएन रेडियो, एंड वी स्प्रेड आवर विंग्स आउट वाइड, फार वाइड, एंड गो इंटरनेशनल विद द टूर्स। एंड दिस इज माय विश, दिस इज माय अर्नेस्ट विश, माय अर्नेस्ट मैनिफेस्टेशन, एंड माय अर्नेस्ट प्रेयर दैट यू नो कम्स ट्रू मे बी इन ड्यू टाइम। इन आई थिंक ऑल इन गुड टाइम हैपेंस, सो यस, ऑल इन गुड टाइम। आगे चलते हैं सर जी। मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें मैं आपको गाने के लिए बोलूंगी, तो मेरे लिए ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। आपकी जिंदगी में एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ मार्केटिंग की दुनिया है, और दूसरी तरफ म्यूजिक, रेडियो और प्राणिक हीलिंग है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी के इन 3 रूपों के लिए कोई 3 गाने चुनने हो, तो वो कौन से होंगे, और अगर आप उन्हें थोड़ा सा हमारे लिए गुनगुना दें।
0: क्यों आपने सुबह से क्या मैं मुझ पे बॉम्ब डालने का प्लान करके बैठे हो क्या?
1: सारी हिरोशिमा नागासाकी यहीं गिरेगा,
0: कमाल
1: यही
0: यार।
1: होगा हमारे
0: अच्छा,
1: ऐसे रेडियो पे। यस
0: भलाई का जमाना ही नहीं रहा आपको।
1: देखो, अनोनिमस विशेस आ रही हैं, प्रेयर्स आ रही हैं, रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप प्लीज नितिन सर के साथ एक आज के कलाकार करें। अब मैं क्या बोलूं आपको इससे ज्यादा, तो
0: अरे ऐसे कौन से
1: आपको
0: ऐसे?
1: इतना सुनना चाहते हैं लोग।
0: अच्छा जी, हाँ मुझे नहीं
1: बिल्कुल
0: पता
1: सर,
0: था यार,
1: बिल्कुल
0: मुझे नहीं पता था रियली। अच्छा
1: बिल्कुल, बॉम्ब ड्रॉपिंग,
0: जी,
1: लव बॉम्ब ड्रॉपिंग, लव बॉम्ब, लव
0: चलो
1: बॉम्ब्स।
0: कोई नहीं, हम वो उनकी ख्वाहिश भी पूरी पूरी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी
0: अभी जैसे कि बिजनेस बोले तो ऐसा बोल सकते हैं, मेरा जूता
1: हाँ,
0: है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। ठीक है, एक तो हो गया।
1: क्या बात है, क्या बात है। जी,
0: अब आ जाते हैं दूसरा, आपने क्या बोला था रेडियो के बारे में ना?
1: दूसरा, हाँ मार्केटिंग, चलिए
0: हाँ
1: रेडियो,
0: हो गया,
1: हाँ
0: रेडियो हो
1: रेडियो
0: गया,
1: म्यूजिक
0: रेडियो
1: की
0: फिर
1: दुनिया,
0: तीसरा
1: रेडियो
0: प्राणी की
1: म्यूजिक,
0: लिंग, तीसरा हीलिंग है
1: जी
0: ना।
1: तीसरा प्राण हीलिंग।
0: चलो
1: यस
0: ठीक है, रेडियो के लिए तो मैं ये कहूंगा।

0: गीत। ठीक है,
1: क्या बात है सर, ब्यूटीफुल।
0: अब प्राणी खीविंग के लिए तो चलो गा लेते। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके

0: ठीक है।
1: वाओ वाओ सर, वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू
1: ये
0: डिया।
1: तीनों रंगों के लिए, तीन खूबसूरत गीत आपने हमारे लिए गाए. बिग लव. आगे
0: थैंक यू।
1: चलेंगे और सुनेंगे आप ही की आवाज में हमारा आज का तीसरा फरमाइशी गीत, भरी दुनिया में दिल नहीं लगता.

0: वेलकम बैक सर, वंस अगेन ब्यूटीफुल सिंगिंग।
1: थैंक यू।
0: आज का हमारा आखिरी सवाल है, अगेन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सवाल, क्योंकि फिलोसॉफिकल सवाल है ये। अगर आपको मौत को, मतलब आपने ऑफ कोर्स बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो आपने देखे उसमें बहुत क्लोजली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिंदगी को भी बहुत क्लोजली देखा और डेथ को भी बहुत क्लोजली देखा, लेकिन फिर भी आप आज भी इतने खुश मिजाज हैं, इतने यू नो इंस्पायरिंग हैं, इतने रेजिलियंट हैं कि आज भी आप खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं, आपका मोटो इज मेकिंग पीपल हैप्पी। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ एक लाइन में समेटना चाहें तो वो क्या होगा, वो क्या फलसफा है आपके जीवन का?
1: मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा इसमें, जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आवाज है तब तक मुस्कान बांटने का प्रयास है।
0: क्या बात है, क्या बात है सर।
1: इतना याद रखना, मैं व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट 18 आवर्स अवेलेबल होता हूं,
0: राइट?
1: ठीक है। और आपको जब ऐसा लगे, कोई ऐसा एक दिन आए कि मेरा कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, तो समझ जाना मैंने मेरा बॉडी को त्याग दिया है।
0: सर ये तो मत बोलिए प्लीज, ऐसे तो मत एंड करिए प्लीज।
1: नहीं, बता रहा हूँ,
0: हम रो देंगे।
1: मैं ये कह रहा हूँ, बस मैं सिर्फ बता रहा हूँ, हालांकि उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, मुझे पता है।
0: हाँ, यस प्लीज,
1: ये तो मैं
0: 30-40 इयर्स अभी। हाँ,
1: इतना जुल्म मत करिए।
0: सर नहीं, हम तो 30-40 बोलेंगे।
1: अब भगवान की दया से, अगर ऊपर सब ऊपर वाले के हाथ में है सब चीजें, अगर भगवान की दया से हमें 10 साल और मौका मिल जाए जीने का, बहुत अच्छा करेंगे, एंजॉय करेंगे। दैट्स ज्यादा लोभ करना अच्छा नहीं है।
0: अरे हम तो कर सकते हैं, आपके भी आप मत करिए, हम उसमें 10 और प्लस 10 कर देंगे, प्लस 10 मतलब टोटल 20, मिनिमम 20, मैक्सिमम 40।
1: बस आप लोगों का आशीर्वाद एंड सब लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये कहना चाहूंगा सबको, क्योंकि सब लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सो दैट यू नो, ये क्या कहते हैं ना कि हमारा जो जो उम्र है ना, लोगों की दुआएं से बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: इसे जो करो अच्छा ही करो लोगों का।
0: बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट
1: जी।
0: सो ऑन दिस नोट हम आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत खुशियां हम बांटें SN रेडियो के थ्रू, आपकी आवाज के थ्रू, आपकी मुस्कान के थ्रू, और मे दिस नेवर सीज, ये एक अनसीजिंग कारवां रहे सर। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और एक बहुत ही खूबसूरत, दिल से भरा, एक हार्टफुल इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू,
1: थैंक यू वेरी मच तनुषा जी, बिकॉज इट वॉज फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू, और आपने एकदम से ये आइडिया लेके आया, तो मैं इसके लिए कुछ तैयारी नहीं था, बोला चलो ठीक है कर लेते हैं।
0: टू डेज वी कुड डू इट। यस,
1: थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सर, थैंक यू। नितिन सर, आपसे आज बात करके ऐसा लगा कि जिंदगी कितनी बार भी हमें आजमाए, अगर हमारे अंदर उम्मीद और हौसला जिंदा हो तो हर मुश्किल के बाद भी एक नई शुरुआत मुमकिन है। आपकी कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी की असली जीत सिर्फ खुद को संभालने में नहीं, बल्कि संभाल कर दूसरों को भी खुशी देने में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत, इतने सच्चे पन्ने हम सभी के साथ आज साझा किए। दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपकी तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान, एक नई कहानी और एक नई जिंदगी के नए रंग के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और याद रखिए, जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन वही है जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान ले आए। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। उम्र, आयु असल में सिर्फ एक नंबर है। सफल लोग अपनी उम्र को कभी अपने सफलता के आड़े नहीं आने देते। वो कौन है और क्या करने की क्षमता रखता है, इसकी पहचान उनकी उम्र से कभी नहीं होती। हो सकता है कि लोग आपकी उम्र की वजह से आपको ये बताएं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बेहतर यही है कि आप उनकी कुछ ना सुने। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप किसी भी उम्र में सफलता पा सकते हैं। बस अपने दिल की बात सुने और अपनी मंजिल की तरफ विश्वास से बढ़ें। उम्र का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। लोग बहुत कम उम्र या बहुत ज्यादा उम्र में भी कामयाब होते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।

जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं दोस्तों। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो एक बार पति और पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ। पत्नी अपना घर छोड़कर मायके चल पड़ी। वो इतने गुस्से में थी कि पति को रास्ते में से ही मैसेज कर डाला, अब आप अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। पति ने रिप्लाई किया, आप हैं कौन? तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कभी

समय को बेकार ना करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए।

दोस्त कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, आज के जमाने में बिजली विभाग ही इकलौता ऐसा विभाग है जो 100% शुद्ध माल सप्लाई कर रहा है। यकीन नहीं आता तो बिजली के तार पर हाथ लगाकर देख लीजिए।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोचने दो जमाने को जो भी सोचना है, अगर तेरा दिल सच्चा है तो नाज कर खुद पर।

0: तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए, पेशा खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसा हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, विनोद खन्ना जी के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी में तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की, उसमें वो प्यार जिंदगी है, बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई।
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना
1: दोस्तों? विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए, सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? नहीं दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब की ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

0: बचपन में अंजना गायिका और आईएएस ऑफिसर बनने के ख्वाब देखा करती थी, लेकिन अंजना की जिंदगी में तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया कि 9 साल के लंबे अफेयर के बाद उन्होंने एक मुस्लिम परिवार में शादी की। दो बिल्कुल अलग अलग कल्चर्स, खान पान और माहौल के बीच उन्होंने जिस पेशेंस, सब्र और नफासत से अपने रिश्ते को निभाया, वो आज के दौर के लिए एक मिसाल है दोस्तों। तो आइए बगैर किसी ताखीर के यानी देरी के अपनी अजीज सहेली अंजना का खैर मकदम करते हैं। आइए अंजना, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत खैर मकदम है। आइए तशरीफ रखिए हमारी अल्फाज से एहसास तक की इस रूहानी महफिल में।
1: थैंक यू आरती, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्फाज से एहसास तक ने मुझे एक अच्छा मौका देने के लिए और मेरे सभी सुनने वाले लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत आदाब, नमस्कार।
0: बहुत खूब अंजना, बहुत बहुत आदाब। तो अंजना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, हम दोस्त हैं, ये कभी मत भूलना। तो आइए फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आपका ताल्लुक राधा स्वामी मत के फाउंडर जो स्वामी जी महाराज के खानदान से है, बचपन में आपके दिल में आईएएस ऑफिसर बनने का सपना था या फिर इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर बनने का सपना था या फिर अपने पिताजी की तरह एक बेहतरीन सिंगर बनने की भी तमन्ना थी, उन ख्वाबों और उस दौर की क्या यादें हैं आपके पास? और इसी के साथ मिलता जुलता ये भी आपसे सवाल है कि एयर होस्टेस के टेस्ट में आपने बताया था कि अंडरवेट होने की वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकी और फिर 1981 में एसएससी एग्जाम क्लियर करके दिल्ली सरकार में ऑफिसर बनना, इस सफर को आप तकदीर का या अपनी डेस्टिनी का कैसा मोड़ मानती हैं? हमारे दोस्तों को बताइए।
1: हाँ आदि, मैं ऐसी फैमिली, ऐसे ताल्लुक, बल्कि उनका ब्लड ही हूँ मैं ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती हूँ जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में राधा स्वामी मत को, ही वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी मत, स्वामी जी महाराज शिव दयाल सेठ उनका नाम था, मेरी मदर सेठ खानदान से बिलोंग करती हैं और मैं बहुत ही पावन मतलब खानदान से बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही मैं आई हैव बीन वेरी एम्बिशियस आती, आई वांटेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर। मैंने बहुत ज्यादा इसके लिए पूरी पूरी रात पढ़ने की कोशिश भी की, पढ़ी भी और फिर मैं, क्योंकि मैं लिटरेचर से थी, एम ए इंग्लिश, एम फिल इंग्लिश वगैरह किया था, तो मैं सोचती थी कि प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश या किसी कॉलेज की हेड बन जाऊं। जैसा कि सपने लेना तो कोई बुरी बात नहीं होती ना,
0: नहीं नहीं।
1: तो और मैं फिर ऐसा था कि मैं, मेरे पापा एक बहुत बढ़िया मतलब मोहम्मद रफी के सॉन्ग को जस्ट कॉपी कर देते थे, वो बहुत ही बेहतरीन गाते थे। अगर आप आंख बंद करके सुनो सोलफुली तो आप ये भूल जाओगे कि रफी साहब है, जबकि रफी साहब की तो कोई तुलना नहीं है, बट फैंटास्टिक उनकी सोलफुल जो आवाज होती थी ना बस। तो मुझे उनके साथ मैं गाती थी, हारमोनियम बजाती थी, काफी छोटी थी, टीनेज की ही थी, तो गाया भी करती थी, मैं सिंगर भी बनना चाहती थी, वो भी तमन्ना थी और इन सब बातों की यादें मेरे दिल में हैं। लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांटेड टू बी अ नियर होस्टेस, मुझे वर्ल्ड घूमने का बहुत शौक था जो कि शायद सभी को होता है। मैं एयर होस्टेस भी बनना चाहती थी और बड़ी फनी बात है, अब तो फनी है लेकिन उस टाइम तो सीरियस थी, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मैं बहुत अच्छे से रेडी होके, तैयार होके, पूरे साड़ी वाड़ी पहन के, क्योंकि मस्त होती है साड़ी, इसमें वहां गई इंटरव्यू देने। अब जो सब कुछ हो गया बहुत बढ़िया, उसके बाद जब उन्होंने मेरा वेट किया, जो भी थे वो इंटरव्यूअर, दे सेड आप तो अंडरवेट है, यू आर डिस्क्वालिफाइड।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं तो आई वाज जस्ट बहुत डिसअपॉइंट हुई। घर आई जो भी थे छोटे थे उस टाइम, तो बहुत मजाक बनाया मेरा और उस टाइम उन्होंने तो मजाक बनाया नेचुरली, मेरे लिए गीत

0: आप
1: तो आई पास आउट SSC इन 81। तो मैं सरकारी नौकरी से जुड़ गई। फिर मैंने आई सर्व दिल्ली गवर्नमेंट अराउंड 40 इयर्स, इमेजिन 40 साल तक सर्विस की। फिर मैं एज ए GST ऑफिसर रिटायर हुई हूँ अगस्त 20 में। बस फिर नौकरी भी नहीं बन सकी।
0: आप डेस्टिन थी ना बनने के लिए SSC करके सरकारी ऑफिसर दिल्ली गवर्नमेंट में, तो आप IAS कैसे बन जाती? सिंगर तो खैर आप बहरहाल बन ही गई, लेकिन एयर होस्टेस नहीं बन पाई। ऐसे ही होता है उस टाइम में, उस दौर में, उस उम्र में। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अंडरवेट थी, नॉर्मली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। कोई बात नहीं, अब जो डेस्टिन था होना तो वही था ना। हम कितनी मर्जी अपनी प्लान्स बना लें, लेकिन जिंदगी हमें वही ले जाती है जहाँ हमारी किस्मत लिखी होती है। बहुत खूब। तो अंजना, इस खूबसूरत शुरुआत के साथ आइए सुनते हैं आज की हमारी पहली गजल, जो तलत महमूद साहब की मखमली आवाज में गाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत है रचना, आपने जो हमें गा के भेजी है, शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम। सुनाना चाहेंगी आप हमें दो लाइन्स इसकी?
1: हाँ जरूर आती। शामे गम की कसम आज

0: बहुत पसंद है।
1: ये कव्वाली किसको नहीं पसंद होगी। बहुत खूबसूरत, आपने गाया भी बहुत अच्छे है। तो आइए फिर सुनते हैं हमारे सब दोस्तों के साथ मिलकर आपकी ही गाई हुई गाने गम की कसम।

0: वाह अंजना, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गाया तुमने, मजा आ गया।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो अंजना, अब जरा बात करते हैं तुम्हारी जिंदगी के उस मोड़ की, यहाँ मोहब्बत ने तुम्हारी दहलीज पर दस्तक दी। तो आइए की एग्जाम के दौरान मलिक साहब से आपकी पहली मुलाकात हुई और एक साल के बाद उन्होंने अपनी असली पहचान जाहिर की कि वो एक मुस्लिम है। जब उन्होंने ये सच बताया तो उस लम्हे आपका पहला रिएक्शन क्या था? और फिर 9 सालों का एक लंबा अफेयर, अलग अलग धर्म और सामाजिक बंदिशें, उस दौर में एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट बनाए रखना और शादी के मोड़ तक पहुंचना कितना बड़ा इम्तिहान था, इस पे कुछ रोशनी डालिए।
1: हाँ जरूर, मुझे आज भी वो दिन याद है, वो डेट भी याद है, 9 जनवरी 82 में शायद, इफ आई रिमेम्बर, एग्जाम था IAS प्रिलिमिनरी का, तो शायद आर के पुरम जगह भी याद है मुझे। मैं गई थी तो उस दौरान हम नेचुरली, जैसा कि आप जानती हैं, इसमें 3 इंटरवल्स में एग्जाम होते हैं। पहले इंटरवल में एक लड़का मेरी तरफ घूरे जा रहा था, थोड़ा सा ऐसे ही थे हम लोग, एज ही कितनी थी, तो मैं भी उसकी तरफ काफी मुखातिब हो ही जा रही थी, बार बार अट्रैक्ट हो रही थी। फिर खैर हम एग्जाम देने गए, ध्यान मेरा उसी में पड़ा था।
0: गई थी आपकी नजरें और दिल।
1: जब हम बाहर आए तो इंटरवल में सब लोग इकट्ठे डिस्कस करते हैं एग्जाम, तो ही सेड, हेलो आई एम मलिक, व्हाट्स योर नेम प्लीज, आई सेड अंजना। तो वो शायद मुझे मुस्लिम समझे थे और मेरे तो माइंड में हिंदू मुस्लिम कुछ था नहीं आती। ऐसी बातें होती है जो आपके जहन में होती है, आपने सोचा भी नहीं होता कि आपकी जिंदगी आपको किस मोड़ पे ले आएगी या हो जाएगा। तो खैर मैंने फिर 2-3 इंटरवल्स हुए, उन तीनों में वो मुझसे चाय पी, मतलब हम लोग सब एक साथ ग्रुप में किया। फिर आई डोंट नो व्हाट वाज इट, आई वुड से इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, जो किताबों में लिखा होता है। और वो मुझे, उन्होंने बोला मतलब कि आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपके घर तक। रानी बाग में मेरी मदर रहती थी, मेरी सिस्टर मदर तब अभी भी वहीं रहते हैं, अनकम्फर्टेबल कि मैं किसी अनजान के साथ इतनी दूर चल पा रही हूँ उठाकर। उठाकर वर्ड ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉज टोटली इग्नोरेंट अबाउट दैट पर्सन वॉज ही। फिर उन्होंने एक साल कुछ नहीं बताया मुझे, बस मलिक मलिक ही जाती थी, इसलिए मैं आज तक भी अपने हस्बैंड को माय फर्स्ट नेम नहीं बुलाती, मलिक बोलती हूँ, मेरे मुंह पर चढ़ा हुआ है मलिक।
0: अच्छा,
1: देन आफ्टर स्पैन ऑफ 1 ईयर मैदान आप जानती होंगी, मंडिकम के नाम से अवेयर ऑफ इट। तो हम लोग एक दिन बैठे थे, ही वॉज वेरी सीरियस, आईज यू नो, टोल्ड मी कि मैं तुम्हें आगे एक ऐसी बात बताऊंगा अंजना कि तुम छोड़कर चली जाओगी। आई वॉज डेट श्योर ही वॉज बी मैड, और ये ऑब्वियसली इतनी बड़ी बात नहीं, तभी तो बोले है ना, वरना क्यों ऐसे इतना दिन होकर बोला। तो फिर उसने कहा, अरे मैं मुस्लिम हूँ।
0: ओह माय गॉड,
1: आपसे जैसा कि तुम जानती ही हो, कबूत जब सर पे सवार होता है तो हमने नहीं हाउ डज इट मैटर इफ यू आर मुस्लिम।
0: बिल्कुल,
1: और दूसरा बात हम डीपली इन्वॉल्व नहीं होते ना उस टाइम, तो हम इश्क के भूत में ही जाते हैं ना, इधर कुछ भी कहते नो नो नॉट एट ऑल, आई एम इन लव विद यू। वो IAS का एग्जाम तो चला गया एक तरफ।
0: ओह माय गॉड,
1: भाई हम लोग रोज मिलने लगे, हम रोज मिलते और फिर घर आता था थे जो
0: कोई नहीं आता था ही था तब तो
1: वही तो और पता नहीं सवाल मुझे समझ में भी नहीं आता, तो मैं सोचती भी हूँ स्टोरी लगती है कि दिन गुजरते गए, दिन महीने साल सब गई। और
0: मैं वही सोच रही हूँ कि अगर ये लव एट फर्स्ट साइट था नौ साल तक तुम क्या करते रहे अंजना, मुझे ये नहीं समझ आया।
1: क्योंकि हमारा समाज इस टाइप का ना, आती मुस्लिम को एक बहुत बड़ी अच्छी देखा जाता है हिंदू और मुस्लिम की।
0: हाँ।
1: और आज के दौर में जो इतनी मॉडर्निज्म है, तो भी आप होगी कोई करना नहीं चाहता है मुस्लिम से शादी, अगर थोड़े सा तो इतना एडवांस अभी नहीं हुआ इंडिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना। तो उस दौरान आप सोचोगे 89 में मेरी मैरिज हुई थी, कहाँ हुआ उस टाइम, तो हमारी कोर्ट मैरिज उसके बाद पहले हो गई थी। तो उस टाइम तो किसी एक पे भरोसा करना भी कितना मुश्किल काम था। बट खैर जो भी था हुआ, वो सब किया मैंने, लंबा फेयर चला, सब कुछ बर्दाश्त किया।
0: बाकी बड़ा बड़ा ऐसे टेस्ट पास किया आपने, कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं है, 9 साल डैमेज। छुप छुप के मिला करते थे 9 साल।
1: इससे आसान टेस्ट तो आईएएस का था।
0: एग्जैक्टली। मैं ये पूछ रही हूँ क्या छुप छुप के मिला करते थे 9 साल तक?
1: मैं ये बता ही नहीं पाऊंगी।
0: मैं ये पूछ रही हूँ अंजना कि क्या छुप छुप के मिलते थे 9 साल तक?
1: नहीं नहीं, मैंने आपको यही बोला कि वो मेरे घर आया करते थे, छुप छुप नहीं मिलते थे कभी भी।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से, मेरे को लगता है मेरे ब्लड में ऐसा है कि मैं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मैं मर जाऊँ मगर सच जरूर बोलूँ, तो मैं छुप छुप के मैंने कभी नहीं करा।
0: वेरी नाइस।
1: और वो एक कैरेक्टर का बहुत ही, अभी भी मैं आज भी इस बात पे फख्र करती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: कि वो कैरेक्टर का, जिसको बोलते हैं ना एक इंग्लिश में वन वुमन मैन,
0: पत्नी
1: आज भी मैं कहती हूँ तो पत्नी का पता ही नहीं था पत्नी भी है कि नहीं।
0: पत्नी व्रता भी होता है ना, पत्नी व्रता नारी नहीं होती, पत्नी व्रता आदमी भी होता है।
1: मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी भी सबसे बड़े खिलाड़ी को ही अपना इम्तिहान सबसे मुश्किल वाला देती है।
0: सुपर अल्टीमेटली ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सो इवेंचुअली यू गॉट मैरिड, ठीक है ना? पर फिर भी अंजना 9 साल तक एक दूसरे का हाथ थामे रखना और तमाम बंदिशों के बावजूद रिश्ते को मंजिल तक पहुंचाना, ये सच्ची मोहब्बत की ताकत है अंजना, ये शो करता है इस बात को। तो दोस्तों
1: आज भी मैं किसी को
0: बताऊं, तो दोस्तों इस एहसास को और गहरा करने के लिए आइए सुनते हैं अंजना की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल। अंजना ने कौन सी भेजी है? ये है गजल, मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम। हाँ, आशिकी में यही सब कुछ गाता है कोई। तो आइए दोस्तों सुनते हैं अंजना की आवाज में ये खूबसूरत सा कलाम।

0: वाह भाई वाह अंजना, बहुत सुंदर गाई आपने ये गजल। वाकई ही वही जमाना याद कर रही होंगी जब आप गा रही होंगी। लग रहा है, पता लग रहा है आपकी आवाज से। तो आइए अंजना, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये बताइए कि आप एक पूरी तरह वेजिटेरियन और इतने रिलीजियस से माहौल से निकलकर एक आप अलग कल्चर के एक बड़े ज्वाइंट फैमिली में जाना कोई आसान बात नहीं होती। तो शादी के बाद आप एक बड़े ज्वाइंट फैमिली एक मुस्लिम परिवार में आप जब गई, तो शुरुआती दिनों के दौरान उस नए माहौल में खाना पीना और अलग ही कल्चर में ढलने के लिए एडजस्टिंग के दौरान तुम्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और फिर इस पूरे तालमेल में तुम्हारे ससुराल वालों का रवैया कैसा था? और तुमने बताया कि तुम्हारी अपनी बहन का साथ तुम्हारे लिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बना उस वक्त?
1: हाँ जी, शादी तो इंसान कर लेता है, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो थोड़ा सा एक अलग सा बात होती है। जब मैं शादी के बाद गई, मेरे घर में मेरी मदर थी, जो प्याज का एक छिलका भी हमारे घर में आता था ना, थी मेरी मम्मी उस प्लेट को अलग कर देती थी। प्याज ही ये नॉन वेज की तरह मानती थी, प्याज तक। और फिर मैं जब शादी होके गई, और यू विल बी सरप्राइज, मैं ही खुद आई वॉज स्टंड। उन्होंने घर में इस टाइप का कुछ नॉन वेज बनाया था, और नेचुरल बात है, नई बहू है तो उसे नीचे भी बुलाया जाएगा लंच के लिए। कि भाई, अब वो मेरी शक्ल देख के वो लोग हंस रहे थे कि इसको सांप सूंघ जैसे। आई कांट इमेजिन, कि मुझे समझ में ही आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। खैर, वो बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी, देवर थ्री सिस्टर्स, उनकी अनमैरिड सिस्टर्स थी, सब अच्छे से पढ़े लिखे लोग थे वो। और ये सब तो खाने में है, कोई बात नहीं, इससे हम कुछ कर नहीं सकते, सबका एक अलग अलग होता है कल्चर। तो खैर, राधा स्वामी के होते हुए, मतलब मैंने कहा आपने मुझे भेजा है यहाँ पर, तो आप ही करेंगे जो भी। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट बिलीवर ऑफ गॉड, और मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे बहुत, मतलब शुरुआती दिनों में काफी, मतलब खान पान में अलग टाइप की, वो लोग मेरे लिए वेडिंग बना देते थे स्टार्ट में। एडजस्ट मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे किया था, क्योंकि चुनौती चुनौती तो खुद, इश्क तो खुद किया था नेचुरली,
0: बिल्कुल
1: और शादी भी खुद की थी, तो एडजस्ट करना भी खुद पर था। तो इस पूरे तालमेल को बैठाने में मुझे इसमें भी थोड़ी सी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे फादर हैं जो, और वो सब काफी पढ़ी लिखी फैमिली से हैं और थे, तो वो लोग कभी भी मतलब
0: सपोर्ट
1: जबरदस्ती
0: करते थे
1: करते थे।
0: आपको।
1: हाँ, सपोर्ट करते थे कि नहीं, तुम झूठ बोलकर भी नहीं चलाना।
0: नहीं
1: और फिर मैं
0: नहीं
1: जब तंग आ जाती थी, तो मेरी सिस्टर, मैं अपनी बहन को हर बार बताकर वो कर लेती, क्योंकि मेरी बहन काफी शुरू से ही सचमुच आज के दिन तक मेरे
0: मॉरल सपोर्ट
1: मतलब
0: रही है
1: सहायता था, दोनों को
0: आपकी।
1: एक दूसरे का है। हम खुद करते हैं, मगर हम बिल्कुल एक रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई ये कोई
1: बिल्कुल
0: आसान बात नहीं है। हालांकि 9 साल तक आप दोनों मिलते रहे, ये बात बड़ी लाजमी सी थी कि आप दोनों को पता था कि आप कहाँ जाने वाली हैं, लेकिन फिर भी जब प्रैक्टिकली जब आप चले जाते हो और देखते हो कि दस्तरखान पूरा सजा हुआ है नॉन वेज चीजों के साथ, तो जिसने ना कभी प्याज भी ना खाया हो वो तो बेहोशी हो जाए देख के। आप तो बड़ी दम वाली थी जो नहीं हुई। हाँ ये बात तो है। पर वो ये भी तो है ना अंजना कि आप दोनों की नीयत साफ थी, फिर आपको अपनों का साथ मिला, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान भी हो गई ना। तुमने भी सब्र से काम लिया, जिसने सब्र से काम लिया वो भी तो एक, वो भी काबिले तारीफ है। बहुत खूब बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, अब अंजना ने ये हमें कौन सी गजल गा के भेजी है? ये है, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा ही सही दिल में प्यार है कि नहीं। बहुत है जी बहुत है, बारे न्यारे हैं, प्यार ही प्यार। तो आइए दोस्तों सुनते हैं अंजना की मीठी आवाज में ये पुरसुकून गजल।

0: वाह जी वाह अंजना, आपके तो इस गजल ने माहौल में एक अलग ही मिठास ही घोल दी है। बहुत खूबसूरत गाया,
1: शुक्रिया,
0: बहुत खूबसूरत गाया। अंजना, जैसे दो अलग सोच होती हैं और दो अलग मिजाज के इंसानों का एक साथ एक छत के नीचे रहना और फिर वक्त के साथ ढलना एक अलग ही एक किस्म का तजुर्बा होता है। आप ये बताइए कि आपके पति का मिजाज थोड़ा कंजर्वेटिव सा, मतलब रूढ़िवादी से हैं और डोमिनेटिंग भी हैं, और वो तीन दशकों से बीजेपी पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हैं, ठीक है, तो अपनी लिबरल सोच के साथ उनके इस, यानी इस कंजर्वेटिव से मिजाज से तालमेल बिठाना कितना चैलेंजिंग रहा होगा? और फिर जैसे जैसे वक्त बीता, अपने बच्चों की परवरिश की, बेटे की शादी हो गई, तो तब तुमने उनके स्वभाव में किस तरह का एक पॉजिटिव चेंज महसूस किया ओवर द इयर्स, जो इतने सालों में बंदा एक ही मिजाज का रहा हो, बच्चे की शादी के बाद तुमको लगा कि उसमें बहुत चेंज आ गया है, तो ये ट्रांजिशन और ये सब इसके बारे में बताइए।
1: हाँ जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम बाहर रहते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल के होते हैं। एंड ही वाज अ डिप साइट, ही इज अ डिप साइट, और डीपीएस डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में वहीं से पढ़ी हुई है नर्सरी से 12th तक, और ये मेरे हस्बैंड भी डीपीएस में थे। और घर में रहने से ही पता चलता, जब शादी हो गई तो काफी कंजर्वेटिव टाइप के थे और मैं एक बहुत ही लिबरल सोच वाली मैं तो सबको डोमिनेट करती थी और वो मुझे डोमिनेट करते थे।
0: ओह माय गॉड।
1: तो खैर, नेचुरली दिन बीतते गए और फिर उनका बीजेपी में सिलेक्शन हुआ। वो बहुत बीजेपी से जुड़े हुए हैं, काफी 30 साल से भी ज्यादा हो गए अब तो, आज तक भी हैं वो बीजेपी में, अभी भी वो बीजेपी की मीटिंग में ही गए होंगे।
0: अच्छा।
1: वो बीजेपी में ही होते हैं। तो वो काफी कंजर्वेटिव थे, उनको मुझे अकेले भेजना कहीं पसंद नहीं था, बस ऑफिस के अलावा।
0: अच्छा।
1: बल्कि मेरे फादर इन लॉ नहीं थे इतने ज्यादा कंजर्वेटिव, बट माय हस्बैंड, इससे रिलीजन का आपकी कोई ताल्लुक नहीं होता है, एक इंसान की पर्सनल सोच होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम थे इसलिए ऐसे थे, कोई भी हो सकता है।
1: नॉट एट ऑल। तो वो पता नहीं मुझे लेके वो बहुत पजेसिव थे, बहुत
0: बिल्कुल,
1: मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं लेके नहीं जा रहे। 5 साल में मुझे तब भी, आज से 40 साल पहले आप कुछ सोच सकती हैं, लेकर जाते थे सब जगह, वो तो उनको लगता था कि मैं हर जगह उनके साथ जाऊं, उनके साथ उनसे पूछताछ करूं, ये सब। या फिर वो पॉलिटिक्स में बिजी भी रहते थे, फिर मेरे बच्चे, मेरी पहली, खैर फिर मेरा बेटा, ये हमारे चलता रहा, बच्चों की तालीम, ये वो, आई वॉज क्वाइट इन्वॉल्व। साइमल्टेनियसली मेरी जॉब, घर, ये सब था। तो बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा बच्चों ने बहुत, मैंने बहुत अच्छी बच्चों की परवरिश की, क्योंकि आज तक भी

0: अपनी ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया। चलिए
1: लिबरल हो गए ना,
0: लिबरल हो गए। मैंने सोचा इतनी तो कटती
1: बहू को लेकर और फिर तुम्हारी फैमिली का तो मिसाल ये भी है कि तुम्हारी बहू भी हिंदू फैमिली के लेकर आए हो तुम्हारा बेटा।
0: मेरी मुझसे काफी मुतासिर होकर उसके फादर ने बोला कि मैं उनकी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी थी। तो मैंने 3 साल तक वो भी नहीं करते थे शादी, उनसे मुतासिर होते उन्होंने मतलब कहा कि नहीं बहुत अच्छी नेचुरली जो वही सब जो है पोस्ट मैरिज देन शादी उनकी पब्लिकली हुई थी शादी इंडिया अभी सेंटर में, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है आप जानती होंगी काफी इंटरनेशनल लेवल का, तो ऑल मिनिस्टर्स केम नो डाउट।
1: अच्छा अच्छा
0: सारे मिनिस्टर्स आए थे, यूनियन मिनिस्टर।
1: क्या बात है,
0: बीजेपी की फैमिली।
1: इतना फर्क तो खैर टाइम के बाद आया ही ना कि आप लोगों की उतनी पंप एंड शो से नहीं हुई शादी, लेकिन आपने अपने बेटे की। तो जब तुम्हारी शादी हुई थी अंजना, मैं पूछना भूल गई, तो तुमने भी ऐसे बोला था कबूल है कबूल है कबूल है?
0: बिल्कुल बोला था, बल्कि काजी ने ये बोला था कि आपने तो बहुत प्यार से कबूल बोला है, कोई मुस्लिम लड़की इतनी प्यार से नहीं होती। बताइए
1: कबूल है तो प्यार से ही कोई बोलेगा, ऐसे थोड़ा ना बोलेगा कबूल है कबूल है।
0: कुछ ज्यादा ही नजाकत से बोला होगा कभी, तो काजी ने भी कहा। लेकिन सबके बीच हुई थी मेरी शादी, अलग अलग बैठा के नहीं हुई थी जैसे दिखाते हैं पिक्चर में ना,
1: वो पर्दे में दिखाते हैं ना, ऐसे नहीं हुई थी।
0: हाँ अब तो ऐसे लॉकडाउन हो गया
1: जमाना। ठीक है,
0: तो ये है।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आऊंगी मैं कभी तुम्हारे से मिलने दिल्ली में। तो आइए दोस्तों, फिर इसी नोट पर अंजना की गाई हुई ये हम चौथी गजल सुनते हैं। कौन सी है ये गजल आपने गा के भेजी? दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, यही है ना अंजना? कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं, गजल तो गजल है, इसका आपने जाती जिंदगी से क्या लेना देना, हमने उसी तरीके से ही उसको लेना है। आइए दोस्तों सुनते हैं अंजना की गाई हुई ये खूबसूरत सी गजल।

0: बहुत खूबसूरत अंजना, आपने तो पंकज उदास की ही गजल बहुत तसल्ली से गा दी, बहुत खूब मजा आ गया। बहुत अच्छा, अब आइए प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और ये बताइए कि आज जब तुम्हारे दोनों बच्चे लाइफ में सेटल्ड हैं, बेटा आपका लॉयर है, आपकी बेटी जामिया हमदर्द में केमिस्ट्री की लेक्चरार हैं, दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच रहकर बच्चों को इतने बेहतरीन संस्कार देना तुम्हारे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट समझती हैं आप, और फिर ये भी कि अपनी इस जीवन यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि मोहब्बत करना शायद आसान हो, लेकिन उसे ताउम्र शिद्दत से निभाना ही असली दरअसल ख्वाब है।
1: बिल्कुल आती, सबसे बड़ी कहते ना, सबसे बड़ी गुरु एक माँ होती है बच्चों की।
0: बिल्कुल,
1: द फर्स्ट टीचर इज टीचर। तो मेरा पूरा जितना भी मेरा फोकस होता था कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सब कुछ छोड़ के बच्चों को ही पढ़ाऊंगी, सब कुछ करूंगी, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी बच्चों की पढ़ाई। तो बेटा एक लॉयर है और बेटी केमिस्ट्री की लेक्चरर है, एंड शी इज द हेड ऑफ जामिया अंडर की राबिया इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पे इसका हेड है वो भी, मतलब केमिस्ट्री की हेड है।
0: अच्छा,
1: और तो मेरी डॉटर इन लॉ भी लॉयर ही है।
0: अच्छा,
1: और सन इन लॉ भी, हाँ सन इन लॉ भी एजुकेशनिस्ट है दोनों।
0: तो
1: बहुत ही दोनों कामयाब है अपनी जिंदगी में। और हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों दो अलग अलग कल्चर के साथ तालमेल बिठाना, मुझे तो लगता है अंजना मलिक तूने किया है, कोई नहीं कर सकता।
0: कॉलर ऊपर करके बोलो हैट्स ऑफ टू मी,
1: क्योंकि अलग संस्कृतियों के तालमेल बिठाना एक बहुत ही जबरदस्त चैलेंज होता है, क्योंकि अब तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल चेंज हो गए हैं, कुछ नहीं कहते हमारी डॉटर इन लॉ को, लेकिन वो थोड़े से कंजर्वेटिव होने की वजह से कुछ बातें चाहते थे कि मैं उनके हिसाब से करूं, तो मैं वो काम नहीं करती थी। यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, नेचुरली, और आपके यहाँ के लिए दिया, तो मैंने वो किया। और आज मैं जब देखती हूँ मुड़कर, तो मुझे लगता है कि मोहब्बत करना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी है,
0: बहुत
1: मुझे प्यार दिया किसी से, ये कह दिया जाता है, बहुत ईजी।
0: बिल्कुल,
1: सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा जिंदगी जो लेते हैं उसको निभाना होता है, और जो मैं आज तक बखूबी निभा रही आप देख रही हैं। और कुछ ही टाइम पहले आपने देखना शुरू किया था।
0: बिल्कुल, मैंने भी जब पहले जाना तुम्हारी कल्चरल डाइवर्सिटी तुम्हारे फैमिली की, आई वाज आल्सो शॉक्ड, लाइक मैं तो समझ के आगे बढ़ी थी अंजना मलिक यानी पंजाबन है, तो बाद में पता लगा कि मलिक मुस्लिम लोगों में भी होता है, तो
1: हाँ सलीम मलिक थे ना।
0: हाँ, अच्छा अच्छा, रिश्तेदार है क्या उसके, सलीम मलिक के भी रिश्तेदार है क्या?
1: नहीं, सलीम मलिक आपको एग्जाम्पल दे, आई वॉज वेरी मच सरप्राइज कि मलिक और मुस्लिम कैसे हो सकते हैं, मुझे भी नहीं पता।
0: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो अन्नू मलिक सरदार,
1: मैंने कभी मुस्लिम से कोई ताल्लुक की नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है,
1: ताल्लुक एक ही बार हो गया ना सारा।
0: आपकी आपकी बहू का क्या नाम है? वो
1: शिवानी।
0: शिवानी, वेरी नाइस। और आपके जो दामाद हैं उनका क्या नाम है? वो मुस्लिम है गालिबन,
1: वो मुस्लिम है, लेकिन उसका तो 10 साल अफेयर चला था, मेरे हस्बैंड उसे पसंद नहीं करते थे, आई डोंट नो व्हाई।
0: अच्छा, आपके आपकी बेटी ने आपसे भी 1 साल आगे लंबा तीर मारा, 10 साल अफेयर किया?
1: बेटी ने, बट उसका इंटरेलिजियस नहीं था,
0: उसके
1: पापा लाइक नहीं करते थे, तो बचपन से साथ पड़े हमेशा।
0: अच्छा अच्छा,
1: और वो एक बेहतरीन सुलझा हुआ इंसान है, आज उसका बर्थडे।
0: अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू मराहिम ना,
1: मराहिम, हिज नेम इज आल्सो वेरी गुड।
0: चलो मराहम, आज हमने ऑन एयर ऐलान कर दिया और आपको जन्मदिन की मुबारक।
1: बहुत अच्छा इंसान
0: बहुत, आई नो तुम बहुत तारीफ करती हो। तो मराहिम, हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन हमारे सब दोस्तों की तरफ से। जीते रहो, खुश रहो, खूब कामयाब हो और खूब खूब आराम से रहो दोनों। आपकी बेटी का क्या नाम है?
1: उरुबा, UUBA,
0: उरुबा। ओके, उरुबा
1: इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिलविड।
0: ओ माय माय, वाओ, क्या बात है यार।
1: ये लुक्स लाइक अ डार्लिंग। हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है।
0: नहीं नहीं, बहुत बेटी किसकी यार, फिर अच्छी तो होगी। तो रूबा और मराहिम, आप खूब अच्छे से पार्टी करो और एंजॉय करो। तो चलो इस नोट पर फिर आपकी आखिरी गाई हुई ये प्रोग्राम की आखिरी गजल सुनते हैं जो कि आपने हमें गा के भेजी है। ये कौन सी गजल है? ये गजल है रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आइए दोस्तों, अंजना की गाई हुई प्रोग्राम की आखिरी गजल सुनते हैं।

यदि करवानो प्रयास करी तो ज्यादा सफलता मळ है। जेवी रीते गाय आपन सेवा करे से अने तीहू ने सीहळा मां राखी अने तीहू ने असल खावानो पाणी खवाड़ी अने तीहू नु सुख सुविधानो ध्यान राखी तेर आपने ज्यादा दूध आले ने ज्यादा उत्पादन मळे। जेर गाय प्रसन्न रहे तेर आपन गोपाल भी प्रसन्न रह सके। इना हर विपरीत अगर गाय ने धूप में राखी जाए तो समय पर अनुकूल भोजन नहीं आले तो गाय भी पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आले। अने गाय जे खुश रहे तो ते वध दूध आले। एवी रीते आपन भी सफेद मूसली की खेती करो तो जेत्री कहवानो मतलब मारो यो था किसान भाईयों की धोली मूसली की बात चलतेली। अने धोली मूसली एवी रीते गाय जो तीनी जापता करवी पड़े। ये एक फसल से अने तीनी जेत्री जापता करो तेत्रो आपन फायदो मळे। तो किसान साथियों फसल तिहुना अनुकूल वातावरण में करी जाई सके से तो किसान ने भी सुखी रह सके। अने प्रतिकूल वातावरण में किसान भाई तीनी ज्यादा उत्पादन ली सके। सफेद मूसली की खेती हारू प्राकृतिक परिस्थितियों अनुकूल बनावी पड़े से। छिपरी छाया तो किसान साथियों प्राकृतिक वातावरण में डूंगर में जहाँ भी धोली मूसली उगती होय अने ता झाड़कानी प्राकृतिक सीहड़ो होय तो छिपरी छाया नो तात्पर्य कोई नेट या जाली लगाड़वाथी नहीं मळे। प्राकृतिक जो छिपरी छाया में या गुण रहे से तीन थी तीनी नीचे उगवा वाला पौधा ने जेर धूप मळे अने धूप मळती रहे एना टाइम पर ये लगाड़ी जाइए धूप भी मळती रहे एवा प्रकार थी परिस्थिति में सफेद मूसली ना शेरणी नी फसलियों हारू अनुकूल रहेशे। छित्री छाया थी भूमि नी उर्वरा शक्ति क्षीण नी थाय से अने लगातार जरूरत ना अनुसार नमी बनेली रहेशे। भूमि नी आवृत्ता अने नमी बेहुन धोली मूसली नी खेती हारू से अने धोली मूसली नी खेती सफलतापूर्वक करवा हारू छित्री छाया किसानों हारू लाभदायक रहेशे। या छाया प्राकृतिक रूप थी रेवी जोई इना हारू सबथु उत्तम पेड़ जेट्रोपा यानी कि रतन दोधियो। तो किसान साथियों इना मा जो अतिरिक्त बढ़े से अने इनी मात्रा एक वरे मा ही धोली मूसली ने जरूरत ना अनुसार सीहड़ो भी मळतो रहे। तो किसान साथियों रतन दोधिया ने कई ना भी जानवर नी खाए अने खासकर बीमारी भी इनमा नहीं लागे से अने ज्यादातर जरूरत भी नहीं पड़े से अने आपने आपने पायड़ाने द्वारा खेतर में खातर भी बने से खेतर में आवाली बीमारियों ने रोके से अने खेतर में जल संरक्षण मिट्टी संरक्षण नो काम घणु ही बेखूबी थी थाय से। तो किसान साथियों टाड अने गरम हवाओं थी फसलों ने वसाड़े से एना प्रकार थी यो एक एवो झाड़ से जो सफेद मूसली की खेती में ज्यादातर लाभदायक रहेशे। तो किसान साथियों कहवानो मतलब ये था कि रतन दोधियानी हाटे धोली मूसली लागवाथी धोली मूसली नो उत्पादन बढ़ी जाशे। लगातार नमी तो किसान साथियों धोली मूसली एक कंद वाली फसल से अने इहोनी असल बढ़त हारू अने भूमि में लगातार नमी बढ़ेली रेवी जोई अने आवश्यक नमी ना तात्पर्य ज्यादा या घड़ी घड़ी सिंचाई थी नी थाय से तीनी हारू तीना ने झाड़कानो सीहड़ो रहेवो जोई अने वर्षाना जल ने ऊपर थी पड़वा थी तीहुनी जल ने भूमि ने अंदर ज्यादा समय तक धारण करी सके अने इना आवश्यकताना अनुसार धोली मूसली नी फसल ने लगातार आलती रहे। तो किसान साथियों इना ने प्राकृतिक नमी कहसे या तेर संभव थाई सके जेर सोमाहाना पानी थी प्राप्त थावाली नमी ने सुरक्षित राखी सके। तो किसान साथियों रतन धोधियानी हाथे धोली मूसली लगाड़वाथी घणो फायदो से अने पायड़ाथी खातर मळी जाय अने अंदर फोही बनाईने राखे से अने सीहड़ो भी आले से। तो हुदी धूप अने तेज हवाथी अगर आपनुं खेतर ने हुदी धूप अने तेज हवाथी वसाड़ली तो आपणा खेतरनी नमी ज्यादा समय तक बनेली रहेशे अने आपणी फसलने लगातार नमी मळती रहेशे अने एवा प्रकारथी ज्यादा सिंचाई आप करी सकी। आपी मूसली नी खेती खेतर मा नमी ने वसाड़ी ने सफल की नमी बढ़ावा हरू घड़ी घड़ी सिंचाई थी फसल ने नुकसान पुगे से।
जेतरी ज्यादा सिंचाई करो अने जल में मळेला खनिज पदार्थ जमीन में मळता रहे। जमीन कड़क रहेशे अने इनथी इनी साथे भूमिना उपजाऊ तत्व से त्या ज्यादा सिंचाई ने कारण जमीन में एतरा नीचा चले जाए कि आपड़ी खास फसल नी जेड़ियों ने तीहुने द्वारा मळी जाय छे, मळवानुं संभव असंभव थई जाय छे। अने ज्यादा सिंचाई जा आपड़ा खेतर में अवांछित लवणों में बढ़ावे छे अने नमी बढ़ावा हारू घड़ी घड़ी सिंचाई करवानुं घणुं ही हानिकारक रहेशे અને ફસલની બળવાર હારું પ્રાકૃતિક નમીની સી બણાઈ રાખવાનું ઘણું ઉપયોગ રહેશે અને ત્યાં ધો ફાયદેમંદ રહેશે અને નમી વરસાદના પાણીને વસાડીને પેડના શીંગડાથી યું સંભવ થઈ શકે છે। ધોળી મુસલીની સફળતાપૂર્વક ખેતી હારું પ્રાકૃતિક રૂપથી નમી બણાઈ રાખવાનું જ્યાદાતર ઘણું જરૂરી છે કે ઉર્વરકતા। तो किसान साथियों धोली मूसली कंदी फसल से अने इने घना ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नियमित मळेली रहेवी जोईए। अप्राकृतिक रूप थी रासायनिक खातर गोबर फाड़ेलू खातर एवं नाखवू जोईए। किसानों हारू घणु ही महंगो पड़े से अने खातरनी कमी थी किसान ने भरपूर पैदावार नहीं मळवाय छे। खेतर ने ज्यादातर उर्वरक बनावा हारू आधा पैसा खर्च करवा पड़े से अने फिजूल खर्ची थाय से। એવા તરીકા અપનાવવા જોઈએ તેનથી આપણી ભૂમિ ખુદ હી હર સમય ઉર્વરકતા બળેલી રહેશે। ચાહે આપણું જેતરી ભી લેતા રહી અને ભૂમિનો સ્વાસ્થ્ય અને પ્રાકૃતિક ખાતરોથી બળે શકાય બળાઈ શકી અને તેના હાગળામાં યું શ્રેષ્ઠ છે। પેડ પોધાના પાયડાનું ખાતર અને ધોળી મુસળીની ખેતીમાં છીતરી છાયા બનાવવા અને નમી વસાણ આપવું રતનધોધાના ઝાડકાનો વૃક્ષારોપણ દૂરી પર કરી શકીએ તે આપું જ્યાદા ખાતર ઝાડકાથી મળી જાય છે અને રતનધોધિયો ઓવરેમાં

गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को।

दोस्तों लीजिए, फिर से हाजिर हैं हम एक नए टैलेंट, एक नई प्रतिभा, एक नए सिंगर और एक नए म्यूजिशियन के साथ। आज जो हमारे प्रोग्राम में, आज के कलाकार प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, उनका नाम है डॉक्टर मीना। बाकी की बातचीत हम डॉक्टर मीना से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके गीत सुनेंगे, बहुत बहुत आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को डॉक्टर मीना के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है. यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर प्रोग्राम.
1: थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ. मैं आपको इस रेडियो प्रोग्राम को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, और रेडियो झाबुआ के श्रोताओं को मैं सबसे पहला नमस्कार करना चाहूंगी. तो शुरू करते हैं.
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. हमने आपका गीत सुन भी लिया, लोगों को, हमारे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को पता भी चल गया कि किस तरह की इवनिंग, किस तरह की म्यूजिकल इवनिंग, किस तरह की आज शाम हमें संगीत सुनने को मिलने वाला है. शुरू करते हैं इस छोटे से सवाल से कि मैम आप कहाँ रहती हैं, उस जगह के बारे में हमें कुछ इंटरेस्टिंग बात बताइए ना.
1: मैं पुणे की रहने वाली हूँ, और जैसे हम मराठी में बोलते हैं कि पुणे तिथे काय उणे, मतलब पुणे में किसी चीज की कोई कमी नहीं है. इट इज अ कल्चरल कैपिटल, वहाँ एजुकेशनल हब है, संतों की बस्ती है, शिवाजी राजे और पेशवे का इतिहास है. तो वहाँ पे हम मतलब शनिवार वाड़ा का नाम आपने सुना ही होगा अगर आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी.
0: जी जी.
1: और ओशो आश्रम है, फिर वहाँ पे बाल गंधर्व रंग मंदिर है जहाँ पे म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं. और खाने पीने के तो पूछो ही मत, मतलब चितले की बाकरवड़ी से लेकर वैशाली की सेवपुरी, गार्डन का वड़ा पाव, गुडलक कैफे, बेडेकर मिसल पाव, यू नेम इट एंड इट्स देयर. कोरेगांव पार्क में नाइट लाइफ तो बहुत बढ़िया. और पुनेरी पाटे के बारे में तो आपने शायद सुना ही होगा, दुनिया भर में प्रसिद्ध होते हैं.
0: अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग,
1: बहुत अच्छा.
0: मुझे जहां पर आपने सारे के सारे फूड जॉइंट्स के बारे में बताया और डिशेस के बारे में बताया, बस मुझे याद आ गया वहां का स्पेसिफिकली चितले बंधु की जो बाखरवाड़ी है, दैट इज माय फेवरेट. और ऑफ कोर्स दगड़ू सेठ के दर्शन करने के बाद हम लोग हमेशा चितले बंधु की वो बाखरवाड़ी जरूर जरूर लेने जाते थे. अमेजिंग दोस्तों, आपने सुना हाउ ब्यूटिफुली मीना मैम डिस्क्राइब्ड द प्लेस वेयर शी लिव्ड, शी लिव्स, फैंटास्टिक. तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत मैम की ही आवाज में.

0: बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गीत मैम। आगे बढ़ते हुए छोटा सा मासूम सा सवाल, बचपन में चलते हैं। अब बचपन मासूमियत से भरा हुआ होता है, आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: एक्चुअली कैसा होता है ना कि तभी जब लड़की होती है तो बोले डॉक्टर बनेगी, लड़का हुआ तो बोले इंजीनियर बनेगा, उससे ना तो बचपन से वो ही अपने सर पे मारा जाता है कि डॉक्टर ही बनेगी, मेरी बेटी तो डॉक्टर ही बने। तो क्या बनना चाहते हैं ये सोचने का शायद टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन पहले से मुझे गाने का शौक था और मैं बाथरूम सिंगर थी और चाहती थी कि कभी तो दुनिया के सामने अपनी आवाज पेश कर सकूं, और आज मुझे वो मौका मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूं इसमें।
0: वाओ वाओ, थैंक यू सो मच मैम, ये सौभाग्य हमारा है। हमें ऊपर वाले ने पता नहीं कहां से ये मैसेज मिला कि आप सब लोगों की हमें सेवा करनी है, आप सब लोगों को हमें सामने लाना है, तो बस ये काम हो रहा है और आई एम रियली हैप्पी। एंड हमारी पूरी टीम, मैं और नितिन बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब हम लोग आपकी सिंगिंग सुनते हैं, और आभार और शुक्रिया आप लोगों का है जो आप हमें अपनी गीत और संगीत से नवाज रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत मीना मैम का।

0: फैंटास्टिक, बहुत ही प्यारी गायकी मैम.
1: थैंक यू.
0: अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में बताइए.
1: तभी तो ज्यादा गाना सुनना भी घर में अलाउड इतना करते नहीं थे, बोलते कि नहीं डॉक्टर बनना है तो ज्यादा गाना इसमें ये करना नहीं. फिर भी मैं अमीन सयानी जी का प्रोग्राम सुनती थी चादर में चुपके से ट्रांजिस्टर लगा के रात में.
0: वाह.
1: और मेरे साथ मेरी बहन संगीता, वो भी चुपके से हम दोनों चादर में गाने सुनते करते. और वो बहुत मीठा गाती थी, बहुत ही प्यारा गाती थी. अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका पसंदीदा का गाना ओ मेरे सपनों के सौदागर आज भी मेरे कानों में गूंजता है. वो मेरी सबसे बड़ी प्यारी याद है बचपन की. और ये गाना अगर चाहे तो मैं आप लोगों को सुना, अगर मुझे मौका मिले तो जरूर सुनाऊंगी.
0: एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. बहुत ही प्यारी सी याद और बहुत रेस्पेक्टफुल याद मैं कहूंगा. और बिल्कुल मैम, आपका हुक्म सर आंखों पर. ये प्यारा सा गीत आप ही की आवाज में, आप ही की इस बहुत ही प्यारी दोस्त को डेडिकेटेड है. चलिए दोस्तों, सुनते हैं यही प्यारा सा गीत.

0: मैम, आगे बढ़ते हुए आपसे बहुत ही मजेदार सा सवाल पूछना चाहूंगा। चलिए थोड़ा सा मजे करते हैं। आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों? क्योंकि आप तो ऐसी जगह रहते हो जहां पर खाने के तमाम तमाम डिशेस स्टॉल्स अवेलेबल है। सो व्हाट प्रिसाइसली डू यू लाइक इन ईटिंग?
1: एक्चुअली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ, कोलाबा में. तो
0: ओके।
1: कोलाबा में समंदर के बीच में मेरा घर था. तीनों बाजू से समंदर और एक रास्ता, और सामने मछली पकड़ते थे लोग. टोकरी घर आ जाती थी और फ्रेश फिश मुझे घर पे मिलता
0: क्या
1: था, और
0: बात
1: वो खा के ही मैं बड़ी हुई. तो वो फिश मेरी बचपन से आदत पड़ गया, वो मेरा सबसे पसंदीदा खाना
0: है। अरे वाह, अमेजिंग अमेजिंग, टोटली ऑर्गेनिक एंड टोटली फ्रेश, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपने सुना, आई सिंसियरली होप एंड प्रे टू गॉड कि आप सब लोगों को भी इसी तरह की ऑर्गेनिक एंड फ्रेश चीजें खाने को मिलें। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। मैम दिस इज इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये पूछना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे जो भी कलाकार हमारे सामने हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं उनकी पर्सनालिटी को समझने में हमें बहुत मदद मिलती है। ऐसा कौन सा गीत है, कौन सा गाना है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता हो, बयान करता हो, आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो?
1: बाप रे, ये सबसे मुश्किल सवाल लगता है मुझे। एक तो खुद की तारीफ कैसे करूं बोलो। तो
0: डोंट वरी मैम, मैं तो ऊपर वाले ने सबसे अच्छा क्रिएशन मुझे बनाया है। आई एम द बेस्ट क्रिएशन। ऑफ कोर्स आप जब इस बात को कहेंगी तो आप भी ऐसे ही कहेंगी दैट आई एम द बेस्ट क्रिएशन। सो एवरीवन, हर एक सिंगल इंसान इस दुनिया में जो ईश्वर ने बनाया है वो बेस्ट है, तो इसलिए अपनी तारीफ करने में जरा सा भी मत हिचकिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी तारीफ खुल के कीजिए।
1: तो मैं दो गानों से मेरी खुद के बारे में बताना चाहूंगी। एक तो मैं कहूंगी, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए हाय, ये एक मुझे डिस्क्राइब करेगा। और दूसरा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
0: क्या बात है,
1: हर फिक्र को धुए में उड़ा। मतलब मैं सिगरेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहते हैं कि फिक्र को मतलब नहीं करते हुए आप चलते चलिए, बस यही। मैं ऐसे कुछ इतना टेंशन लेती नहीं हूँ, बस बिंदास सब कर चलती हूँ, यही मेरा पर्सनालिटी है।
0: नाइस, वेरी नाइस। हमारे सभी दोस्तों को, हमारे सुनने वालों को अब ये पता चल रहा होगा कि मीना मैम किस तरह की इंसान हैं, किस तरह की शख्सियत है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनसे हमें दोस्ती करके क्या क्या मिल सकता है, कितना आनंद मिल सकता है, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी इंटेलिजेंशिया, बहुत बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं मीना मैम की आवाज़ में।

0: बहुत ही बढ़िया मैम। अगला सवाल भी थोड़ा सेंसिटिव है, बहुत मजेदार है, और वो भी आपको अपने बारे में जानने में मदद करेगा। वो ये कि अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त भला क्यों है।
1: एक्चुअली दोस्त तो बहुत है, मतलब उनके किस किस का नाम लूं ऐसे हो जाता है। मैं बहुत सारे म्यूजिकल ग्रुप्स है, जैसे क्रिएटिव म्यूजिकल है, सितारों की दुनिया है, म्यूजिक रॉपर, सब मेरे अच्छे दोस्त है। वी आर द बेस्ट ग्रुप है, पावर वॉक ग्रुप है जिनके साथ मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ, मेरे कॉलेज है फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स है, मेरे कॉलोनी की फ्रेंड्स है, मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स है, मतलब किस किस का नाम और किसके बारे में। मेरे लिए तो अच्छा दोस्त वही है जो दिल से सच्चा हो, जैसे अंदर से हो वैसे ही ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल कोई मुखौटा नहीं। और एक्चुअली ऐसे मुझे बचपन में जैसे मैंने अपनी सिस्टर को देखा था और वही रूप में अपनी बेटी में भी देखती हूँ, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो
0: वेरी नाइस।
1: जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। तो बस मैं उनके लिए भी एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी, मेरी बेटी के लिए जिसको वो बहुत अच्छा लगता है, गलिया वाला सॉन्ग,
0: बहुत
1: अगर
0: खूब बहुत
1: मेरी
0: खूब।
1: बेटी के लिए।
0: दोस्तों आपने
1: थैंक यू।
0: सुना एक फ्रेंड की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, और मैम मीना मैम किस किस तरह के फ्रेंड्स को अपने आसपास रखना चाहती हैं। फ्रेंड्स की डेफिनेशन और परिभाषाएं करीब करीब यूनिवर्सली एक जैसी ही होती हैं, लेकिन इसका जो फीलिंग है, इसकी जो भावना है, वो बहुत ही प्यारी होती है। ये एक इंडिविजुअल इंसान महसूस ही कर सकता है, इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो मीना मैम की बेटी को डेडिकेटेड है, जो कि इनकी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। तो मैम आगे बढ़ते हैं, क्या आपका कोई निक नेम है, कोई ऐसा नाम जो आपके दोस्त या परिवार वाले आपको प्यार से बुलाते हो?
1: एक्चुअली जब मैं पैदा हुई तो अक्षर आया था य। सब लोग सोचते थे कि य से क्या नाम रखे इसका। कोई बोलता था युगल किशोरी, कोई बोलता था युगल कुंडली। फाइनली मेरी नानी जो थी ना, उसने बोला कि अरे इसकी आंखें है ना फिश की तरह है, मीनाक्षी जैसे ना आंखें। तो फिर तो मीना छोटा करके मीना ही रख दिया। तो अभी इतना छोटा नाम तो उसको और क्या निकनाम बोले, तो बस मुझे मीना ही बुलाते गए और वही, तो कोई दूसरा नाम नहीं, मुझे मीना ही मेरा नाम है।
0: ओके, तो आपका निकनेम भी मीना ही रहा। ऑलराइट,
1: हाँ।
0: और क्यों? तो जाहिर सी बात है आपकी नानी जी ने यह नाम आपको दिया। बहुत cool.
1: वहां भी फिश आ गया, देखो फिश की तरह आंखें और फिश मेरा फेवरेट फूड।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं मीना मैम की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। वैसे मैम यूं ही पूछना चाहूंगा, आप गलत ना समझिएगा, लेकिन अगर आपको अब अपना नाम बदलने का मौका मिले तो आप बदलेंगे क्या? और अगर बदलेंगे तो क्या नाम चाहेंगे कि आप रखें?
1: नहीं, मैं वेरी हैप्पी विथ माय नेम, मीना बहुत अच्छा नाम है और मैं वही रखना चाहूंगी।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। मैंने ये सवाल बहुत बहुत सारे लोगों से पूछा है और मजेदार वाली बात है, मुझे आज तक की डेट में कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ। मुझे याद है मैंने अपने बेटे से भी ये सवाल पूछा था जब वो 5th class में था, क्योंकि वहां पर हम लोग सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर सकते हैं। उसने भी उतनी छोटी उम्र में कह दिया था कि नहीं, मुझे मेरा नाम पसंद है और मैं इसको नहीं बदलूंगा। अमेजिंग दोस्तों, आपने सुना? गौर कीजिएगा अपने नाम की तरफ, कितना प्यारा सा नाम है वो, उसका मतलब क्या है। तो चलिए सुने एक प्यारा सा गीत मीना मैम की ही आवाज में।

0: मीना मैम, आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहूंगा कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों? मैम, ये सवाल में दरअसल मैं इसलिए पूछता हूं, मेरे सुनने वालों को कभी ऐसा लगता होगा कि ये बहुत नॉर्मल रूटीन सा सवाल है, लेकिन हमारी प्रकृति में चारों तरफ रंग बिखेरे हैं ऊपर वाले ने, और हम किसी एक रंग को पसंद करते हैं, उसका मतलब समझते हैं, उसके बारे में लगातार विचार करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी पर उस रंग का असर आता है। मुझे याद है अमिताभ बच्चन ने एक एडवर्टीजमेंट किया था एशियन पेंट्स का, जिसमें जो पंच लाइन थी उस एडवर्टीजमेंट की, वो थी कि रंग जो है वो हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं। तो एक माँ के प्यार का रंग अलग होता है, एक बेटी के प्यार का रंग अलग होता है, एक दोस्त के प्यार का रंग अलग होता है, एक प्रेमिका के प्यार का रंग अलग होता है, एक पिता के प्यार का रंग अलग होता है। ये सब अलग अलग रंग हैं। आपकी पर्सनालिटी पे जो रंग सूट करता है उससे हमें पता चलता है कि आप कौन हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, और आपको भी मालूम पड़ता है। तो आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों?
1: मुझे नीला रंग बहुत पसंद है, जो कि आकाश का कलर है, विस्तृत, अनछुआ सा, आभासी, एक ड्रीम वर्ल्ड में वो मुझे ले जाता है। बहुत कूल फीलिंग देता है, आंखों को बहुत ठंडक पहुंचाता है, और वो जब भी मैं आकाश को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा और मेरी बहन मुझे वहां से देख रही है, तो मुझे वो और भी अट्रैक्ट करता है, तो नीला रंग मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी बात बताई आपने मैम, बहुत प्यारी बात। दोस्तों, आप भी विचार कीजिए, और ये तो विचार करने वाली बात हो ही गई कि कोई रंग हमें क्यों पसंद आता है। कारण उसके बहुत सारे हो सकते हैं, इंडिविजुअली हम डिफरेंट डिफरेंट कारणों को या रीजंस को अपना सकते हैं, विचार कर सकते हैं, दिल से लगा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत डॉक्टर मीना की आवाज में।

0: अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए सिंगर्स के लिए और एमेच्योर्स के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए, कोई मैसेज दीजिए उनको।
1: सबसे पहले तो मैं रेडियो टनटैप हील टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मौका दिया। झाबुआ की आवाज आज के कलाकार कार्यक्रम के आप आरजी समीर जी और असिस्टेंट डायरेक्टर नितिन राज जी का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। शीतल वारपे जिसने मुझे आपसे जोड़ा है उसका शुक्रिया। और मैं क्रांतिकारी शहीद पूज्य टंट्या मामा को भी नमन करती हूँ जो इंडियन रॉबिनहुड माने जाते थे।
0: yes.
1: और आपने अपने रेडियो चैनल को इसका नाम देकर उनको एक सही श्रद्धांजलि दी है। और झाबुआ के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जाते जाते मैं सबसे इतना ही कहूंगी कि हर मिनट कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़ के जाता है। हम सब बिना जाने इस कतार में खड़े हैं और जब तक जान है क्यों ना इन पलों को हम जी भर के जी ले, अपना कीमती समय किसी के लिए दे, खुशियां बांटे, अपनी आवाज सुनाए, औरों को सुने, किसी की मुस्कुराहट का कारण बने। और उलझने तो सबको आती है लेकिन उसके उससे भी बाहर निकल के प्यार बांटे ताकि जाते समय आपको कोई पछतावा ना हो। और आंखों की डॉक्टर हूं तो एक बात जरूर कहूंगी कि आंखें मूल्यवान होती है, उसका ख्याल रखना, रेगुलरली जांच करवाना ना भूलना। और रही बात संगीत की तो वो तो अपना हर लम्हा साथ देती है, दुख में भी सुख में भी कोई भी गीत दिल को हमेशा तसल्ली देता है। तो संगीत की शिक्षा लेके रियाज करने से जो आनंद मिलता है वो परम आनंद है। सो नेवर स्टॉप लर्निंग, दैट विल बी माय सेइंग। थैंक यू वेरी मच।
0: अमेजिंग अमेजिंग, बहुत क्रिस्प, बहुत मीनिंगफुल, बहुत गहरे मैसेजेस। दोस्तों आप लोगों ने सुना, बहुत प्यारे मैसेजेस जो हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, उन्हें जी सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है, संगीत से जुड़े रहने से भी बहुत बहुत बहुत सारी हमारी परेशानियां रिजॉल्व हो सकती हैं। और मिलके चलिए, जाहिर सी बात है हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही चलना है। तो रात को 9 बजे से 10 बजे तक संगीत सुनिए ना, फिर बड़े प्यार से सोइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना मैम, मेरा बहुत बहुत
1: और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं 12 साल के बाद जब इंडिया वापस आई तो इसलिए आई थी कि मेरे हस्बैंड ने स्वदेश मूवी देखा था और उनका जो प्यार स्वदेश के लिए जाग उठा जिसे हम वापस आ गए।
0: right.
1: और उसके बाद में मैंने ये संगीत क्षेत्र में थोड़ा प्रवेश किया, सुरेश पत्की जी से थोड़ा जो कुछ भी सीखा, आज वो बेस दे के मुझे कहीं ले जा रहा है जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक इन माई ओन कंट्री, माई ओन मिट्टी। मेरी मिट्टी के कुछ भी मुझे बड़ी पसंद आ रही है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी बात। थैंक यू सो मच मैम, आपके गीत सुने, आपसे बातें की, बहुत मजा आया। थैंक यू,
1: थैंक यू।
0: दोस्तों अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 9656517317। ये है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।
1: होले होले धीरे धीरे कोई गीत मुझको सुनाए, गीत मन में जगाए।
0: आइए दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक आज के कलाकार का प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं शिवानंद सर। बाकी जाहिर सी बात है, जो हमारा सिग्नेचर है, जो हम हमेशा करते हैं, शिवानंद सर खुद ही अपने बारे में बताएं तो ज्यादा मजा आएगा। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वेलकम करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमें बताइए ना आप कौन हैं, कहाँ हैं।
2: धन्यवाद पहले समीर जी फॉर ये इंटरव्यू को बुलाने के लिए। मेरा नाम है शिवानंद हटंगड़ी, मैं बंबई में रहता हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ और अभी म्यूजिक में बहुत ज्यादा लुत्फ हो गया हूँ, मतलब टोटली इन्वॉल्व इन म्यूजिक। तो अभी ऐसा है कि यही मेरी जिंदगी बन गई है। और जो मेरा कॉर्पोरेट लाइफ था, मैंने जो 40-42 साल मैंने काम किया, आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 17 क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉम द एज ऑफ 18 रादर क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थे फैमिली में, तो काम करके कॉलेज में जाना पड़ा। तो तभी भी मुझे गाने का बहुत शौक था, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में कहीं बैकग्राउंड में वो मन के कहीं कोने में जाके चिप गया मेरा जो पैशन था गाने का। लेकिन अब जब मेरी कॉर्पोरेट लाइफ हो गई है और मैं अभी आई मीन द सेकेंड इनिंग्स ऑफ माई लाइफ, तो वो वापस जागृत हो गई वो पैशन। और अभी 5 साल से मैं यही कर रहा हूँ, बस म्यूजिक ही सुन रहा हूँ और अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: ब्यूटीफुल,
2: तो यही है मेरी कहानी।
0: बहुत खूब सर, आपने ये नहीं बताया कि आप क्या करते थे, मतलब आपने ये कहा कि आप कॉर्पोरेट में थे, सो व्हाट काइंड ऑफ कॉर्पोरेट?
2: यस आई वॉज वर्किंग फॉर अ US मल्टीनेशनल फॉर अबाउट 20 ईयर्स और 2-3 कंपनी में। और मैं केमिकल्स, मेरा बैकग्राउंड जो है केमिकल्स में है और मैंने MBA किया है इंटरनेशनल बिजनेस में, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैं आई वन एक्सपर्ट इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ करता था। और आई एम वाइडली ट्रेवल्ड, मैं US और कनाडा छोड़ के सब जगह गया हूँ, यूरोप गया हूँ, एशिया पैसिफिक गया हूँ, मिडल ईस्ट गया हूँ, तो आई लिटरली कवर्ड ऑल द कॉन्टिनेंट्स, खाली एक नॉर्थ अमेरिका बाकी है बस, वो भी जाने की ख्वाहिश है, तो हो जाएगा वो भी अगर ऊपर वाला चाहे तो।
0: बिल्कुल सही है, तो वाज इट केमिकल और वाज इट फार्मास्यूटिकल?
2: दोनों, एक्चुअली दोनों।
0: ओके,
2: केमिकल और फार्मास्यूटिकल, आप तो देहरादून से हैं तो आपको मालूम है देहरादून में काफी फार्मा यूनिट्स हैं उत्तराखंड में, अपना जहाँ पे ये बनाते हैं लोग टैबलेट्स और फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। तो हम लोग वी वेर जस्ट सिप्ला है या डॉक्टर रेड्डीज है या टोरेंट है, इनके साथ हमारा संबंध था तो हम उनके साथ काम करते थे। जो इम्पोर्ट करते थे हम उनको हेल्प करते थे, जो रॉ मटेरियल है, जो दवाई में जो रॉ मटेरियल जाती है उनको हम वी वर एक्चुअली एजेंट्स, हम लोग एजेंट थे ओवरसीज प्रिंसिपल्स के लिए, तो हम उनसे मंगा के इनको देते थे, मतलब दैट वाज द फंडा ऑफ सप्लाइंग द मटेरियल टू द लोकल फार्मा कंपनीज। थोड़े एग्रो वाले भी थे और थोड़े केमिकल वाले भी थे उसमें, मतलब।
0: समझ गया सर, समझ गया। बहुत खूब। तो दोस्तों आपने जाना कि बहुत रिच एक्सपीरियंस रहा है, बहुत रिच अनुभव रहा है शिवानंद सर का। तो चलिए अभी म्यूजिक की बात है, गानों की बात है, गीत की बात है और कलाकारी की बात है, तो शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और सुनते हैं सर की आवाज में ये प्यारे से गीत और फिर वापस आते हैं कुछ और बातें करने के लिए।

0: बहुत सुंदर गायकी, बहुत ही सुंदर शुरुआत। चलिए सर,
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: ऐसा करते हैं, आपके बचपन में चलते हैं। इतना रिच एक्सपीरियंस आपको रहा, लेकिन बचपन भी अपने आप में बहुत एक फाउंडेशनल स्टेज होती है, जब कोई भी बच्चा या तो कुछ सीखता है या कोई कमी के साथ बड़ा होता है, तो फिर उसको पूरी कोशिश करता है कि वो कमी पूरी हो जाए। तो बचपन में आप क्या सोचते थे कि आप बड़े बड़े होकर क्या बनेंगे?
1: हाँ, बचपन में मैं ऐसा था कि उस जमाने में मैं मैं 70s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 70s एंड 80s में। उस जमाने में क्या था कि आई वाज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो यही था बस सीखना, एजुकेशन करना है और काम करना है, और साथ में अगर आपका कोई पैशन हो तो उसको भी आगे बढ़ाना है। तो उन दिनों मैं मुझे हिंदी फिल्म्स के गाने में बहुत अट्रैक्शन हुआ। मुझे अभी भी याद है, जो पहली फिल्म मैंने अपनी जिंदगी में देखी है वो है हाथी मेरे साथी, राजेश खन्ना और हाँ यस। और मैं सब शायद 6 साल का था, और जब वो गाना स्क्रीन में आता था तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, और उसी से मेरी म्यूजिक की जर्नी चालू हो गई। मैं फ्रिक्वेंटली रेडियो सुनता था, तभी तो टीवी था नहीं, रेडियो सुनता था। जब टीवी आया तो टीवी में जो चित्रहार आता था हर थर्सडे को या हर वेडनेसडे को, वो भी मैं देखता था, और इतना मैं एंग्रॉस होता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी जो मदर है वो बोलती थी अगर खाना तैयार है तो खाना तैयार, मुझे सुनता भी नहीं था वो क्या बोल रही, इतना मैं एंग्रॉस होता था उस गाने में।
0: वाओ, बहुत खूब।
1: हाँ तो उसी से मेरा और भी पैशन बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं मेरी जिंदगी आगे बढ़ती गई, मेरा पैशन और बढ़ता गया, और फिर एक फुल स्टॉप जैसा आया। जब कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं तो कॉर्पोरेट लाइफ की दुनिया अलग होती है, स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, तो थोड़ा वो बैकग्राउंड में गया, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो मन के कहीं कोने में जाके चिप गया मेरा पैशन। और उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ, तभी भी मैं गाना तो गाता था लेकिन अपने आप में मतलब गुनगुनाता था, लेकिन मेरा पैशन जो सही पैशन है, जब मैंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया, देयर इज अ लेडी हियर, उनका नाम है, मेरे गुरुजी है दीपाली कामत अग्रवाल, उनसे मैंने म्यूजिक सिखाया, अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत ही म्यूजिक इशारत है वो, और बहुत ही अच्छा सिखाती है, तो उनके वजह से मेरे जो गाने का तरीका था वो बदल गया, क्योंकि हरकतें होती हैं, न्यूएंसेस होती हैं, कहाँ पे पॉज करना है, कहाँ पे ब्रेथ को रोकना है, वो सब उनसे सीखा है, और आज उनकी ही बदौलत से मैं काफी का सारे ग्रुप्स में इन्वॉल्व हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरी तारीफ करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये सब बातें हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सुनने वालों को कि म्यूजिक से आपको बहुत फायदा होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका देखने का रवैया, आउटलुक जो है आपका चेंज हो जाएगा, यू विल हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ, और आपका हेल्थ भी इंप्रूव होगा, क्योंकि मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हैं लेकिन अभी काफी कम हुए हैं म्यूजिक की वजह से। तो बस यही है मेरी कहानी समीर जी।
0: वाओ, अमेजिंगली ब्यूटीफुल, संगीत के इर्द गिर्द घूमती हुई प्यारी सी कहानी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए शिवानंद सर ने जो हमारे लिए गीत तैयार किए हैं उनका लुत्फ उठाएं और फिर वापस आएं।

0: बहुत सुंदर। शिवानंद सर, आपके म्यूजिक के बारे में भी जान लिया, आपके टीचर्स के बारे में भी जाना, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो भी सुना। अब कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश करने के चलते एक थोड़ा अटपटा सा सवाल है, पूछना चाहूंगा, क्या आपके मन में आज कोई ऐसा डर है जो बचपन से या मतलब बहुत समय से बैठा हुआ है, अंदर निकला नहीं, ऐसा कोई डर है आपके मन में?
1: हाँ, डर बोलेगा तो हाँ, एक तरीके का डर है जो पहले था, अभी थोड़ा कम हो गया है। जब मैं पहले स्टेज फ्राइट होता है ना, हर सिंगर को, तो पहले जब मैं नए शुरू किया 4-5 साल पहले, तो बहुत ही स्टेज फ्राइट होता था, थोड़ा एंजाइटी होती थी, धड़कनें तेज होती थी। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत मोटिवेट किया कि ये सभी को होता है, ये कोई नई बात नहीं है, सभी को होता है। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, तो अब वो जो डर है जो स्टेज के सामने गाना, वो थोड़ा कम हो गया है। अभी भी होता है कभी कभी, बट बहुत ही कम हो गया। मतलब पहले तो इतना ज्यादा था कि मतलब मुझे पानी पीना पड़ता था, लंबी सांस लेना पड़ता था अगर मेरा टर्न आए तो। अभी वो सब नहीं हो रहा है, तो अभी काफी कॉन्फिडेंस भी है। बस यही डर है कि मुझे डर क्या है कि मेरा जिस दिन मैं परफॉर्म करूं, मेरा मेरा मेरा गला ठीक होना चाहिए। बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि मेरी जो वॉइस है वो कभी फीका ना पड़े, यही मेरी बस ऊपर वाले से दुआ, ये मैं वही मांगता हूं ऊपर वाले से, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब तो ऊपर वाले ने दे दिया मुझे, अच्छा फैमिली दिया, इतना अच्छा टैलेंट दिया, और क्या चाहिए लाइफ में,
0: और क्या चाहिए। बहुत खूब, इस तरीके के टैलेंट से नवाजा गया हो कोई इंसान तो दोस्तों मजा ही आ जाता है, फिर कोई दुख आसपास भटकता ही नहीं। चलिए तो इसी रो में आगे बढ़ते हुए इन प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं और फिर नंद सर के पास हम वापस आते हैं।

0: बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गायकी। शिवानंद सर, आप ही के बारे में अगर और थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो आपको अपने ही अंदर, अपनी ही पर्सनालिटी में, अपनी ही शख्सियत में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? व्हाट डू यू, मतलब आप अपने आप को किसी एक पॉइंट पर बहुत पसंद करते होगे, अपने आप से मोहब्बत करते होगे, तो वो कौन सी बात है?
1: हाँ, वो बात ये है कि मैं जब गाना गाता हूँ और मैं जो बात भी करता हूँ तो लोग हंसते हैं, तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि दूसरे को रुलाना बहुत आसान है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है
0: जी।
1: ये दुनिया की रीत है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने गाने के

0: जरिए और अपने बोलने के जरिए से लोगों का दिल खुश करना चाहता हूँ, जिससे उनकी जो भी रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स है उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाए. बिकॉज एवरी एवरी मैन हैज अ प्रॉब्लम. इस दुनिया में कोई नहीं है जिसे प्रॉब्लम नहीं है. ऊपर वाले ने सबको सबको ऐसा बनाया है, नहीं तो उसको कोई याद नहीं करेगा, उससे कोई याद नहीं करेगा. तो इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि अगर मैं किसी को खुश करूँ, उसका थोड़ी देर के लिए उसका दुख कम कर दूं, तो यू नो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है.
1: बहुत खूब, बहुत खूब, दैट इज सो वेरी ब्यूटिफुल. दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने आप से प्यार करना होगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको सबसे अच्छी क्रिएशन बनाकर इस दुनिया में भेजा है. आप ईश्वर के बच्चे हैं, हर धर्म बोलता है. तो अगर आप ईश्वर के बच्चे हैं तो सबसे प्यारे होंगे, क्योंकि ईश्वर को आप प्यारे हैं. तो अपने को प्यार करिए ना, ढूंढिए अपने अंदर क्या है ऐसा जिसकी वजह से आप अपने से मोहब्बत कर सकते हैं. और फिर जब आपकी मोहब्बत एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएगी ना, तो वो छलकेगी और हमें मिलेगी. आइए सुनते हैं इन प्यारे से गीतों को शिवानंद सर ने जो हमारे लिए तैयार किए, और फिर हम वापस आते हैं शिवानंद सर के पास.

0: बहुत सुंदर गायकी।
1: धन्यवाद धन्यवाद समीर जी।
0: सर मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई ऐसा सपना आज तक आपने संजो के रखा है, अपने पास रखा हुआ है कि एक दिन मैं सपने को जरूर पूरा करूंगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं सर, मेरा पर्सनली अपना सपना है कि मुझे कभी सैक्सोफोन सीखना है, सैक्सोफोन बजाना है, ये मेरा सपना है। तो उसी तरीके से कुछ आपका सपना होगा वो बताइए ना।
1: यस, मेरा सपना है कि सिंस मैं म्यूजिक गाना तो गाता ही हूँ, बट मेरा सपना है मैं कॉन्गो और तबला भी बजाऊं, और मेरा ये भी सपना है कि मैं लाइव शो में परफॉर्म करूं। थोड़ा विशफुल थिंकिंग है बट है एक सपना तो है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि थ्रू माय कॉन्टैक्ट्स मैं तबला सीखूं या कॉन्गो सीखूं, तो एटलीस्ट यू नो और एक टैलेंट मेरे मेरे अंदर यू नो आ जाएगी। तो यही मेरा सपना है, बस मैं कॉन्गो सीखूं और तबला सीखूं, क्योंकि मुझे मैं जब गाना सुनता हूं ना तो मुझे थोड़ा यू नो अट्रैक्शन होता है उसकी तरफ। अरे मत कितना अच्छा म्यूजिक दिया है म्यूजिक डायरेक्टर ने, कितना अच्छा तबला बजाया है वो तबले वाले ने, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि गाना सिंगर तो गाना गाते हैं लेकिन जो पीछे बैठने वाले हैं वो सुर देते हैं वो बजाते हैं, तो उनकी वजह से गाने का महक और भी बढ़ जाता है। वो मेरा एक सपना है, वो मेरा एक सपना है कि मैं तबला और कॉन्गो सीखूं करके।
0: ब्यूटीफुल। कोई ऐसे सिंगर हो, कोई ऐसे कलाकार, कोई ऐसे गायक जिनके साथ आप परफॉर्म करना चाहते हो स्टेज पर?
1: हाँ, एक लाइव शो सिंगर है मुंबई में, काफी फेमस है वो, इनफैक्ट दिल्ली में भी काफी फेमस है, उनका नाम है संगीता मेलेकर। शी इज अ वेरी गुड लाइव शो सिंगर, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको, एंड वो जो भी सिंग करती है वो इस्कॉन डिवोटी है, तो इस्कॉन का एक स्कूल है बंबई से कुछ 150 किलोमीटर के दूरी पर, तो वहां पे वो डोनेट करती है और वो खुद भी डोनेट करती है और जो उसके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स है वो भी उनको डोनेट करती है। तो शी इज अ वेरी गुड सिंगर, वेरी डाउन टू अर्थ, यू नो एब्सोल्युटली नो ईगो, तो एक सपना है उसके साथ गाना, और मैं उसी कोशिश में हूँ, तो हो सकता है वो शायद जल्दी हो जाए, यही मेरी तमन्ना है।
0: बहुत बढ़िया, हम लोग सब लोग मिलकर दुआ करेंगे कि शिवानंद सर की ये तमन्ना जल्द पूरी हो जाए। आइए आगे बढ़ के इन गीतों का आनंद उठाते हैं और फिर वापस आते हैं।

0: बहुत खूब,
1: धन्यवाद समीर जी।
0: शिवानंद सर, बस अब हम अपने प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए जहां पर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि हम सब सुनने वालों को कुछ आशीर्वाद दीजिए, कोई मैसेज दीजिए, कोई संदेश दीजिए, अपने से दिल से निकलती हुई कोई भी बात हमें कह दीजिए।
1: ओके, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे कितने भी परेशानियों हो, जो म्यूजिक है वो, जैसे मंदिर में आप भगवान की प्रार्थना के लिए जाते हैं, आप भजन गाते हैं, आप दिया जलाते हैं, आरती ये करते हैं, तो उसी तरह म्यूजिक भी एक श्रद्धा है और उसका रिलेशन परमात्मा के साथ है। तो इसके लिए मैं अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि म्यूजिक की तरफ थोड़ा आप अगर वक्त देंगे, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा भी वक्त देंगे, जैसे आप योगा करते हो या मेडिटेशन करते हो, म्यूजिक भी एक मेडिटेशन ही है, उससे आपको बहुत खुशी होगी, आपके दिल को बहुत खुशी होगी, आपका हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, आपके दुख दर्द कम हो जाएंगे, बिलीव मी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे लेकिन अभी काफी कम हो गए हैं। और मैं हमेशा यही कहूंगा कि यू नो, आप म्यूजिक के जरिए आप अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और बस यही मेरा कहना है श्रोताओं को।
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपकी बात।